0: अगर इतना ही पसंद आ गया था तो एक अदद प्यार का सबक उसे भी पढ़ा दिया होता।
1: माफ करो बाबा, हम वो प्रोफेसर हैं जो जिंदगी में सिर्फ एक स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। अपनी किस्मत तो देखो, ऐसा कुड़ शागिर्द मिला है कि जिंदगी पढ़ाते पढ़ाते गुजर जाएगी, लेकिन तुम्हें प्यार करना नहीं आएगा।
0: नहीं आएगा? नहीं आएगा? नहीं आएगा?

0: टाइम चेक सुबह के 5 बज रहे हैं।
1: वेलकम टू RM2
2: रेडियो मस्ती
1: नॉर्थ साउथ
2: 103.5
1: ईस्ट वेस्ट
2: 96.4
1: सेंटर
2: 99.4
1: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: गुड मॉर्निंग, नमस्ते। 5:04 हो चुके हैं। वेंसडे का दिन लग गया जी और आ गया प्यारा सा 19 अगस्त 2026। बाहर कहते हैं ना, थोड़ा सा हल्का सा अंधेरा हो और सर्दियों का मौसम हो, ठंडी हवा चल रही हो और सूरज की किरण अभी आई ना हो, पर ये जो रेडियो मस्ती है ना, ये आ गई। मैं भी आ गई आपके साथ, पूनम। गुड मॉर्निंग, इन्जॉय कीजिए अपने गानों को और साथ में अपने मैसेजेस भेजना बिल्कुल मत भूलिएगा। 5491294 पर कहते हैं ना, दिल की जब बात होती है और सुबह होती है तो दिल की बातें रियल निकलती हैं, और यही रियल जो बातें हैं ना, जिसके लिए भी मैसेज कीजिए, दिल से कीजिएगा। इन्जॉय कीजिए गानों को, और गर्म चाय अगर पी रहे हैं या कुछ ऐसा खा रहे हैं जो बिल्कुल लाइट सा हो, तो मैं कहती हूँ एंजॉय कीजिए, मेरे लिए भी बनाइए।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 11:55 हो चुके हैं और हमें आ गए हैं बहुत सारे मैसेजेस, बट एक स्पेशल मैसेज आया है। एक होटल में बहुत सारे शेफ्स हैं और शेफ्स आपके लिए मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, किचन का मास्टर हैं आप, आपके हाथ का जो मैजिक है ना, आज पूरे दिन लोगों का मूड को टेस्टी बनाएगा। जो भी बनाओ दिल से बनाओ, क्योंकि आपके खाने में तो डे की एनर्जी है। और मैं कहती हूँ बस बनाते रहो, खाते रहो, स्माइल करते रहो, इन्जॉय कीजिए साथ साथ अपने गानों को। और आपको सिर्फ इतना ही कहेंगे, अगर आपको भी दिल की कोई मैसेजेस भेजने तो भेज सकते हैं 5491294 पर। इंजॉय कीजिए नेक्स्ट सॉन्ग महेंद्र कपूर की आवाज में, बहुत ही प्यारा है। जिनको पसंद आएगा ना, उनको बस वो थोड़ा सा झूम लीजिएगा, इंजॉय कीजिए इस गाने को।
0: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 5:25 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम राइज एंड शाइन के साथ। इस समय हम भी यही कहेंगे जो रास्ते पे हैं लोग, जो निकल चुके हैं कामों के लिए, उन सभी ड्राइवर्स भाइयों को जो सबसे पहले उठते हैं, जो सबसे पहले निकलते हैं किसी के डेस्टिनेशन पर कि वहाँ से उनको पिक करते हैं, चाहे वो स्टाफ हो, चाहे वो उनके साथ में उनके कलीग्स हो, और कहते हैं हम आपको सेफ ड्राइविंग। असली सक्सेस यही है कि आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, चल रहे म्यूज़िक ऑन करें और जर्नी को भी इंजॉय करें। आपकी वजह से ही तो डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं सभी लोग। ह्यूज रिस्पेक्ट टू ऑल ड्राइवर्स जो इस समय हमें सुन रहे हैं। इंजॉय कीजिए अपने गानों को।
0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
3: हम जब होंगे 60 साल के

0: होगी 55 की, बोलो प्रीत निभाओगी ना तब भी अपने बचपन की।
1: क्या क्या क्या

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में बाहों में तेरी मस्ती के घेरे। कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं ज़िंदगी में जो कभी भूली नहीं जाती, उन्हीं में से कुछ ऐसी आवाज़ें हैं जैसे लता जी की, रफ़ी साहब की, किशोर दा की, आशा भोंसले की। ये आवाज़ें ऐसी हैं जिन्हें कोई नहीं भुला सकेगा, और ऐसे ही हैं हमारे मैसेजेस जिसको हम कभी भूलना भी नहीं चाहते, और हम चाहते हैं आपके सभी के मैसेजेस पढ़ें, तो जितने ले सकते हैं ज़रूर लेंगे। दीपक जी साथ दे रहे हैं और अपनी किसी अपने को मिस कर रहे हैं, जयशंकर जी साथ दे रहे हैं और फैमिली एंड फ्रेंड्स

0: फ्रेंड्स को सबको इतना ही कहना चाहते हैं, काम करो, इंजॉय करो, गाने साथ चल रहे हैं। क्या बात है जैशन जी, हमें तो हमारे जैसा आप भी बोलने लग गए, बस मुस्कुराते रहें, ये आपने कम किया। चलिए रोबिन जी, रोबिन कैलाश जी साथ दे रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। सुरेश शर्मा जी, साजदा जी साथ दे रहे हैं और अपने परिवार के साथ इंजॉय कर रहे हैं और मॉर्निंग की प्यारी सी चाय इलायची वाली के साथ में इंजॉय कर रहे हैं। सो नाइस, अब्दुल जी और सायरा बानो जी साथ दे रहे हैं और बस अब्दुल जी अपनी सायरा को सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जिंदगी भर साथ चलो। क्या बात है, बहुत ही सुंदर मैसेज। आशीष जी एंड दिया जी के लिए बहुत सारी विशेज आई हैं, आज उनकी प्यारी सी बिटिया हुई है। दादा संजीव, दादी अंजनी, बड़ी दादी भागवंती और कालू एंड जमुना एंड चिना पेन फैमिली उनको विश कर रहे हैं और कह रहे हैं बिटिया के होने की बहुत बहुत बधाई, तुम्हारे घर में लक्ष्मी आई है, हमेशा खुश रहो इस परिवार के साथ। सो नाइस ब्यूटीफुल, और हम भी ये कहेंगे बिटिया रानी के होने की बहुत बहुत बधाई आपको। सेतुल जी साथ दे रही हैं और इंजॉय कर रही हैं इस प्रोग्राम को। ललित जी साथ हैं यूएसए से और अपनी वाइफ को बस इतना कहना चाहते हैं, तुम्हारी थोड़ी सी तबीयत खराब है, अपना ध्यान रखना, मैं अपने आप अपना यहाँ ध्यान रख रहा हूँ। क्या बात है, थैंक यू सो मच, एक दूसरे का सभी ध्यान रखते रहें तो कितना अच्छा लगेगा। आज हमारे साथ दो डॉक्टर्स भी जुड़े हैं, डॉक्टर प्रिया एंड डॉक्टर शशांक, और वो दोनों भी कह रहे हैं मज़ा आ रहा है, काम कर रहे हैं, साथ साथ गानों को सुन रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। और हम सभी एक दूसरे को इतना ही कहेंगे, इंजॉय करते रहें, मुस्कुराते रहें, थोड़ी देर में आप जुड़ पाएंगे अपने हॉरोस्कोप के साथ।
1: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
2: Radio Musty.

0: RM2 रेडियो मस्ती
1: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती
2: 5:47 हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सुबह चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल रखिए, दिल में एक्साइटमेंट रखिए और नया दिन आज आपका है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं आज का राशिफल। सबसे पहले
3: एरीज मेष राशि।
2: आज कोई तारीफ आपका मूड बना सकती है, पुराने दोस्त से बात हो तो मज़ा और बढ़ेगा। आज थोड़ा हंसिए और दूसरों को भी हंसाइए। लकी कलर है रेड, लकी नंबर है 6।
3: टॉरस वृषभ राशि।
2: आज घर में आपकी पसंद की भी बात होगी, छोटी सी शॉपिंग भी मूड फ्रेश कर सकती है। अपनी पसंद को आज थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दीजिए। लकी कलर है पिंक, लकी नंबर है 4।
3: जेमिनी मिथुन राशि।
2: आज अचानक बना कोई प्लान मजेदार रहेगा, फोन पर कोई प्यारी सी बातचीत हो सकती है। दिन में थोड़ा फन जोड़ने की कोशिश कीजिएगा जिससे आपकी जिम्मेदारियां थोड़ी सी हल्की हो। लकी कलर है येलो, लकी नंबर है 5।
3: कैंसर कर्क राशि।
2: आज परिवार के साथ हंसी मजाक अच्छा रहेगा, किसी अपने से मिली तारीफ दिल खुश करेगी। घर लौटकर थोड़ा सा क्वालिटी टाइम जरूर बिताइएगा अपने परिवार के साथ में। लकी कलर है व्हाइट, लकी नंबर है 2।
3: लियो सिंह राशि।
2: आज थोड़ा तैयार होकर निकलेगा, मूड खुद बदल जाएगा, लोग आपकी पर्सनालिटी को नोटिस करेंगे। तारीफ मिले तो बस स्माइल करके थैंक यू बोलकर आगे चल जाएगा। लकी कलर है ऑरेंज, लकी नंबर है 1।
3: वर्गो कन्या राशि।
2: आज अपनी पसंद की चीज के लिए थोड़ा सा वक्त निकालिएगा, चाय हो या म्यूजिक हो, थोड़ा सा आराम जरूरी है। दिन को सिर्फ काम की लिस्ट में मत रखिएगा। लकी कलर है ब्लू, लकी नंबर है 7।
3: लीब्रा तुला राशि।
2: आज किसी खास इंसान के साथ प्यारी सी बात हो सकती है, पुरानी अच्छी याद भी चेहरे पर स्माइल ला सकती है। दिल खुश हो तो उसी खुशी को रोकेगा मत। लकी कलर बनेगा पिंक, लकी नंबर है 3।
3: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
2: आज कोई छोटा सा सरप्राइज मिल सकता है, चाहे हो सकता है ऑफिस में चाहे घर पे, आपकी पसंद की कोई बात अचानक सामने आ सकती है। दिन को ज्यादा प्लान नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा इंजॉय भी कीजिएगा, मस्ती भी कीजिएगा, चाहे रेडियो मस्ती के साथ में ही। लकी कलर है रेड, लकी नंबर है 8।
3: सजिटेरियस धनु राशि।
2: आज कहीं घूमने या बाहर जाने का मन बनेगा, मौका मिले तो थोड़ा सा चेंज जरूरी है, नई जगह और नया माहौल मूड बना सकता है। लकी कलर है ऑरेंज, लकी नंबर है 9।
3: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
2: आज खुद को कोई छोटी सी ट्रीट दीजिएगा, हर खुशी के लिए बड़ी वजह होना जरूरी नहीं है। अपनी पसंद का काम करके भी आप अपने दिन को खास बना सकते हैं। लकी कलर है ग्रीन, लकी नंबर है 6।
3: एक्वेरियस कुंभ राशि।
2: आज दोस्तों के साथ थोड़ा सा मजाक और मस्ती हो सकती है, कोई अचानक मैसेज आ सकता है जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा। आज अपनी जिंदगी को और अपने टाइम को थोड़ा सीरियस मत लीजिएगा, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा छुट्टी दीजिएगा। लकी कलर है ब्लू, लकी नंबर है 5।
3: पाइसेस मीन राशि।
2: आज कोई प्यारी याद सुबह को खूबसूरत बना सकती है, अपनी पसंद का गाना सुनिए, मूड बनाइए। आज छोटी छोटी खुशियां दिल को छू लेंगी और आपके परिवार में थोड़ा सा बॉन्डिंग बनेगा। और आपको कहते हैं ना कि जब सारे एक साथ होते हैं तो अपने आप मूड रिफ्रेश हो जाता है। तो लकी कलर बनेगा आपका पिंक, लकी नंबर है 4। तो दोस्तों आज खुश होने के लिए कुछ ज़रूरी नहीं है कोई वजह हो, सिर्फ अपने आप को खुश रखिए, इंजॉय कीजिए अपने गाने।

0: RM2 Radio Musti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter, creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Musti.
3: North, South,
4: 103.5.
3: East, West,
4: 96.4.
3: Center,
4: 99.4.
5: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
5: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
6: Time check, सुबह के 6 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार रजनी से. रजनी, आपको नमस्कार.
7: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार. समाचारों में आप सभी का स्वागत करती हैं. पेंशन सुधार के नए चरण के 2 हफ्ते पहले स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के हालिया आंकड़े अवकाश प्राप्त करने पर पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या में कमी दर्शाती है. मई महीने की तुलना में जुलाई महीने में 1,402 लाभार्थी कम. मॉरिशस में दामों का दबाव टिकाऊ बना रह सकता है. पिछले जून महीने में 200 लोगों के साथ चलाए गए बैंक ऑफ मॉरिशस के इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे की हालिया रिपोर्ट में ये बात सामने आई है. एमवीएपीएक्स मामले में मंत्री अरविंद बुले ने ये बात दोहराई कि पिछले 15 जुलाई को किसी खास वजह को लेकर ही 547 मवेशियों को जहाज से उतारा गया था. मवेशियों के आयात को लेकर अभी भी सख्त सैनिटरी नियम लागू और किसी भी तरह से लागू प्रावधानों की कमी के चलते कार्रवाई चला जा सकती है. कृषि के क्षेत्र में ही रहते हैं. सरकार अपनी कृषि परियोजना के संबंध में ठोस चरण की ओर बढ़ रही है. फागे की तरफ से मंगलवार को गेजवी को प्रेसिजन फार्मिंग एआई ड्रिवन फूड प्रोडक्शन स्कीम की लॉन्चिंग की गई, जिसके अंतर्गत कृषि को लेकर अतिरिक्त रूप से डिजिटल औजारों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाएगा. एक ऐसा सेक्टर बनाया जा रहा है जिसमें अधिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो और जो हो ज्यादा आकर्षक भी. आज तुलसीदास जयंती. तुलसीदास जी भारत के सबसे बड़े एवं महान कवि थे. विशेषकर भगवान श्री राम के प्रति गहरी भक्ति और समर्पण के लिए जाना जाता है. और विदेशी समाचारों में बच्चों पर इंस्टाग्राम के असर से वाकिफ था मेटा. 29 अमेरिकी राज्यों ने जानकारी छिपाने का लगाया आरोप. संक्षिप्त समाचार ये पर समाप्त हुए. मौसम संबंधी जानकारियाँ कुछ समय में. हमारे इलाके पर नम और अस्थिर हवाएं बह रही हैं. अगले 24 घंटों के लिए अनुमान लगाया जाता है कि सुबह के वक्त बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर बारिश

होती रहेगी। कभी कभी सामान्य से तेज बारिश होगी और टापू के आधे पूर्वी हिस्सों में और सेंट्रल प्लाटो पर कोहरे छाए रहेंगे। फिर भी सुबह के वक्त कुछ सुधार आने लग सकता है मौसम में और इसके साथ साथ पूर्वी इलाके में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होगी मुख्य रूप से देश के पूर्वी इलाके में और ऊंचाइयों पर। शाम के वक्त और रात में भी ऐसा होगा। पूर्व की ओर से करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। प्रवाह रेखा के उस पार समुद्र खराब रहेगा। 2.50 मीटर की ऊंची लहरें उठेंगी। फिर भी शाम के वक्त इसमें सुधार आने लगेगा। सुबह के वक्त और शाम में दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 16 और 18 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम 21 और 24 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 और 22 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम 26 एवं 28 डिग्री सेल्सियस के बीच। सुबह 6:29 पर सूर्योदय, शाम 5:58 पर सूर्यास्त। धन्यवाद, नमस्कार।

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Mustie.
2: छह बजकर आठ मिनट हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम राइज एंड शाइन के साथ। राइज एंड शाइन हमेशा आपको इतना ही बस कहता है कि उठिए, मुस्कुराते हुए उठिए, पूरे दिन को अच्छा सा बनाना है और यही हमारी इच्छा होती है कि जब आपकी मॉर्निंग अच्छी होती है तो मुझे उम्मीद है कि आपका पूरा दिन भी अच्छा होता है। तो आज का दिन स्पेशल है, राम भक्त कहते हैं ना, राम जी के भक्त हैं एक तो हमारे प्यारे से हनुमान जी और दूसरे हैं राम भक्त तुलसीदास जी। कहते हैं कि उन्होंने हमें दी रामचरितमानस और हनुमान जी उनके दिल में हमेशा बसते रहे, उनके सामने खड़े होकर उन्होंने रामचरितमानस लिखवाई और कहते हैं ऐसे जो भक्त जब दुनिया में आते हैं तो इंसानों की ज़िंदगी बहुत ही प्यारी और सुंदर हो जाती है। जिस तरीके से हमारे पूर्वज लेकर आए थे हिंदुस्तान से रामचरितमानस, आज वही दिन है। इंजॉय कीजिए गानों के साथ साथ उस प्यारी सी भक्ति भावना वाले दिन को। मैं तो इतना ही गाऊंगी, ये गाने भी आपके हैं और रामचरितमानस भी आपकी है, तो एक पन्ना ज़रूर आज पढ़िएगा, अपने मॉर्निंग को इंजॉय कीजिए।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio Mustie.
2: कहते हैं यशुदास की आवाज़ भगवान को बहुत प्रिय है और सभी लोग कहते हैं ये उनकी आवाज़ भगवान की ही आवाज़ है।

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: गुड मॉर्निंग, 6:22 हो चुके हैं और ऐसे फटाफट से घर के काम चल रहे होंगे जिनको सुबह सुबह काम पे जाना है, स्कूल में जाना है या पढ़ाना है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, चाहे शेफ हो, चाहे कोई भी हो, सिक्योरिटी गार्ड्स हो, चाहे कोई भी ऐसे जिनको सुबह सुबह उठना होता है। और बाकी तो चले 7 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, पर वो उठ के चाय पी रहे होते हैं। पर जिनको जाना है उनका तो भैया शुरू हो गया 5 बजे से। तो चलिए भाई, हम भी मैसेजेस ले लेते हैं। बहुत सारे प्यारे प्यारे मैसेजेस आए हैं आप सबके। इस समय रेखा जी साथ में जुड़ी हुई हैं अपने बेटे अंश के साथ और बस इतना ही कह रही हैं, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया करो, बाकी सब मैं हूँ, कर लूँगी। श्याम देवी चरण जी हैं और साथ में जॉगिंग कर रहे हैं और प्रोग्राम को इन्जॉय कर रहे हैं। ललिता जीतन जी साथ दे रही हैं और सबको गुड मॉर्निंग कह रही हैं और कह रही हैं बहुत बहुत प्यार सभी को। बाहर मौसम बहुत अच्छा है इसलिए मैं जॉगिंग पे नहीं जा सकी, मैं समझ सकती हूँ, सबका हाल ऐसा ही है। हेमलता भूचन जी साथ दे रही हैं, वर्षाली, वर्षिका, वर्षिना, दिव्यांशी, विहान, अभी, स्वीटी, भारती, विक्रम और श्रेष्ठा को बहुत सारी प्यार और विशेष दे रही हैं और कह रही हैं अपना अपना ख्याल रखो। माला जी, रिया और जिया के लिए एक प्यारा सा मैसेज है उनके पापा की तरफ से और उनके हस्बैंड की तरफ से, बस कह रहे हैं तुम मेरे पास हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आज माही जी हैं, उनकी मम्मी का बर्थडे है, अंजू जी का, उनके हस्बैंड गणेश, डॉटर रचना, माही, प्रमीला, गणपत देवराज और नीलू, सुखराम और अक्षय एंड शिवांश एंड भोला राम फैमिली उनको विश कर रही है और बोल रही हैं आपकी बर्थडे की खुशी हमें बहुत है, हमेशा खुश रहो, हमारे आसपास रहो, हम बहुत प्यार करते हैं। सो स्वीट ब्यूटीफुल मैसेज। अनुषा जी के पापा के लिए एक प्यारा सा गाना हो जाए, हम बिल्कुल चलाएंगे। हम तो यही कहते हैं कि सब जिनका भी आज बर्थडे है हमेशा खुश रहें, इंजॉय करें अपने बर्थडे को अपनी फैमिली के साथ, पर सबसे पहले अपने चेहरे पर स्माइल रखिए और ये सुनिए हम सब की तरफ से।

0: बुधवार 19 अगस्त 2026 सुबह के 6:30 बजे हैं। पेश है पूरा समाचार बुलेटिन। सुर्खियां इस प्रकार है, पेंशन सुधार के एक नए चरण के 2 हफ्ते पहले स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के हालिया आंकड़े, अवकाश प्राप्त करने पर पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या में कमी दर्शाते हैं। मई महीने की तुलना में जुलाई महीने में 1402 लाभार्थी कम। मॉरिशस में दामों का दबाव टिकाऊ बना रह सकता है। पिछले जून महीने में 200 लोगों के साथ चलाए गए बैंक ऑफ मॉरिशस के इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे की हालिया रिपोर्ट में ये बात सामने आई। एमवी अपेक्स मामले में मंत्री अरविंद बुले ने ये बात दोहराई कि पिछले 15 जुलाई को किसी खास वजह को लेकर ही 547 मवेशियों को जहाज से उतारा गया। मवेशियों के आयात को लेकर अभी भी सख्त सैनिटरी नियम लागू और किसी भी तरह से लागू प्रावधानों की कमी के चलते कार्रवाई चलाई जा सकती है। सरकार अपनी कृषि परियोजना के संबंध में ठोस चरण की ओर बढ़ रही है। फागे की तरफ से मंगलवार को रेजवी को प्रेसिजन फार्मिंग एआई ड्रिवन फूड प्रोडक्शन स्कीम की लॉन्चिंग की गई। नागरिकों को अधिक तीव्र पारदर्शी एवं कारगर सेवा प्रदान करने के मकसद से मॉरिशन प्रशासन को आधुनिक बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है सार्वजनिक सेवा मंत्री राजपेंचा ने। अगले 9 और 10 सितंबर को रेजवी में सुधार प्रक्रिया में नया आयाम होगा जब संबंधित कार्यशाला का आयोजन होगा। आज तुलसीदास जयंती। तुलसीदास जी भारत के सबसे बड़े एवं महान कवि थे। विशेषकर भगवान श्री राम के प्रति गहरी भक्ति और समर्पण के लिए जाना जाता है। विदेश समाचारों में, बच्चों पर इंस्टाग्राम के असर से वाकिफ था मेटा, 29 अमेरिकी राज्यों ने जानकारी छिपाने का लगाया आरोप। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी को इस बुलेटिन में आपका स्वागत करते हैं और अब समाचार विस्तार से। पेंशन सुधार के एक नए चरण के 2 हफ्ते पहले स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के हालिया आंकड़े ये दर्शाते हैं कि अवकाश प्राप्त करने पर पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या कम हो रही है। जुलाई महीने में 273,829 लोगों को बीओपी प्राप्त हो रहे थे, जिनमें से मॉरिशस में 267,763 लोग थे और रोड्रिक्स में 6,066 लोग, अर्थात मई महीने की तुलना में 1,702 लाभार्थी कम। अधिक जानकारी शैली नेवन की इस रिपोर्ट में, विवरण आशीधारकों के साथ।
1: मॉरिशस में बेसिक रिटायरमेंट पेंशन यानी बुनियादी सेवानिवृत्त पेंशन पाने वालों की संख्या साल की शुरुआत से लगातार घट रही है। जनवरी में इस पेंशन के 277,970 लाभार्थी थे, जुलाई में ये संख्या घटकर 273,829 रह गई। इसके विपरीत अंशदायी सेवानिवृत्त पेंशन यानी कंट्रीब्यूटरी रिटायरमेंट पेंशन पाने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। जुलाई में ऐसे लाभार्थियों की संख्या 172,459 थी, जबकि मई में ये 171,501 थी, यानी 2 महीनों में 958 लाभार्थियों की बढ़ोतरी हुई है। ये आंकड़े ऐसे समय सामने आए हैं जब पेंशन सुधार को लेकर सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है। सरकार ने आखिरकार 2026-2027 के बजट में घोषित मींस टेस्ट को लागू नहीं करने का फैसला किया है। अनुमान है कि इस फैसले से 2027 के पहले 6 महीनों में सरकारी खजाने पर 6.2 बिलियन रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा, जो सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का 0.7% है। पेंशन सुधार की अगली महत्वपूर्ण तारीख 1 सितंबर निर्धारित की गई है। संक्रमण अवधि के तहत उन लोगों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं जो 1 सितंबर 2026 से 60 वर्ष की आयु पूरी करेंगे। ये संक्रमण व्यवस्था 31 अगस्त 2029 तक जारी रहेगी। वहीं 1 जनवरी 2027 से पीओबी रिटायरमेंट पेंशन की जगह स्टेट एज पेंशन लागू की जाएगी। नई व्यवस्था में निर्धारित सेवानिवृत्त आयु से पहले पेंशन लेने का विकल्प भी होगा। हालांकि ऐसी स्थिति में पेंशन राशि में हर महीने 0.5% की कटौती होगी। वहीं पेंशन लेने में देरी करने पर निर्धारित शर्तों के अनुसार अतिरिक्त राशि यानी बढ़ोतरी का प्रावधान होगा। यानी जुलाई के इन आंकड़ों के पीछे 2 अहम सवाल उभर रहे हैं। कितने लोग समय से पहले अपनी पेंशन लेना पसंद करेंगे और लंबे समय में इस फैसले का सरकारी वित्त पर कितना बोझ पड़ेगा।
0: मॉरिशस में दामों का दबाव टिकाऊ बना रह सकता है। पिछले जून महीने में 200 लोगों के साथ चलाए गए बैंक ऑफ मॉरिशस के इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे की हालिया रिपोर्ट में ये बात सामने आई। इस साल के मई महीने के अंत में व्यापक मुद्रास्फीति 4.2% थी। 54% लोगों ने जवाब देते हुए कहा कि ये स्तर काफ़ी ऊँचा है। आने वाले महीनों के लिए बताया गया कि मुद्रास्फीति दिसंबर 2026 में औसतन 4.9% होगी, जिसके बाद 2027 के जून महीने में ये बढ़कर 5% तक होगी। लोविना सोफी, आसितारगो।
2: ये अध्ययन बैंक ऑफ मॉरिशस का आधिकारिक पूर्वानुमान नहीं है। इसके बजाय इसका उद्देश्य सर्वेक्षण में शामिल लोगों की धारणा और आने वाले समय में कीमतों में संभावित बदलाव को लेकर उनकी अपेक्षाओं को समझना है। मौजूदा महंगाई की स्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों में बाहरी कारक सबसे ऊपर है। इसके अलावा मॉरिशस की मुद्रा रुपये की विनिमय दर में उतार चढ़ाव और ब्याज दरों में बदलाव को भी प्रमुख कारणों में शामिल किया गया है। 5 साल की अवधि को लेकर लोगों की राय कुछ बटी हुई है। 54.5% उत्तरदाताओं का मानना है कि महंगाई 4% या उससे कम पर बनी रह सकती है, जबकि 45.5% को इसके 4% से ऊपर रहने की उम्मीद है। औसतन उत्तरदाताओं ने 5 साल की अवधि में 4.7% महंगाई दर का अनुमान लगाया है। 68.5% की प्रतिक्रिया दर के साथ ये नतीजे भविष्य में कीमतों में होने वाले बदलाव को लेकर सर्वे में शामिल लोगों की अपेक्षाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती हैं।
0: अब चलिए एमवे अपेक्स मामले की चर्चा करें। मंत्री अरविंद बुलेल ने फिर से ये बात कही है कि पिछले 15 जुलाई को किसी खास वजह को लेकर ही 547 मवेशियों को जहाज से उतारा गया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसा नहीं है कि अब अगली बार ऐसा ही किया जाएगा। मवेशियों के आयात को लेकर अभी भी सख्त सैनिटरी नियम है, जैसे कि कहाँ से जानवर लाए जा रहे हैं और आयातकों के लिए लागू शर्त आदि। ये मवेशी मोजाम्बिक से

0: लाए जा रहे थे और पहले तो गिनिया के लिए निर्धारित थे इससे पहले कि मॉरिशस से गुजरे। मंत्री ने याद दिलाया कि नामीबिया और केन्या अभी एकमात्र देश हैं जहां जिन्हें मॉरिशस की ओर मवेशी निर्यात करने की अनुमति है। दूसरी तरफ अटॉर्नी जनरल को इस मामले से निपटने के वास्ते उनकी राय की मांग की गई है। किसी भी तरह से लागू प्रावधानों की कमी के चलते कार्रवाई चलाई जा सकती है। डॉक्टर अरविंद बुले ने हमारी सहयोगी पत्रकार शैली न्यबन को अतिरिक्त जानकारियां दी, उन्हें सुनते हैं।
1: Conseil des ministres prend la décision parce que le seuil de tolérance qui est la force majeure, on n'a pas fait plier les autres devant l'engagement qu'ils ont donné. Et le service vétérinaire avec le ministère qui sollicite l'avis du attorney general et nous avons une lettre pour être capable ou non de cette obligation. Et si c'est pas ou non de cette obligation, peine à choisir de vous faire un test là, mais vous êtes encourir les frais. Parce que si ça va un test là, vous allez devant le laboratoire international. Il est important pour nous, c'est ce qu'on appelle les normes sanitaires. Être respecté. Peine aucun risque. Et ça, jamais pour arriver, parce que nous donne la permission à ceux qui l'ont importé, il importe de Namibie et de Kenya, pas servivant de subterfuge. Donc, ceux qui sont importateurs de cet animal-là, pas faire fi de la loi, de poursuivre les conséquences et service vétérinaire peut faire ce que nous avons.
0: सरकार अपनी कृषि परियोजना के संबंध में ठोस चरण की ओर बढ़ रही है। फागे की तरफ से मंगलवार को रिजवी को प्रसिजन फार्मिंग एआई ड्रिवन फूड प्रोडक्शन स्कीम की लॉन्चिंग की गई, जिसके अंतर्गत कृषि को लेकर अतिरिक्त रूप से डिजिटल औजारों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाएगा। बजट 2025-2026 में इसकी घोषणा की गई थी। तब से फागे कृषकों और टेक्नोलॉजी सप्लायरों के सहयोग से एक ढांचे की तैयारी पर कार्यरत है। नयापन ये है कि अब से बजट 2026-2027 में फागे में प्रेसिजन फार्मिंग के लिए 6 मिलियन रुपए का प्रावधान है। साथ ही 12 मिलियन रुपए वार्षिक तौर से पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के लिए निर्धारित किए जाएंगे। मंत्री अरविंद बुलेल उन जमीनों के फिर से इस्तेमाल पर जोर देना चाहते हैं जिन्हें त्याग दिया गया हो, साथ ही नौजवानों को इस क्षेत्र में आकर्षित करने की कोशिश में है। एक ऐसा सेक्टर बनाना चाहते हैं जिसमें अधिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो और जो ज्यादा आकर्षक भी हो। जूनियर मंत्री फाबिस दाविद को सुनती हैं, जिनसे बात की शैली नबन ने।
2: L'intelligence artificielle, pas pour remplacer l'expérience humaine, mais au contraire pour amener de nouveaux outils, pour permettre à un agriculteur, un planteur, un éleveur, pour augmenter le rendement, augmenter la productivité agricole, augmenter la quantité et la qualité, tout en réduisant ce bas de coût, ce bas de dépendance au bas de produits, notamment bas de produits chimiques, sur une meilleure utilisation des ressources, notamment bas de ressources en eau, pour optimiser la production agricole. Et les outils digitales, et bien sûr l'intelligence artificielle, dans un grand cadre de ce qu'on appelle l'agriculture de précision, pour permettre à nos bons agriculteurs d'adopter une pratique de l'agriculture 3.0.
0: कुछ अन्य समाचारों की ओर बढ़ते हैं। नागरिकों को अधिक तीव्र पारदर्शी एवं कारगर सेवा प्रदान करने के मकसद से मॉरिशन प्रशासन को आधुनिक बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सार्वजनिक सेवा मंत्री राजपेंचा ने पब्लिक सेक्टर में सुधार लाने की बात सरकारी कार्यक्रम में शामिल है और ये एक नए कानूनी ढांचे और साथ में स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक सर्विस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स 2025-2029 को भी ध्यान में रखते हुए तय किया जाएगा, जिस पर अभी कार्य की जा रही है। मंत्री के अनुसार कई कार्य शुरू किए जा चुके हैं, जैसे कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम पर भी गौर करना और कई सेवाओं का डिजिटलाइजेशन, जिनमें ह्यूमन रिसोर्स मूवमेंट और स्कीम्स ऑफ सर्विस शामिल है। अगले 9 और 10 सितंबर रिजवी में सुधार प्रक्रिया एक नया आयाम लेगा, जब कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा और जिसमें पब्लिक अर्थ सरकारी सार्वजनिक निजी सेक्टरों के प्रतिनिधि तथा शैक्षणिक और न्यायिक पेशे के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। इसका लक्ष्य है भावी कानून के लिए आधार बनाने के वास्ते बड़े निर्देश निर्धारित करना। मंत्री राजपेंचा को सुनते हैं, जिनसे बात की आशीर्वाद चुने। विवरण आसिता रघु।
3: इस विधेयक का मतलब है गहराई तक सुधार लाना और इसको संभव करने के लिए जरूरी है कि इस क्षेत्र के सभी साझेदार अपनी राय व्यक्त करें और ये हमारी जिम्मेदारी है सुनना कि वे कैसे चाहते हैं ये सार्वजनिक सेवा चले जिससे जनता को केंद्र में रखा जाए। कानूनी ढांचा तैयार करना मतलब उन देशों के तरीके को ध्यान में रखा जाएगा जहाँ सार्वजनिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण और बड़े विकास हुए हैं। इसके अलावा हम उनके अनुभव से भी सीखेंगे और साथ ही हम भी अपनी अपेक्षाएं

0: तथा इस मामले के संदर्भ में जनता की जायज मांगों को भी प्रस्तुत करेंगे।
1: फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के अनुसार मडागास्कर के बिजनेस एंड मामले गवातुमांगा पर जांच समाप्त करने के लिए 6 महीने से 1 वर्ष लगेंगे। एक्टिंग चीफ ऑफ इन्वेस्टिगेशन परमाहंस आलिया के काउंटर इंटरोगेशन के बाद ये बात सामने आई। कल बेल एंड रिमांड कोर्ट के सामने मामले गवातुमांगा को रिहा करने के मोशन पर बहस चली, जिसमें उसने मेलकोस कैदखाने से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भाग लिया। वकील कुशालबी ने इस बात पर जोर दिया कि उसका मुवक्किल पिछले 9 महीनों से हिरासत में है। इसके साथ साथ उन्होंने मामले गवातुमांगा के खिलाफ दर्ज 2 शिकायतों की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न उठाया। परमाहंस आलिया के काउंटर इंटरोगेशन और 2 अन्य गवाहों वकील एक्ता बेनोजिनी तथा मामी गवातुमांगा की बेटी की सुनवाई के बाद अगले 26 और 27 अगस्त को शर्त पर उसे रिहा करने की नई मांग पर बहस की जाएगी। स्वास्थ्य की चर्चा करते हैं। क्लिनिकल परीक्षणों को आम जनता तक बेहतर तरीके से पहुंचाना और समझना एबेन के हेनेसी पार्क होटल में ट्रस्ट फंड फॉर द स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर की पब्लिक क्लिनिकल ट्रायल यूनिट द्वारा योजनाओं के सहयोग से आयोजित एक कार्यशाला का यही मुख्य उद्देश्य रहा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिच्छू की उपस्थिति में कई डॉक्टरों सहित कई स्वास्थ्य पेशेवरों ने इस बैठक में भाग लिया। स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिच्छू ने इस बात पर जोर दिया कि मॉरिशस सार्वजनिक क्षेत्र में क्लिनिकल ट्रायल्स को विकसित करके एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार कर रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि ये प्रथा कुछ देशों में विशेष रूप से दक्षिण अफ्रीका में पहले से ही कई दशकों से मौजूद है और ये पहल मॉरिशस को अपने पिछड़ेपन को दूर करने और मरीजों के लाभ के लिए चिकित्सा अनुसंधान को मजबूत करने की अनुमति देगी। स्वास्थ्य मंत्री को सुनते हैं।
2: क्लिनिकल ट्रायल l'hôpital public jamais on gagne sa chance là।
0: सार्वजनिक अस्पतालों के मरीजों को क्लिनिकल ट्रायल का अवसर नहीं मिलता है, पर निजी क्लिनिकों में ऐसा पहले हो चुका है। मॉरिशस में हर तरह की दवाइयां हैं और यहां भी विशेषज्ञों द्वारा क्लिनिकल ट्रायल्स होने लगे हैं। 1960 के सालों में ये आरंभ हुआ था और आज हम 2030 तक पहुंच रहे हैं जहां मॉरिशस अब ये ट्रायल करने लगा है। हमें बहुत काम करना है क्योंकि हम काफी पीछे हैं। हमारा एक अनुसंधान केंद्र होगा जहां एक नैतिक परिषद भी स्थापित की जाएगी जिससे सभी परीक्षण नैतिकता के दायरे में हो। डॉक्टरों के अनुभव के अनुसार इन परीक्षणों के लिए जाने वाले लोगों के लिए कोई समस्या नहीं है, उल्टा एक बार इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद मरीज और ज्यादा परीक्षण करवाना चाहेंगे। अतः हम आश्वासन देते हैं कि सब वैज्ञानिक स्तर पर सही तरीके से किया जाएगा।
1: डॉक्टर निशांत नंदलाल को सुनते हैं, जिनसे बात की निर्मा नारायण रेड्डी ने। विवरण असिता रघु का है।
3: C'est généralement quand on a une maladie, quand c'est un traitement qui nous est là, pas assez efficace.
0: आमतौर पर जब कोई बीमारी होती है तो ये उपचार ज्यादा प्रभावी नहीं होते, यानी इनसे बीमारी के संकेत या मृत्यु की संभावना कम नहीं होती। तब खोजकर्ता एक नई दवाई की खोज करते हैं और इनका मूल्यांकन करने के लिए चंद सख्त नियम लागू होते हैं। इन प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए मरीजों को ज्यादा बेहतर इलाज पाने का विकल्प प्रस्तावित करते हैं जो मंडी में उपलब्ध नहीं हुए हैं, यानी जो बाहर इलाज होते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में मैं करता हूँ। मॉरिशस के लिए ये बहुत लाभदायक है, यानी दवाइयाँ जो महंगे होते हैं या सार्वजनिक सेवा में उपलब्ध नहीं होती हैं, मरीजों तक इन दवाइयों को पहुँचाते हैं। और जरूरी है मरीजों को ये जानना कि ये दवाइयाँ मरीजों पर अनुसंधान के लिए प्रयोग नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि वे इस प्रक्रिया का एक हिस्सा हैं।
1: आज तुलसीदास जयंती है। तुलसीदास जी भारत के सबसे बड़े एवं महान कवि थे। विशेषकर भगवान श्री राम के प्रति गहरी भक्ति और समर्पण के लिए जाने जाते हैं। कवि तुलसीदास जी ने अपने लोकप्रिय कृति रामचरितमानस में श्री राम के रूप में हमें एक ऐसा दृढ़पण दिया जिससे सम्मुख रखकर हम अपने गुणों अवगुणों का मूल्यांकन कर सकते हैं। एक विशेष रिपोर्ट आसिता रघु के साथ।
4: श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। महासंत और महाकवि तुलसीदास जी की जयंती पर हम महाकवि तुलसीदास जी को, उस संत को याद करते हैं जिन्होंने रामचरितमानस जैसे कई ऐसे ग्रंथ को लिखा जो मानव सेवा के लिए, जो सत्य मर्यादा भक्ति सेवा त्याग और मानवता के मार्ग को दिखाता है।

0: अगर हम उनके व्यवहारों को अपने जीवन में उतारें और आज के जीवन में, तो हमारा जीवन कई सफल हो सकता है। उन्होंने कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों की पीड़ा को सहना, दूसरों को जो दुख है उसको अगर हम अपना लेते हैं, तो ये जो जीवन है वो बहुत ही सरलता से चलता है और हम लोगों को कल्याण कर सकते हैं। महाकवि महासंत तुलसीदास जी ने केवल भक्ति के मार्ग को नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति, आशा और संस्कार को मजबूत करने के लिए मानव जीवन को कई ऐसे ग्रंथ, कई ऐसे काव्य को दिए जो अपने मन में हम उतार करके इस जीवन को सफल बना सकते। मन में है राम, व्यवहार में प्रेम और कर्म में सेवा उनका प्रधान रहा, कि मन में भगवान का नाम लो, व्यवहार में प्रेम रहे और कर्म जो हो सो सेवा की भावना से रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण को लिखते हुए रामायण, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली आदि ग्रंथों में उन्होंने एक ही बात को दोहराया बार बार कि परहित सरिस धर्म नहीं, कि दूसरों के हित करना ही धर्म है, दूसरों को पीड़ा को अपना पीड़ा समझना ही धर्म है और दूसरों को कल्याण करना ही धर्म है। तुलसीदास जी ने अपने मन के भीतर का जो क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष है उनको निकालने का प्रयत्न किया। उन्होंने रामचरितमानस में राम को विवेक, रावण को अहंकार, सीता को पवित्रता की चेतना, हनुमान को भक्ति सेवा, लक्ष्मण को अनुशासन, भरत को त्याग और निस्वार्थ प्रेम की शिक्षा देने के लिए रामायण को लिखा।
1: तो अभी आप प्रकाश लचन जी को सुन रहे थे, जिनसे बात की आसिता रघु ने। विदेशी समाचारों की ओर बढ़ते हैं। 29 अमेरिकी राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली वकीलों ने बेटा पर अंदरूनी रिसर्च को छिपाने का आरोप लगाया है। द गार्डियन की रिपोर्ट के अनुसार इस रिसर्च में कथित तौर पर पाया गया था कि इंस्टाग्राम किशोरों के लिए लत लगाने वाला हो सकता है। ये आरोप तब लगाए गए जब कैलिफोर्निया के ओकलैंड में एक फेडरल कोर्ट में मेटा के खिलाफ एक बड़ी कानूनी लड़ाई शुरू हुई। इस मुकदमे की सुनवाई 6 से 8 हफ्ते तक चलने की उम्मीद है। मुकदमे के अनुसार मेटा ने जानबूझकर इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऐसे रिसर्च बनाए जिनसे युवा यूजर्स ऐप से जुड़े रहे, जबकि उन्हें पता था कि इनमें से कुछ रिसर्च उनकी मानसिक सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। रुख करते हैं भारत। पुणे में कल मंगलवार को 7वीं ब्रिंक्स आईसीटी कार्य समूह की बैठक के दूसरे दिन डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना डीपीआई और डिजिटल शासन पर विशेष चर्चा हुई। बैठक में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर गठित फोकस समूह और डिजिटल ब्रिक्स टास्क फोर्स के सत्र आयोजित किए गए। सदस्य देशों ने डिजिटल सेवाओं को किफायती, समावेशी, सुरक्षित, विश्वसनीय और नागरिक केंद्रित बनाने के लिए सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। भारत ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर फोकस समूह की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ब्रिक्स देशों के समक्ष अपने डीपीआई मॉडल को प्रस्तुत किया। भारत की ओर से ब्रिक्स डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना कोष और डीपीआर समाधानों की ब्रिक्स प्रायोगिक परियोजनाओं से संबंधित अवधारणा पत्र भी प्रस्तुत किए। इन प्रस्तावों का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्र में सहयोग और व्यावहारिक साझेदारी को बढ़ावा देना है। मौसम संबंधी जानकारियां कुछ इस प्रकार है। हमारे इलाके पर नम और हल्के रूप से अस्थिर हवाएं चल रही है। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान लगाया जाता है कि सुबह के वक्त बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर बारिश होती रहेगी। कभी कभी सामान्य से तेज वर्षा होगी और कोहरे भी छाए रहेंगे, मुख्य रूप से टापू के आधे पूर्वी हिस्से में और सेंट्रल प्लाटो पर। सुबह के वक्त धीरे धीरे मौसम में सुधार आने लगेगा, लेकिन फिर भी पूर्वी क्षेत्र में बादल घिरे रहेंगे और बारिश होती रहेगी। पूर्व में और ऊंचाइयों पर शाम के वक्त और रात में भी ऐसा रहेगा। पूर्व की ओर से करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। प्रवाह रेखा के उस पार समुद्र खराब रहेगा, 2 मीटर 50 की ऊंची लहरें उठेंगी, लेकिन फिर भी धीरे धीरे ये कम होने लगेंगी। दूर समुद्र में सुबह के वक्त और शाम के वक्त न जाने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लाटो पर न्यूनतम तापमान 16 और 18 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम 21 और

24 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 और 22 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम तापमान 26 एवं 28 डिग्री सेल्सियस के बीच। सुबह सूर्योदय 6:29 पर, जबकि सूर्यास्त शाम 5:00

0: देंगे अपने तकनीकी सहयोगियों कादर और थावनी को। कुछ ही समय में शोक समाचार और सूचनाएं।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

railroad constable में 73 साल के 73 years old के जनाब मामून रशीद पंडोर जनाब मामून रशीद पंडोर जो मामून नाम से भी जाने जाते थे का इंतकाल हो गया है उनका जनाजा आज दिन के 10 बजे आज सुबह 10 बजे उनके बेटे जनाब अब्दुल रहमान पंडोर के मकान रॉयल रोड कांस्टेबल से उठाकर दफनाने के लिए कांस्टेबल का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा फ्यूनरल टुडे एट 10 एएम न्यू रिवर गार्डन वॉर्मली ब्रॉक्सबोर्न इंग्लैंड में बयासी साल के 82 ईयर्स ओल्ड के श्री बिहारत रामफल जो प्रेम नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है उनका अंतिम संस्कार आज 10 बजे जीएमटी वहीं न्यू रिवर गार्डन वॉर्मली ब्रॉक्सबोर्न इंग्लैंड में किया जाएगा रॉयल रोड मालेंगा सेपिया में 91 साल की 91 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सावित्री दीपुआ पैदाशी नाम किसुंदयाल जो सावित्री नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है उनकी अर्थ आज दिन के 11:30 बजे उनकी बेटी इंदिरा रामरतन के घर रॉयल रोड मालेंगा सेपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ले मारियान ओबुई की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 11:30 AM La Chapelle Ardente Moura, Petite Rivière Mai, assis salgue, 80 years old, qui Shri Sanasi Gorya. श्री सनासी गोरिया जो रामदास नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है उनकी अर्थ आज दिन के 12 बजे लाशा पहला दौत मोहा पिछित रिव्य से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शिविर की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट नून कौरश अवयता वाकवा में 67 साल के 67 ईयर्स ओल्ड की मिस अंजनी देवी वेलगन जो अंजनी देवी नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी आज दिन के 12 बजे उनके दामाद सोरन गमेसो के घर कौशंगीता वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थॉमा मेल के शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रमेशन टुडे एट नून NHDC परंचोबे प्लन मायो में 58 साल के 58 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती कविता पेंचिया पैदाशी नाम एरसन जो कविता मादाम होत नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी आज दिन के दो बजे रेस्टोंस NHDC उनके मकान NHDC बरंचोबे प्लन मायों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लन मायों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रमेशन टुडे एट 2 PM विदेशी लेन बेलवेदिया में 75 साल की 75 ईयर्स ओल्ड की श्री विजय विदेशी जो विजय नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी आज दिन के सवा दो बजे उनकी पत्नी श्रीमती प्रेमावती विदेशी के घर विदेशी लेन बेलवेदिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांचिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रोमेशन टुडे एट 2:15 PM अवेनी एडगर किरें क्लेयरफोन नंबर तीन फिनिक्स में 78 साल की 78 ईयर्स ओल्ड की श्री देव जुनाई जो मोती नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी आज दिन के ढाई बजे उनके बेटे श्री अशोक जुनाई के घर एवेन्यू एडगर किरें क्लेयरफोन नंबर तीन फिनिक्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आली भैयाओं की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM प्रीडम रोड रिविया डिजोंगी में

0: फ्रीडम रोड रिविया डिजोंगी में 71 साल के 71 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती मारा लक्ष्मी बापू, श्रीमती मारा लक्ष्मी बापू पैदाशी नाम यागापेन जो आनी नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे उनके पति श्री वासु बापू के घर फ्रीडम रोड रिविया डिजोंगी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौजाबले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। पियर सिमोनी स्ट्रीट फ्लोरियाल में 78 साल की 78 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती कमलावती संजावन, श्रीमती कमलावती संजावन पैदाशी नाम ठाकुर जो कमला नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 10 बजे उनके घर पियसी मनेट स्थित फ्लोरियाल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाहा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 10 AM। रुद कास्केट पाल्मा कैट्रोबोर्ड में 72 साल की 72 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती मीराबाई रागू पैदाशी नाम कहानू जो शांति नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उनके पति श्री आनंद रागू के घर रुद कास्केट पाल्मा कैट्रोबोर्ड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पाल्मा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 1 PM। रुद रॉयल मोंटाई ओरी में 68 साल के 68 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती लीलावती कन्या पैदाशी नाम ओजायब जो वीना नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह साढ़े नौ बजे उनके बेटे श्री नवीन नंद कुमार कनाई के घर रुद रॉयल मोंटाई ओरी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेकोंस्टांस सेंपियर की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 9:30 AM। नंबर 105 अवेनी ला पेरूज बेलरोज में 73 साल के 73 ईयर्स ओल्ड के श्री ब्रिजमोहन सिरतन जो क्रिसुन सिरतन नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उनके घर नंबर 105 अवेनी ला पेरूज बेलरोज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेटो क्रिमेशन ग्राउंड ले जाया जाएगा। Commission today at 1 PM. Shastri Road, Saint-Julien-Tuthmont 44 साल के 44 years old के श्री राज गंगलाल सीबन जो वकील नाम से भी जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके पिता श्री प्रेमचंद सीबन के घर लाल बहादुर शास्त्री रोड सेंट जूलियन दुतमों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौंदेमास के शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 11 AM। महात्मा गांधी रोड थ्वाबुचिक त्रियोले में 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड के श्री शरदानंद पाउदा जो शरदानंद नाम से भी जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के डेढ़ बजे उनके घर महात्मा गांधी रोड थ्वाबुचिक त्रियोली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्यमिनीस की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे एट 1:30 PM। शुभ मिडविन सभी परिवारों के साथ हमारी दिले हमदर्दी है।
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: Welcome to RM2
1: Radio Musti
2: North, South
1: 103.5
2: East, West
1: 96.4
2: Center
1: 99.4
2: RM2 Radio Musti The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
1: Morning Beat. A good beat for your morning show. James.
2: RM2, Radio Musti, in the mix.

आज के सुबह का सफर मेरा पूरा होता है, अब आपको साथ मिलेगा विदिता का गिफ्ट और वाउचर्स के साथ बहुत सारा प्यार। एंजॉय कीजिएगा अपने दिन को और अपने प्रोग्राम को भी। बाय बाय मेरी तरफ से, और एंजॉय कीजिए, टेक केयर।

0: Show
1: from RMTV Radio Musty.
0: A good beat for you.
2: 7:17 हो चुके हैं दोस्तों, आप जुड़ गए हैं अपने मॉर्निंग

उम्मीद के साथ अगर आपको भी किसी को मैसेज करना है, किसी के दिल की कोई बात कहनी है, तो आप हमें कर सकते हैं मैसेज 5499124 पर। और आज अगर किसी स्पेशल का बर्थडे है और उसे सरप्राइज देना चाहते हैं, तो हम यहीं पर हैं आपको सरप्राइज के लिए। बस उसके लिए उसका टेलीफोन नंबर बताना है और साथ में ही बताना है अपना या उनका टेलीफोन नंबर के साथ पूरा पता। अगर आप दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इंजॉय कीजिए गानों को और हम यहीं पर वेट कर रहे हैं आपके मैसेजेस के साथ में। इंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: A very good morning, जी. Welcome, स्वागत है आपका. सुबह के 7:20 मिनट हुए हैं. आज है 19th of August. मैं विदिता आपका साथ दे रही हूँ आप ही के मॉर्निंग बीच में ऑन रेडियो मस्ती. तो चलिए देर न करते हुए अब आ ही गए हैं तो कुछ गिफ्ट वगैरह भी लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि हमारे जो लिसनर्स हैं मॉर्निंग में उनको खुश कर दें. तो चलिए भाई, अगर मुगैम्बो खुश होने के लिए रेडी है तो चलिए यहाँ पर शुरुआत ही करेंगे हम एक गेम के साथ. नाउ यू हैव टू क्लोज योर आइज एंड लेट द म्यूजिक टेक यू ऑन अ जर्नी. Jennifer with melodies, memories and timeless voice of Shaan, the one and only Shaan. And yes, Radio Masti ki taraf se aapko chance mil raha hai to experience the magic live. Yes, you play with RM2 Radio Masti and stand a chance to win a VIP ticket. Aur ye hoga for the spectacular Shaan live concert. One voice, one stage, one unforgettable night at SVICC on 5th of September और ये होगा रात के 8 बजे. Proudly organized by ticketbox.mu. And yes, चलिए तो अभी अगर आप ready हैं हमारे साथ हमारे game में participate करके ये जो ticket है VIP ticket जीतने का, तो आप मुझे ये बताइए, what can you book on ticketbox.mu? Yes, what can you book on ticketbox.mu? Is it A, only hotel? Is it B, hotels and events? Is it C, hotels, flights, spas, activities, gift cards, local and international events, and much more? So you have to give me the right answer on 5499-1294.
0: RM2
1: Radio Musti.
3: Tamam deals, inarrive coûte métrique. Pas croise, pas rêvé. Du 14 au 31 août, profite jusqu'à 50% discount. Oui, zotin bien attendé. Carreau, robinet et sanité à top qualité avec du rat, 50 tranquillité. Tamam deals là, tamam même ça. Métrique, une enseigne du groupe KRMG.
4: Béala, Wednesday Bazaar, leur Gekot Winners. Wednesday Bazaar, c'est tous les mercredis dans Douban Winners.
5: Et promotion, bidoune balle. N courgette pour 13,95 €. N betterave pour 14,95 €. N filet, 1 kilo orange pour 69,95 €. 500 grammes blanc, bisec, aile de poulet frais pour 109,95 €.
4: Pas de prix là. Bazaar, Maudirou. Rendez-vous Côte Winners tous les mercredis pour Wednesday Bazaar.
6: On est tous winners.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: एंड यस गाइस, अभी थोड़ी देर पहले जैसे हमने एक सवाल किया था आपसे, समय हो गया अभी
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: बाप रे बाप, इतने सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इतने सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया. अब टाइम तो लग ही जाता है ना, इतने सारे लोगों के नाम की पर्चियां निकालना, ओ माय गॉड. चलो तो यहाँ पर फाइनली हमें हमारा विनर मिल गया है. हमने आपसे सवाल किया था, व्हाट कैन यू बुक ऑन ticketbox.mu? Is it A, only hotels? Is it B, hotels and events? Is it C, hotels, flights, spas, activities, gift cards, local and international events, and much more? And the right answer is C, where you can actually book your hotels, flights, spas, activities, gift cards, local and international events, and much more. So, bhai, yahan par main aapko bataun ki bahut sare logon ne participate kiya. It was very, very, very difficult for me. लेकिन फाइनली हमारे पास हमारे जो विनर हैं वो हमें मिल गए हैं. मैं शान के बारे में आपको बताऊं तो शान जो है, शान इज़ वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट बिलवड प्लेबैक सिंगर्स, नोन फॉर ए स्मूथ सॉफुल एंड वर्सटाइल वॉइस. और मैं आपको बताऊं कि ये जो लेट 90s था ना, यहाँ से इनकी जो जर्नी है ये आई कैन से कि यहाँ पर उसने स्पीड पकड़ी एंड बिकेम अ फैमिलियर वॉइस इन बॉलीवुड थ्रू रोमांटिक मेलोडिक एंड फील गुड सॉन्ग्स. सालों के बाद काम करते करते करते बॉलीवुड में उन्होंने अपनी एक जगह बनाई है, अपना एक स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग जो है बनाई है अक्रॉस जनरेशंस. और उनकी आवाज में जो वार्म है, जो वो स्टेज पर जब आते हैं ना, बहुत ही एफर्टलेसली गाते हैं और कनेक्ट होते हैं इमोशनली अपने ऑडियंस के साथ. और उनकी जो कैरिस्मेटिक एनर्जी है, लेट मी टेल यू कि ये जो उनकी आवाज़ है ना, आप जब बस 5 सितंबर को उनको देखेंगे स्टेज पर परफॉर्म करते हुए. एंड वैसे भी आप लोगों ने शान के गाने भी तो सुने हैं, इतने सारे गाने उनके आपने उनके गाने सुने होंगे. उनकी आवाज़ में बहुत मिठास के साथ साथ प्यार भी, अपनापन भी है. तो चलिए जानते हैं कि अभी विनर कौन बने हैं, किसको मिल रहा है ये VIP टिकट. सो द विनर इज विजया लक्ष्मी बुपन फ्रॉम कों दे मास्क पावे. कंग्रेचुलेशंस विजया लक्ष्मी जी, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है और आपको मिल रहा है RM2 रेडियो मस्ती के साथ खेलने पर एक VIP टिकट टू असिस्ट द स्पेक्टाकुलर शान लाइव कॉन्सर्ट. सो 5 सितंबर रात 8 बजे, ऑर्गेनाइज्ड बाय ticketbox.mu. आपको आना पड़ेगा MBC अपने ID कार्ड के साथ टू कलेक्ट योर गिफ्ट. एंड कंग्रेचुलेशंस.
1: Morning beat. A good beat for your morning show. James.
2: RM2 Radio Musti in the mix.
3: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.

0: जिसका हमें इंतजार था उस पल का वो पल आ गया है. चलिए अभी समय हो गया है हम उनको विश करते हैं जिनका आज स्पेशल डे है उनसे बात करते हैं. हेलो गुड मॉर्निंग. हेलो
1: हेलो
0: गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग.
1: गुड मॉर्निंग.
0: गुड मॉर्निंग. दिस इज दलदेश दलगीश. दलगीश राइट.
1: दलगीश.
0: दलगीश. हाय दलगीश. हाउ आर यू.
1: गुड थैंक यू.
0: पहचान लिया.
1: यस आई एम लिसनिंग टू द रेडियो राइट नाउ.
0: मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है.

0: from Radio Masti.
1: All right, तो दलगिश रोज मॉर्निंग में रेडियो मस्ती सुनते हैं, है ना?
2: Yes, indeed.
1: Okay, so दलगिश, it's a pleasure for me कि मॉर्निंग में मैं आपको बर्थडे विश करूं अपनी पूरी रेडियो मस्ती टीम की तरफ से और लोलो हाइपर मार्केट की तरफ से, क्योंकि ये जो हमारा बर्थडे ऑफ द डे है इज एक्चुअली स्पॉन्सर्ड बाय लोलो हाइपर मार्केट. एंड एवरी डे हमें कोई ना कोई मिलता है जिनको हम सरप्राइज करते हैं, सो यू आर द लकी वन टुडे. और मेरे ख्याल से यहाँ पर श्रेष्ठा दैनी ने पोंजी साग से आपका नंबर भेजा था हमें आपको सरप्राइज करने के लिए. सो वी विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. एंड लोलो हाइपर मार्केट की तरफ से यू आर गेटिंग वन वाउचर विच यू हैव टू कम टू एमबीसी एंड कलेक्ट. एंड आपके पास दो दिन है, आज नहीं तो कल. एंड यू वांट टू से समथिंग दलगिश?
2: आई वुड से थैंक यू टू माय वाइफ फॉर
1: एंड
2: माय सिस्टर-इन-लॉ एंड माय नीस एज़ वेल.
1: मैं सरप्राइज हो जाती हूँ. मैंने इसीलिए जिंगल नहीं डाला ताकि मैं आपसे बात करूँ और आप पहचान हो ले, लेकिन आपने पहचान लिया, सो थैंक यू सो मच. चलिए इसी बात पे, जिनका नंबर नहीं लगा उनका भी मुंह मीठा करते हैं अगले गाने के साथ. सो थैंक यू सो मच दलगिश, एंड आई विश यू अ ग्रेट ग्रेट ग्रेट बर्थडे.
2: थैंक यू,
1: बाय, हैव अ गुड डे, बाय.

0: जी हाँ, इनका चेहरा देखने के लिए हम भी इंतजार कर रहे हैं। हम भी कब से लाइन में खड़े हैं कि आएंगे और हमें खबर बताएंगे कि क्या चल रहा है स्पोर्ट्स की दुनिया में।
1: स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट।
2: स्पोर्ट्स न्यूज
3: रेडियो मस्ती इन द मिक्स।
0: तो चलिए स्वागत करते हैं हम इनका। वेरी गुड मॉर्निंग अरविंद।
4: Good morning, आपको. Good morning, RM2 listeners. The latest from the sports world. UEFA Champions League playoff matchों में draw ही draw. तीन मैच, तीनों draw. Dinamo Zagreb 2, Viking 2. Fenerbahçe और Olympique Lyon के बीच match draw गया 1-1. Levski Sofia 0, AK Athens 0. मतलब Olympique Lyon के लिए advantage क्योंकि home मैदान में return leg खेला जाएगा. आज सेल्टिक का मुकाबला LAS के टीम से है। हापुएल बेर्शेवा खेलेगा साबा के खिलाफ। NEC बोडो ग्लिंट स्लोवियान ब्रैटिस्लावा का मुकाबला सेलिए से है। क्लब फ्रेंडलीज भी खेलेंगे। हाइडेनहेम 2 बायर्न म्यूनिख 4। आज स्पेन के ला लीगा में एथलेटिको मैड्रिड का मुकाबला मालागा से होगा। स्पेन का कप्तान रोड्री अब स्पेन में ही खेलेगा। बार्सिलोना के लिए रोड्री ने साइन किया ट्रांसफर फी 65 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग। वेस्ट हैम यूनाइटेड का डिफेंडर आरोन वन बिसाका अस्टन विला में आ गया है। पहले लोन का सौदा हुआ है पर सीजन के अंत में उसे खरीदना होगा। वेस्ट हैम रिलेगेट होके चैंपियनशिप में खेल रहा है पर बिसाका प्रीमियर लीग में ही खेलेगा अस्टन विला के साथ। लिवरपूल का 40% शेयर अब अमेज़न फाउंडर जेफ बेजोस के कंसोर्टियम ने खरीद लिया। 1892 होल्डिंग्स और पैसे लगाना चाहता है लिवरपूल को खरीदने के लिए। इस कंसोर्टियम का नाम 1892 होल्डिंग्स है क्योंकि 1892 में ही लिवरपूल की स्थापना हुई थी, फाउंडिंग ईयर ऑफ लिवरपूल। अमित भाटिया लिवरपूल का वाइस चेयरमैन बनने वाला है। इस डील से लिवरपूल का वैल्यू 6 बिलियन पाउंड स्टर्लिंग के करीब हो गया है। आर्सेनल और फ्रांस का पूर्व कप्तान पैट्रिक वियेरा अब सेनेगल का हेड कोच बन गया। वियेरा का जन्म सेनेगल में ही हुआ था। 8 साल का था जब फ्रांस गया। फ्रांस के साथ 100 से अधिक मैच खेल पाया था। वियेरा अब अपना अनुभव सेनेगल में लाएगा। टेनिस सिंसिनाटी ओपन में कल मैडिसन कीज मीरा आंद्रीवा जेसिका पेगुला जीत पाई। मेदवेदेव की हार हुई नाकाशिमा के खिलाफ। महिला डबल्स वीमेन्स डबल में विलियम्स बहनों की हार हुई। कोको गोफ क्वालिफाई हो पाई। वेरेव अनिसिमोवा भी आगे जा पाए। क्रिकेट में श्रीलंका और भारतीय टीम के बीच पहले टेस्ट मैच का आज 5वां और आखिरी दिन है। टीम इंडिया दूसरी इनिंग्स में केवल 193 रन बना पाई। केवल ऋषभ पंत हाफ सेंचुरी पूरा कर पाया। श्रीलंका की टीम की बैटिंग चल रही है 4 विकेट के नुकसान पर।

0: 84 रन 84 रन पर 4 विकेट। जीतने के लिए भारतीय टीम को चाहिए 6 विकेट और श्रीलंका को 288 रन 288 रन टू विन। आज आखिरी दिन का खेल है श्रीलंका में। सो दैट्स इट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। चलते चलते हम आलिमोगिस कहेंगे हमारे बीच वॉली टीम जो इन दिनों इजिप्ट में है फॉर द अफ्रीकन चैंपियनशिप और ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए भी ये महत्वपूर्ण होगा। कल हमारे लड़कों की हार हुई, लड़कियां जीत पाई, सो आशा करते हैं कि आज दोनों की जीत हो और हम भी खुश रहे, रेडियो मस्ती के साथ मस्ती करते रहे। हैव ए नाइस टाइम।
1: थैंक यू,
0: फिर मिलेंगे।
1: ओके,
0: टेक केयर, बाय बाय।
1: थैंक यू अरविंद।
2: This magazine was brought to you by Quality Deco, the floor expert.
3: Jumbo, Quality Deco fin lanceau extravaganza sales. Un fois par l'année, c'est un code prix incroyable mais vrai. Bob, des pieds pas 100 roupies. Des pieds pas 4 pieds pas

0: चलिए दोस्तों एक और गेम के लिए हम रेडी हो गए हैं। अगर आप भी रेडी हो गए हैं तो यहाँ पर आप अगर मेरे सवाल का जवाब देते हैं तो क्या पता आपको मिल सकता है इनाम। जी हाँ, तो यहाँ पर हम आपके लिए जो क्वेश्चन लाए हैं वो अगर आपने मुझे सही सही बताया तो मैं आपको बताऊँ आपको क्या मिल रहा है। जी हाँ, आपको मिल सकता है 40 मिनट का हाइड्रा ग्लो फेशियल एट प्राणा स्किन एंड लेज़र क्लिनिक। तो आई डोंट नो अगर आप लोगों ने कभी इसे किया है या नहीं, क्योंकि आपकी स्किन के लिए ये बहुत बहुत बहुत अच्छा होता है। पता है ये जो डीप क्लेंजिंग होता है और एक्सफोलिएशन होता है, हाइड्रेशन, स्पेशली ये जो सीरम इन्फ्यूजन होता है आपकी स्किन का, आपकी स्किन को और भी ग्लोइंग बनाता है, जैसे वो कहते हैं ना कि जान डाल देता है। और साथ में उसका हाइड्रा ग्लो मास्क, तो ये है सोने पे सुहाग, आपका स्किन एकदम ग्लो करता है। एंड ये सारी चीजें जो है ना, इट्स ऑल डिजाइन टू लीव योर स्किन फीलिंग रिफ्रेश, स्मूथ एंड ब्यूटीफुली रेडिएंट, एंड योर ग्लो स्टार्ट्स एट प्राणा। तो आपको मुझे बस मेरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा, आपको मुझे ये बताना पड़ेगा कि टाइगर श्रॉफ को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इनका असली नाम क्या है। टाइगर श्रॉफ को हम सभी जानते हैं कि ये टाइगर श्रॉफ है और जैकी श्रॉफ के बेटे हैं, लेकिन इनका असली नाम क्या है। वो तो उनका स्क्रीन का नेम है ना, तो असली नाम आपको मुझे बताना है 5491294।
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: YouTube.
1: Radio Musty.
2: Une envie de McDonald's là tout de suite, mais pas envie de bouger. Pas gagné tracas. Fais appel à McDelivery. Ton burger préféré, tes frites bien chaudes et ta boisson fraîche livrées directement chez toi grâce à Deliveroo et Odamanzé. À midi, le soir, n'importe quand l'estomac l'a grogné, n'est commandé, nous amener. Et en ce moment, profite de la livraison gratuite. Plus d'infos sur notre site web. McDelivery, pas bouger, nous vini.
3: McDonald's, ba-da-ba-ba-ba, I'm loving it.
4: Moments that matter with SICOM.
5: सबसे जोली परियोजना अक्सर शुरू होएला एगो निर्णय से नवा गाड़ी लेके अपन कारोबार के आगे बढ़ाए के अपन भविष्य के मजबूत बनाए के या फिर आज ऐसा जीवन चुने के जोन पर्यावरण यानी लॉन्विहोन म खातिर बेहतर होए। सिकोम तोहर सब परियोजना के आगे बढ़ाई में साथ दिवेला। हमने दिने से देवल जाए होला होम लोन आर लीसिंग के कई गो ऑप्शन बा जोन तोहरा पर्यावरण यानी लॉन्विहोन मो पर कमती असर डाले में तोहरा प्रोत्साहित करेला जेकर से आई होला पीढ़ी खातिर भी एगो निमन आर बेहतर काल बनाए सकबा। हमने के वित्तीय समाधान तोहर सपना तोहर जीवन के सब फैसला आर उस सब पल में तोहर संगी बा जोन तोहर खातिर सबसे जस्ती मायना रखेला। सिकोम एगो ऐसन साथी है जिकर लगे हर जरूरत के समाधान है। इमे नियम आ शर्त भी लागू बा। सिकोम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
4: It was moments that matter with SICOM.
1: Tech Mag, powered by 365.
6: Bien plus encore.
7: Many people avoid fast charging because they believe it damages their phone's battery. But is that really true? Experts say heat, not fast charging itself, is the biggest enemy of lithium-ion batteries. Modern smartphones are designed to manage charging speeds intelligently, slowing down automatically as the battery fills up to reduce stress and overheating. Using fast charging occasionally is unlikely to have a major impact on your battery's lifespan. However, repeatedly exposing your phone to high temperatures, such as charging it under a pillow, leaving it in direct sunlight, or using it heavily while charging can accelerate battery aging. So, if you want your battery to last longer, don't just focus on charging speed. Keeping your phone cool may be the most important habit of all.
1: Tech Mag was powered by
6: 365. Bien plus encore.
8: Chan live in Mauritius Saturday 5th of September at SVICC Pai. Join us for the biggest Chan concert ever produced in Mauritius with his complete crew of 28 artists. Get your tickets now at ticketbox.mu or call on 214-6464. Another great event brought to you by Gravity Zero. Ticketbox.mu, your one-stop shop for the best events, hotels and flights in Mauritius.
0: RM2
1: Radio Musty.
0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
9: अनियस दोस्तों, चलिए यहाँ पर हमने आपसे सवाल किया था और हमने आपसे पूछा था कि आप हमें ये बताइए कि टाइगर श्रॉफ जो हैं, ये तो उनका जो है बॉलीवुड में उनको सभी टाइगर श्रॉफ के नाम से जानते हैं, लेकिन उनका असली नाम क्या है। द राइट आंसर इज जय हेमंत टाइगर।

0: श्रॉफ जी, उनका नाम है जय हेमंत टाइगर श्रॉफ एंड उनके पापा को तो आप जानते ही हैं जैकी श्रॉफ, उनकी मम्मी आयशा दत्त, एंड इन्होंने 2014 में अपने करियर की शुरुआत की थी एज हीरो विद द मूवी हीरोपंती। तो यहां पर सही जवाब देखकर विनर बने हैं कौन, चलिए ये भी जान लेते हैं। तो सही जवाब दिया है वीना इसरबिया ने, आप रहती हैं खिपाई सैपिये, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको मिल रहा है इनाम, यानी कि आपको मिल रहा है 40 मिनट हाइड्रा ग्लो फेशियल एट प्राणा स्किन एंड लेजर क्लिनिक। तो आप जाकर अपना ये जो खुद को पैम्पर करने का मौका मिल रहा है ज़रूर करें, ये जो क्लेंजिंग एक्सप्लोरिकेशन हाइड्रेशन सीरम इन्फ्यूजन एंड हाइड्रा ग्लो मास्क है, ये सब डिज़ाइन किया गया है आपके स्किन के लिए, जो करने के बाद आप फीलिंग करेंगे रिफ्रेश्ड एंड स्मूथ। तो चलिए इसी के साथ टाइम फॉर मी कि हम बड़े समाचारों की ओर मिलते हैं थोड़ी देर में।
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
2: Radio Musti.
3: North, South,
2: 103.5.
3: East, West,
2: 96.4.
3: Center,
2: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Namaste. सबसे पहले स्थानीय खबर, पेंशन सुधार के एगो नवा चरण के दो सप्ताह आगे स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के हालिया आंकड़ा ई दर्शावता कि अवकाश प्राप्त करे परी पेंशन प्राप्त करे होला लाभार्थी लोग की संख्या कमती होवत बा। जुलाई महीना में 273,829 आदमी लोग के बीओपी बेसिक पेंशन रिटायरमेंट पेंशन प्राप्त होवत रहल, जेकर में से मॉरिशस में 267,763 आदमी लोग रहलन सा और रोड्रिक्स में 6,066 आदमी लोग, अर्थात मई महीना के तुलना में 1,402 लाभार्थी कमती बा। मॉरिशस में दाम के दबाव टिकाऊ बने रह सकेला, गल जून महीना में 200 आदमी लोग के संगे चलावल गल बैंक ऑफ मॉरिशस के इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे के हालिया रिपोर्ट में ये बात सामने आल बा। बरिस के मई महीना के अंत में व्यापक मुद्रा स्फीति 4.2% रहल, 54% आदमी लोग जवाब देते हुए बोलन सा कि ये स्तर काफी ऊंचा बा। आय होला महीना खातिर बतावल गल बा कि मुद्रा स्फीति दिसंबर 2026 में औसतन 4.9% हो, जेकर बाद 2027 के जून महीना में ई बढ़ के 5% लिख हुई। अब चली जा एमवी अपेक्स मामला की चर्चा करब सर। मंत्री अरविंद बुलेल एक बार फिर से बोलन कि गल 15 जुलाई के कोनो खास वजह के लेके ही 547 मवेशी के जहाज से उतारल गल रहल। वो ये बात पर जोर दिलन जा कि ऐसे नहीं बा कि अब आवत हला भी ऐसने हुई, मवेशी के आयात के लेके अभी भी सख्त सैनिटरी नियम बा, जैसे कि कहाँ से ई जनावर आनल जात बा आर आयातक लोग खातिर लागू शर्त आदि। ई मवेशी मोजाम्बिक से आनल जात रहल आर पहले तो गिना खातिन निर्धारित रहल, एकर से आगे की मॉरिशस से गुजरी। मंत्री याद दिलैलन कि नामीबिया आर केन्या अभी एकमात्र देश हवन सा जेकरा जहां से मॉरिशस के देने मवेशी निर्यात करे के अनुमति बा। दूसरा तरफ अटोर्नी जनरल के ई मामला से निपटे के खातिन उनकर राय के मांग करल गल बा। कोनो भी तरह से लागू प्रावधान के कमी के चलते कार्रवाई चलावल जा सकेला। सरकार अपन कृषि परियोजना के संबंध में ठोस चरण के देने बढ़त आते फागे ते देने से काल मंगर के दिन रेजवी के प्रेसिजन फार्मिंग एआई ड्रिवन फूड प्रोडक्शन स्कीम के लॉन्चिंग करल गल। एक अंतर्गत कृषि के लेके अतिरिक्त रूप से डिजिटल औजार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग करल जाए। बजट 2025-2026 में कर घोषणा करल गल रहल, तब से फागे कृषक और टेक्नोलॉजी सप्लायर लोग के सहयोग से एगो ढांचा के तैयारी के संदर्भ में काम करत आते। नयापन यह कि अब से बजट 2026-2027 में फागे में प्रेसिजन फार्मिंग खातिर 6 मिलियन रुपया के प्रावधान रही। एक संगे संगे 12 मिलियन रुपया वार्षिक तौर से पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम खातिर निर्धारित करल जाए। मंत्री अरविंद बुलेल उ माटी के फिनों से इस्तेमाल पर ही जोर देवे चाहत हवन, जेकरा त्याग देवल गल बा। एकर संगे संगे नौजवानों के हर क्षेत्र में आकर्षित करे के कोशिश भी करल जाल बा। एगो ऐसा सेक्टर बनावे चाहत हवन जेकर में जस्ती टेक्नोलॉजी के प्रयोग हो सके जो जस्ती आकर्षक भी हो। निवासी लोग के जस्ती तीव्र

0: पारदर्शी और कारगर सेवा प्रदान करे के उद्देश्य से मॉरिशन प्रशासन के आधुनिक बनाए के लक्ष्य निर्धारित करल गलवा सार्वजनिक सेवा मंत्री राज पेंचा के देने से। असल में पब्लिक सेक्टर में सुधार आने के बाद सरकारी कार्यक्रम में शामिल बा और ई एगो नवा कानूनी ढांचा और एक संगे संगे स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक सर्विस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म 2025-2029 के भी ध्यान में रखते हुए तय करा जाए जेकर परी अभी काम करा जा बा। मंत्री के अनुसार कईन कार्य शुरू हो गल बा, जैसे कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम पर ही गौर करे के और कईन सेवा के डिजिटलाइज करे के जेकर में ह्यूमन रिसोर्स मूवमेंट और स्कीम ऑफ सर्विस शामिल बा। आवत 9 और 10 सितंबर रेजू में सुधार प्रक्रिया एगो नवा आयाम ले जब कार्यशाला के आयोजन करा जाए जेकर में पब्लिक अर्थ सार्वजनिक निजी सेक्टर के प्रतिनिधि और शैक्षणिक और न्यायिक पेशा के प्रतिनिधि लोग भी भाग लियन स। एकर लक्ष्य है भावी कानून खातिन आधार बनाए खातिन बड़ा निर्देश निर्धारित करेगे। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के अनुसार मारागास्कर के बिजनेसमैन मामी अगावातो मांगक पर ही जांच समाप्त करे खातिन 6 महीना से 1 बरिस लगे सके। एक्टिंग चीफ ऑफ इन्वेस्टिगेशन परमाहंस आलिया के काउंटर इंटरोगेशन के बाद ई बात सामने आलबा। काल बेल एंड रिमांड कोर्ट के सामने मामी अगावातो मांगा के रिहा करे के मोशन पर ही बहस चलल जेकर में वो मेलगोज कैदखाना से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भाग लेलक। वकील कुशालोबिन ई बात पर ही जोर देलन कि उनकर मुवक्किल गल 9 महीना से हिरासत में हवन। एक संगे संगे वो मामी अगावातो मांगा के खिलाफ दर्ज 2 शिकायत के विश्वसनीयता पर भी प्रश्न उठायलन। क्लिनिक परीक्षण के आम जनता ने बेहतर तरीका से पहुंचाए के और समझाए के एबेन के हेनेसी पार्क होटल में ट्रस्ट फंड फॉर द स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर के पब्लिक क्लिनिक ट्रायल यूनिट देने से एक सहयोग से आयोजित एक कार्यशाला के हये मुख्य उद्देश्य रहल। स्वास्थ्य मंत्री अनिल कुमार बिच्छू की उपस्थिति में कईन डॉक्टर सहित कईन स्वास्थ्य पेशेवर लोग ई बैठक में भाग लेलन स। कार्यशाला के उद्घाटन पर ही स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिच्छू ई बात पर जोर देलन कि मॉरिशस सार्वजनिक क्षेत्र में क्लिनिकल ट्रायल्स के विकसित करे के एगो महत्वपूर्ण मील के पत्थर पार करता थे। वो याद दिलायलन कि ई प्रथा कुछ देश में विशेष रूप से दक्षिण अफ्रीका में आगे से ही कईन दशक से मौजूद बा और ई पहल मॉरिशस के अपन पिछड़ापन के दूर करे के और मरीज लोग के लाभ खातिर चिकित्सा अनुसंधान के मजबूत करे के अनुमति दे। आज तुलसीदास जयंती बा। तुलसीदास जी भारत के सबसे बड़का और महान कवि रहलन, विशेषकर भगवान श्री राम के प्रति गहरा भक्ति और समर्पण खातिर जाने जानलन। कवि तुलसीदास जी अपन लोकप्रिय कृति रामचरितमानस में श्री राम जी के रूप में हमने के एगो ऐसा दर्पण देवेलन जेकर से सम्मुख रख के हमने अपन गुण और अवगुण के मूल्यांकन कर सकब सा। दूसरा देश के समाचार में 29 अमेरिकी राज्य के एगो प्रतिनिधि मंडल करे होला वकील मेहता पर अंदरूनी रिसर्च के लुकाए के आरोप लग रही बा। द गार्डियन के रिपोर्ट के अनुसार ई रिसर्च में कथित तौर पर ही पावल कल बा कि इंस्टाग्राम नौजवान लोग खातिन लत लगाई होला हो सकेला। ई आरोप तब लगावल कल जब कैलिफोर्निया के ओकलैंड में एगो फेडरल कोर्ट में मेटा के विरोध में एगो बड़का कानूनी लड़ाई शुरू होल। ई मुकदमा की सुनवाई 6 से 8 हफ्ता लेक चले की उम्मीद बा। भोजपुरी के समाचार ही है पर पूरा भय ध्यान दिला जा। बहुत ही धन्यवाद।
1: Morning beat. A good beat for your morning show. James.
2: RM2 Radio Musty in the mix.

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: All right, that was nice. Subah ke 8 kar 12 minute, Wednesday 19th of August. Hello, good morning and welcome to Radio Musti. Ye hai aapka morning beat. मैं वेदिता आपके साथ हूँ और बस हम भी थोड़ा हाथ पैर इधर उधर हिलाए रहे थे. जुम्बा जुम्बा का गाना चल रहा था. थोड़ा सा जुम्बा तो बनता ही है और मॉर्निंग मॉर्निंग में थोड़ा सा स्ट्रेच करना, थोड़ा सा योगा, ब्रीद इन ब्रीद आउट का थोड़ा सा चलता है और अच्छा रहता है. और अभी जिस तरह से सर्दी का मौसम चल रहा है, लोग लेज़ी हो रहे हैं, कहते हैं बारिश हो रही है सुबह, हमें वॉक पर नहीं जाना, बारिश हो रही है, कैसे करेंगे मेडिटेशन, ध्यान कहीं और जाता है. ध्यान तो कहीं और जाता है, मुझे पता ही ध्यान कहाँ जाता है, चाय पकौड़े पर ही जाएगा और कहाँ जाएगा. चलो कोई नहीं, लेकिन कम से कम हमारे गीतों के साथ आप थोड़ा एंजॉय तो कर रहे हैं, थोड़ी मस्ती तो कर रहे हैं. अभी के लिए इट्स टाइम, चलिए जान लेते हैं मौसम की बात चली है तो आज दिन भर मौसम कैसा रहने वाला है. मिलते हैं रजनी से.
0: इट्स द वेदर ब्रॉडकास्ट विद विनर्स.
3: ओनली टू विनर्स.
4: हमारे इलाके पर नम और अस्थिर हवाएं बह रही हैं. अगले 24 घंटों के लिए अनुमान लगाया जाता है कि सुबह के वक्त बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर बारिश होती रहेगी. कभी कभी सामान्य से तेज बारिश होगी और टापू के आधे पूर्वी हिस्सों में और सेंट्रल प्लाटो पर कोहरे छाए रहेंगे. फिर भी सुबह के वक्त कुछ सुधार आने लग सकता है मौसम में और इसके साथ साथ पूर्वी इलाके में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होगी मुख्य रूप से देश के पूर्वी इलाके में और ऊंचाइयों पर. शाम के वक्त और रात में भी ऐसा होगा. पूर्व की ओर से करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी. प्रवाह रेखा के उस पार समुद्र खराब रहेगा.

0: रहेगा। 2.50 मीटर की ऊंची लहरें उठेंगी, फिर भी शाम के वक्त इसमें सुधार आने लगेगा। सुबह के वक्त और शाम में दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 16 और 18 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम 21 और 24 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 और 22 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम 26 एवं 28 डिग्री सेल्सियस के बीच। सुबह 6:29 पर सूर्योदय, शाम 5:58 पर सूर्यास्त।
1: Your weather forecast on RM2.
2: Radio Musti.
3: Béala, Wednesday Bazaar, la gécote winners. Wednesday Bazaar, c'est tous les mercredis dans tout ban winners.
4: Et promotion, bidoun bal. En courgette pour 13,95 €. En betterave pour 14,95 €. En filet 1 kg orange pour 69,95 €. 500 g blanc, bisec aile de poulet frais pour 109,95 €.
3: Ban prix là, Bazaar Maudirou. Rendez-vous cote winners tous les mercredis pour Wednesday Bazaar.
5: On est tous winners.

0: 2
1: रेडियो मस्ती।
0: सिकम के लोन्स और लीसिंग सुविधा के माध्यम से आप सकबा अपन सब खोजे के बिना कोनो चिंता के पूरा करे। सिकम के ग्रीन लोन जुनबा वो तोहरा एगो ऐसा जीवन शैली अपनाई खातिर वित्तीय सहायता देवेला जोन जस्सी इकोलॉजी खा। इसे हमने के जोली टापू के भी फायदा होई। जस्सी जानकारी खातिर आज ही सिकम से संपर्क कर या हमने की वेबसाइट sikkim.mu पर जाई हा। इमे नियम आ शर्त भी लागू बा। सिकम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
2: Sikkim Group, a lifetime commitment.
3: Et KFC sur Ultimate Smoky Single là.
4: Et pas gay, prends ça.
5: Ah bon? Pas gay, prends?
4: Non, pas gay, prends ça, man.
3: Tu gagnes défilé que sur les cheese, sur tomate, sur fromage, et que sur ban la sauce smoky mayo, là au milieu en bas, mais déjà où ça? Pas gay, prends. Eh ben. L'in prend moi Ultimate Smoky Zinger, Lina, allez.
6: Dare, the Ultimate Smoky Zinger, avec tout ce que vous aimez, à 345 roupies. Attention, ça fera des jaloux.
0: KSC. RM2.
1: Radio Musty.

0: बेबी को बेस पसंद है।
1: हाँ लेकिन मुझे तो अभी पिज्जा का बेस याद आ रहा है।
2: A good beat for your morning show. RM2
3: Radio Musti.
1: ऐसे ऐसे गाने सुनने को मिलते हैं ना तो दिमाग कहीं और चला जाता है और फिर डाइटिंग का स्वाहा हो जाता है। Alright, 8:21, good morning, स्वागत है आप सबों का, my lovely Radio Musti family, कैसे हैं आप सुन रहे हैं Morning Beat, मैं हूँ वेदिता। सुबह का टाइम है, कॉफ़ी या चाय हाथ में, और हाँ लेडीज़ जो घर पे हैं और बाकी तो झाड़ू उठाती हैं, वो कितना डांट डांट के उनको बोला है कि भाई जब सब काम पे चले जाते हैं तो आराम से बैठो, और ये एक टाइम होता है, मोमेंट होता है, आपके लिए होता है और किसी का नहीं होता। आप अपनी ज़िंदगी में खुद को 15 मिनट दे सकते हो, 10 मिनट बहुत ज़्यादा मांग लिया, 15 मिनट, 10 मिनट दे सकते हो, आराम से बैठ कर चाय पी सकते हो, ब्रेकफास्ट कर सकते हो, इतना कर सकते हो, खुद पे इतना मेहरबान हो सकते हो। सबके पीछे भागते हो यार, घर का काम करते हो, खाना बनाते हो, बच्चों को देखते हो, पति को देखते हो, बड़े बुजुर्गों को देखते हो, आपके पैट्स को संभालना पड़ता है, राशन लेने जाना होता है, घर का सामान खरीदना होता है, बाज़ार जाना होता है सब्जी लेने के लिए, वैसे भी आज वेडनेसडे है, पता नहीं कहाँ कहाँ मार्केट जाना पड़ता है आपको, सब कुछ तो करते हो, 15 मिनट नहीं दे सकते खुद को क्या आराम से बैठकर चाय पीने के लिए? तो गिव इट टू यू एवरी डे, रोज 10 मिनट या 15 मिनट, मेक श्योर कि ये टाइम आपका हो और ये किसी का ना हो। देखो मैंने 15 मिनट बोला, फिर मैंने 10 मिनट भी बोला, लेकिन जो गाना आ रहा है ना, अगर आप इस समय ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, आई एम श्योर इस गाने को सुनने के बाद आपका जो मूड है ना वो एकदम से बदल जाएगा। यू वांट टू लिसन टू दिस वन, मेरा फेवरेट गाना है, सुनो और अपने आप को थोड़ा सा कूल डाउन करो।

0: मैंने कहा था ना कि ये गाना आपका मूड बदल देगा, सो कुछ असर हुआ।
1: मॉर्निंग बीट, अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो। जेम्स
2: RM2 Radio Musti in the mix.
0: मूड तो बदल गया, अब थोड़ा स्टाइल भी बदल ले। चलो स्माइल तो करो भाई थोड़ा सा।

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: दोस्तों हम सभी मॉर्निंग में रश करते हैं, स्पेशली जो हमारे ड्राइवर्स हैं. हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? देखा, स्माइल करते हुए कितने अच्छे लगते हैं. आप सोचिए, जब आप स्माइल करते हुए ड्राइव कर रहे हो, बगल में देखा कोई और ड्राइव कर रहा है, वो भी आपको देख के स्माइल कर रहा है, कितने सारे स्माइल्स फैल जाएंगे हाँ पूरे रोड पे. और फिर उसके बाद जब आप ऑफिस जाएंगे तो कितना मज़ा आएगा. ये जो स्माइल होता है ना, कंटेजियस होता है. एक बार किसी ने स्माइल कर दिया, फिर देखना जहाँ भी जाओ ये फैलाते रहो, खुशबू की तरह होता है, फैलता रहता है. वाह, क्या बात है. तो मैं आपसे बस यही कहूंगी कि लाइफ में हमेशा आपको चाहिए कि आप जो भी स्ट्रेस है आपके लाइफ में, जो प्रॉब्लम्स है ना, उसके बारे में भूल जाइए. वो अभी है, वो कुछ नहीं होता, हो गया तो हो गया, उसके बारे में चिंता करने की क्या बात है. अब जो होने वाला है उसके बारे में सोचो. तो हमारी जो पहली थॉट होता है ना हमारे मॉर्निंग में जब हम उठते हैं कि अरे कहीं देर ना हो जाए, फिर पता है क्या होता है, देर हो ही जाती है. कभी लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो जाए, फिर गड़बड़ हो ही जाती है, क्योंकि आपने उसको एनर्जी दे दी ना, तो वो हो जाता है. इसलिए मॉर्निंग में सबसे पहले उठने के बाद आप पहले तो थैंक यू बोलो गॉड को कि आप जिंदा हो,

0: और आपकी हेल्थ अच्छी है. यू प्रे फॉर योर हेल्थ, यू थैंक यूनिवर्स कि आपकी लाइफ में जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, एंड आपके आसपास में इतने प्यारे प्यारे लोग हैं जो आपका साथ दे रहे हैं. सो स्माइल कीजिए, म्यूज़िक इन्जॉय कीजिए, एंड हमेशा ना अपने दिमाग को पॉजिटिव चीज़ों के लिए ही यूज़ कीजिए. जब नेगेटिविटी सामने आने लगे ना, जैसे कुछ गलत दिमाग में आने लगे, तो बोलना कि हाँ ये गलत टाइम है, भी निकल गया, अब अच्छा होने वाला, अच्छा होने. आपकी जो सोच है ना, ये बहुत कुछ बदल देती है. एक्चुअली आपका जो दिमाग है ना, वही करता है जो आप चाहते हो. तो अपने दिमाग से बोलो कि भैया आज ना हमारा दिन बहुत अच्छा होने वाला है, तो दिन अच्छा ही होगा, आज हम बहुत खुश हैं. तो ऑटोमेटिकली आपका मैसेज पहुँच जाएगा, आप खुश हो जाओगे. और कोई सोच रहा कहता है अच्छा नौकरी का क्या, नौकरी तुम दोगी? अरे नहीं बेटा, काम किया, मेहनत की है, जब अच्छा अच्छा सोचोगे तो नौकरी भी आ जाएगी. नौकरी तलाश कर रहे हो ना, इट्स गोइंग टू बी योर ग्रेट ग्रेट ग्रेट वीक. चलो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन मिलेगा जरूर. तो अच्छी अच्छी सोचो और अच्छा अच्छा होगा.
1: मॉर्निंग बीट, अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो.
2: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स.

0: चलिए तो जितने भी लोगों ने हमारे अरविंद जी का जो स्पोर्ट्स अपडेट है वो मिस कर दिया, एक बार फिर बढ़ते हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड की ओर।
1: स्पोर्ट्स न्यूज़
2: रेडियो मस्ती इन द मिक्स।
0: चलिए एक बार फिर से वेलकम करते हैं अरविंद का। गुड मॉर्निंग।
3: गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग RM2 लिसनर्स। द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। UEFA चैंपियंस लीग प्ले ऑफ मैचों में ड्रॉ ही ड्रॉ, तीन मैच तीनों ड्रॉ। दिनामो ज़ाग्रेब 2 बाइकिंग 2।

0: Fenerbahçe और ओलंपिक लियों के बीच मैच ड्रॉ गया 1-1। लेवस्की सोफिया 0 एथेंस 0, मतलब ओलंपिक लियो के लिए एडवांटेज क्योंकि होम मैदान में रिटर्न लेग खेला जाएगा। आज सेल्टिक का मुकाबला एलएएस के टीम से है। हापुएल बेर्शेवा खेलेगा साबा के खिलाफ। एनईसी बोडोग्लिंट स्लोवियान ब्रातिस्लावा का मुकाबला सेलिए से है। क्लब फ्रेंडलीज भी खेलेंगे, हाइडेनहेम 2 बायर्न म्यूनिख 4। आज स्पेन के ला लीगा में एटलेटिको मैड्रिड का मुकाबला मालागा से होगा। स्पेन का कप्तान रोड्री अब स्पेन में ही खेलेगा। बार्सिलोना के लिए रोड्री ने साइन किया ट्रांसफर फी 65 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग। वेस्ट हैम यूनाइटेड का डिफेंडर आरोन वन बिसाका अस्टन विला में आ गया है। पहले लोन का सौदा हुआ है पर सीजन के अंत में उसे खरीदना होगा। वेस्ट हैम रिलेगेट होके चैंपियनशिप में खेल रहा है पर बिसाका प्रीमियर लीग में ही खेलेगा अस्टन विला के साथ। लिवरपूल का 40% 40% शेयर अब अमेज़न फाउंडर जेफ बेजोस के कंसोर्टियम ने खरीद लिया। 1892 होल्डिंग्स और पैसे लगाना चाहता है लिवरपूल को खरीदने के लिए। इस कंसोर्टियम का नाम 1892 होल्डिंग्स है क्योंकि 1892 में ही लिवरपूल की स्थापना हुई थी, फाउंडिंग ईयर ऑफ लिवरपूल। अमित भाटिया लिवरपूल का वाइस चेयरमैन बनने वाला है। इस डील से लिवरपूल का वैल्यू 6 बिलियन पाउंड स्टर्लिंग के करीब हो गया है। आर्सेनल और फ्रांस का पूर्व कप्तान पैट्रिक वियेरा अब सेनेगल का हेड कोच बन गया। वियेरा का जन्म सेनेगल में ही हुआ था। 8 साल का था जब फ्रांस गया। फ्रांस के साथ 100 से अधिक मैच खेल पाया था। वियेरा अब अपना अनुभव सेनेगल में लाएगा। टेनिस, सिनसिनाटी ओपन में कल मैडिसन कीज मीरा आंद्रीवा जेसिका पेगुला जीत पाई। मेदवेदेव की हार हुई नाकाशिमा के खिलाफ। महिला डबल्स विमेन्स डबल में विलियम्स बहनों की हार हुई। कोको गोफ क्वालिफाई हो पाई। वेरेव अनिसिमोवा भी आगे जा पाए। क्रिकेट में श्रीलंका और भारतीय टीम के बीच पहले टेस्ट मैच का आज 5वां और आखिरी दिन है। टीम इंडिया दूसरी इनिंग्स में केवल 193 रन बना पाई। केवल ऋषभ पंत हाफ सेंचुरी पूरा कर पाया। श्रीलंका की टीम की बैटिंग चल रही है 4 विकेट के नुकसान पर 84 रन 84 रन फॉर 4 विकेट। जीतने के लिए भारतीय टीम को चाहिए 6 विकेट और श्रीलंका को 288 रन 288 रन टू विन। आज आखिरी दिन का खेल है श्रीलंका में। So that's it, the latest from the sports world. चलते चलते हम अलमोगिस कहेंगे हमारे बीच वोले टीम जो इन दिनों इजिप्ट में है फॉर द अफ्रीकन चैंपियनशिप और ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए भी ये महत्वपूर्ण होगा। कल हमारे लड़कों की हार हुई, लड़कियां जीत पाई। सो आशा करते हैं कि आज दोनों की जीत हो और हम भी खुश रहे, रेडियो मस्ती के साथ मस्ती करते रहे। हैव ए नाइस टाइम, फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय,
1: हैव अ गुड डे अरविंद।

0: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
2: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.
4: दोस्तों कहते हैं इफ़ यू स्पीक टू मच यू विल लाई, यानी जो लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं वो झूठ भी बोल लेते हैं। बहुत ज़्यादा सोचोगे तो डिप्रेस में आ जाओगे, डिप्रेशन हो जाएगी। बहुत ज़्यादा क्या करोगे ना, यू विल बी टेकन फॉर ग्रांटेड। और बहुत ज़्यादा विश्वास करोगे तो धोखा भी मिल सकता है। साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा काम करोगे ना तो यू विल लूज योर लाइफ। जिंदगी जो है ना जीने के लिए है। काम उतना ही करो जितना करना चाहिए, अपने आप को उतना ही थकाओ जितना आपकी बॉडी जो है सह सकता है। हद से ज़्यादा सब कुछ कभी कभी हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है। वैसे ही जैसे तेल, चीनी और नमक कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा तेल, बहुत ज़्यादा चीनी, बहुत ज़्यादा नमक आपको बीमारी दे सकता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा स्वीटनेस भी इंसान के लिए अच्छा नहीं होता। जो लोग बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं, तो ऐसे लोग जो है ना लाइफ में हमेशा उनको ज़्यादा दर्द मिलता है, धोखा मिलता है और कड़वाहट भी मिलती है। इसीलिए लाइफ में जो भी होना कंट्रोल, और जितना हो सके प्यार करना है ना तो पहले अपने आप से प्यार करो। जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता ना, वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि कोई और उससे प्यार करे। जितना आप अपने आप से प्यार करोगे ना, लोग आपसे उतना ही प्यार करेंगे और उतना ही आपको रिस्पेक्ट भी देंगे।
0: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
0: Petite, on me disait ce que je devais faire. Mais moi, je voulais juste faire du sport.
1: Milo, libère ta force.
0: Parce que j'aime me surpasser, aller plus loin qu'hier.
1: Milo, libère ta force.
0: La beauté du sport, c'est qu'il ne regarde pas qui je suis, mais me permet de devenir ce que je souhaite. Je suis déterminée, passionnée. Je tombe, je me relève et je vais de l'avant. C'est pourquoi j'aime le sport.
2: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.
0: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
2: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: तो सभी का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं हमारे प्रोग्राम में जो कि है आपका अपना मॉर्निंग बीट। और हमारे बाद थोड़ी देर में मरिश्मा अपना जो गीतों का सिलेक्शन है वो तैयार कर रही है। कहती है मैं भी आऊंगी, मैं फाड़ दूंगी, या मैं सच कहती हूँ मैं छा जाऊंगी। हाँ बेटा, आपके छाने का ही टाइम आ रहा है। तो चलिए, फिलहाल के लिए हम हैं आपके साथ हैं। जितने भी लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेट मी विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। जो थोड़े जीवन में निराश हैं उनको कहूंगी कि लाइफ में सब कुछ हमेशा के लिए इटर्नल नहीं रहता है। वक्त बदलता है, मौसम है और बुरा वक्त भी टल जाता है, अच्छे दिन भी आते हैं। तो इसीलिए अपनी लाइफ में कभी भी शक मत करना कि आपकी जिंदगी जैसी है वैसी ही रहेगी। जिंदगी बदलती है और किस्मत भी बदलती है।
0: RM2 रेडियो मस्ती।

चलो जी, इसी के साथ मेरे जाने का टाइम हो गया है. दिस इज विनीता सिंह, बाय बाय. एंड आपसे मुलाकात कल मॉर्निंग में होगी 7 बजे. अपना ख्याल रखिएगा एंड बी प्लीज बी केयरफुल अगर ड्राइव कर रहे हैं और मौसम अगर खराब है, बारिश हो रही है, तो जरा रोड पे सेफ्टी जरूर दिखाएं. इसी के साथ आई एम गोना सी यू टुमारो. ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: घड़ी मिलाते चलिए सुबह के 9 बजे हैं।

0: समाचारों को लेकर उपस्थित हो चुकी है रजनी जी, आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते रजनी जी।
1: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। सबसे पहले स्थानीय खबरें। पेंशन सुधार के एक नए चरण के दो हफ्ते पहले स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के हालिया आंकड़े अवकाश प्राप्त करने पर पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या में कमी दर्शाती है। मई महीने की तुलना में जुलाई महीने में 1402 लाभार्थी कम दिखाई दिए। मॉरिशस में दामों का दबाव टिकाऊ बना रह सकता है। इस तरह पिछले जून महीने में 200 लोगों के साथ चलाए गए बैंक ऑफ मॉरिशस के इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे की हालिया रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। एमवी एपेक्स मामले में मंत्री अरविंद दुल्ले ने ये बात दोहराई कि पिछले 15 जुलाई को किसी खास वजह को लेकर ही 547 मवेशियों को जहां से उतारा गया था। मवेशियों के आयात को लेकर अभी भी सख्त सैनिटरी नियम लागू हैं और किसी भी तरह से लागू प्रावधानों की कमी के चलते कार्रवाई चलाई जा सकती है। कृषि की बात करते हैं। सरकार अपनी कृषि परियोजना के संबंध में ठोस चरण की ओर बढ़ रही है। इस तरह फागे की तरफ से मंगलवार को रिजवी में प्रसिजन फार्मिंग एआई ड्रिवन लेकर फूड प्रोडक्शन स्कीम की लॉन्चिंग की गई। इसके अंतर्गत कृषि को लेकर अतिरिक्त रूप से डिजिटल औजारों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाएगा। एक ऐसा सेक्टर बनाया जा रहा है जिसमें अधिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो और जो ज़्यादा आकर्षित भी बने। आज तुलसीदास जयंती है और तुलसीदास जी भारत के सबसे बड़े एवं महान कवि थे। विशेषकर भगवान श्री राम के प्रति गहरी भक्ति और समर्पण के लिए वे जाने जाते हैं। बढ़ते हैं विदेश समाचारों की ओर। बच्चों पर इंस्टाग्राम के असर से वाकिफ था मेटा। 29 अमेरिकी राज्यों ने जानकारी छिपाने का लगाया आरोप। संक्षिप्त समाचार ये पर समाप्त हुए। अपने ध्यान दिया धन्यवाद। नमस्कार, शुभ दिन।
2: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: RM2 Radio Musti.
1: गानों के साथ उठना और यूं ही दिन के लिए सवरना अच्छी बात होती है। 9:10 अभी 10 मिनट हुए हैं। गुड मॉर्निंग विनीता को धन्यवाद एंड ऑल दोज जो अभी हमारे साथ निभाने चल पड़े हैं इस मस्ती मॉर्निंग शो में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जी। 9 से लेकर 12 बजे
2: के साथ
1: चलो
2: घटा के संग संग
1: अरे चलिए ना।

0: कैसा है जनाब का?
1: क्या ख्याल है आपका?
0: तुम तो मचल गए, हो हो हो,
1: यूं ही फिसल गए। आ, आ,
0: आ। अच्छा, फिसलने का अगला लोकेशन?
1: पिन भेज रहा हूँ, संभाल के चुप क्या चाहे।

Amazing song selections are waiting for your participation, of course, on 5491294 पर. बताइए जी कैसा लग रहा है हमारी मॉर्निंग मॉर्निंग में हमारी सिलेक्शंस फॉर गुडी गुड सॉन्ग्स. हम के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ मैं मनीषमा till 12 बजे. थोड़ी देर में हॉरोस्कोप के लिए तैयार हो जाइएगा.

0: Your daily horoscope.
1: RM2 Radio Musti.
2: चलिए जी, अभी के लिए बढ़ते हैं आपके हॉरोस्कोप के साथ और शुरुआत करते हैं विद एरीज।
3: एरीज मेष राशि,
2: आज का दिन एनर्जेटिक रहेगा। वर्क में आए नए आइडियाज, किसी इंपॉर्टेंट काम में प्रोग्रेस मिल सकती है इससे। पैसों के मामले में अननेसेसरी स्पेंडिंग से बचें। रिलेशनशिप्स में कम्युनिकेशन क्लियर रखें। लकी नंबर 9 आपके लिए।
3: टॉरस वृषभ राशि,
2: पेशेंस आज आप

0: आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ रहेगी. ऑफिस में किसी पेंडिंग मैटर का सोल्यूशन मिल सकता है. फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम मूड को बेटर करेगा. लकी नंबर नंबर 6.
1: जेमिनी मिथुन राशि.
0: आज कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग से फायदा हो सकता है. किसी कलीग या फ्रेंड की एडवाइस यूजफुल साबित हो सकती है. ओवरथिंकिंग को कंट्रोल करें. लकी नंबर नंबर 5.
1: कैंसर कर्क राशि.
0: इमोशनल डिसीजंस लेने से पहले थोड़ा वक्त लीजिएगा जरूर. वर्क में अप्रिसिएशन मिल सकते हैं. हेल्थ के लिए रेस्ट और हाइड्रेशन दोनों पर फोकस करें. लकी नंबर नंबर 2.
1: लियो सिंह राशि.
0: आज कॉन्फिडेंस हाई रहेगा और लीडरशिप क्वालिटीज शाइन करेंगी. करियर में कोई नई अपॉर्चुनिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने आ सकती है. लकी नंबर 1.
1: वर्गो कन्या राशि.
0: प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन से आप आज बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं. फाइनेंशियल मैटर्स में प्रैक्टिकल अप्रोच रखें. पर्सनल लाइफ में एक स्वीट सरप्राइज भी मिल सकती है. लकी नंबर 7.
1: लिब्रा तुला राशि.
0: बैलेंस मेंटेन करना आज जरूरी है. वर्क और पर्सनल लाइफ दोनों को इक्वल अटेंशन दीजिएगा. किसी पुराने कॉन्टैक्ट से अच्छी खबर भी मिल सकती है. लकी नंबर 6.
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि.
0: आज डिटर्मिनेशन स्ट्रांग रहेगा आपके. जो काम काफी टाइम से डिले हो रहा था उसमें थोड़ी सी प्रोग्रेस और मूवमेंट आ सकती है. अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करने के बजाय कॉल्मली एक्सप्रेस करना सीखिएगा. लकी नंबर 8.
1: सजिटेरियस धनुराशि.
0: आज का दिन ऑप्टिमिज्म और पॉजिटिव एनर्जी से भरा रहेगा. करियर में लर्निंग का चांस मिल सकता है. शॉर्ट ट्रैवल या आउटिंग भी रिफ्रेशिंग हो सकती है आपके लिए. लकी नंबर 3.
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि.
0: हार्डवर्क का रिजल्ट मिलने का दिन है. सीनियर या कलीग आपकी ये जो सारी एफर्ट्स हैं नोटिस कर सकते हैं. मनी मैटर्स में इम्पल्सिव डिसीजंस अवॉइड करें. लकी नंबर 4.
1: एक्वेरियस कुंभ राशि.
0: क्रिएटिविटी आज आपकी स्ट्रेंथ रहेगी. नया आइडिया फ्यूचर में बेनिफिशियल हो सकता है, इसलिए उसे इग्नोर ना करें. रिलेशनशिप्स में ऑनेस्टी चूज करें जरूर हमेशा. लकी नंबर 11.
1: पाइसेस मीन राशि.
0: इंट्यूशन आज स्ट्रांग रहेगी आपकी. दिल की सुनिएगा जरूर, लेकिन इम्पोर्टेंट डिसीजंस में प्रैक्टिकल थिंकिंग भी जरूरी रखें. और इवनिंग फैमिली के साथ पीसफुल रहने वाली है. लकी नंबर नंबर 7. ये थे आपके लिए हॉरोस्कोप.
2: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती.

0: 9:42 हुए हैं यहाँ पर आपके मैसेजेस के बहुत चार हो रहे हैं 5991294 पर पढ़ते हैं आपके मैसेजेस वे के लिए अगला गाना हो जाए सभी के नाम जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सासुमा यस आई गेट हियर नताशा जो कि आज हमारे साथ अमंग अस लिसनिंग टू आरएमटी रेडियो मस्ती है भैया हुआ
1: आरएमटी रेडियो मस्ती
0: चलिए जी साथ ही साथ रेडियो मस्ती पर सुन रही है जाना ये गाना चला दीजिए सियारा मेरी ब्यूटीफुल बेटी रीमा जनिता शिष्टा इनान शनि सिल्विया और यूवी कृषि सुसरन फैमिली ऑफ फ्लैट

0: from Radio Musti.
1: बात है, हैव अ वंडरफुल वंडरफुल टाइम अहेड. तो चलिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, यूं ही साथ निभाते चलिए और थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार.

0: कहते हैं अभी के लिए संक्षिप्त समाचार आपके साथ रजनी जी, नमस्कार आपको।
1: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत करती हैं। मॉरिशस में दामों का दबाव टिकाऊ बना रह सकता है। पिछले जून महीने में 200 लोगों के साथ चलाए गए बैंक ऑफ मॉरिशस के इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस सर्वे की हालिया रिपोर्ट में ये बातें सामने आई हैं। पेंशन सुधार के एक नए चरण के दो हफ्ते पहले स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के हालिया आंकड़े अवकाश प्राप्त करने पर पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या में कमी दर्शाते हैं। मई महीने की तुलना में जुलाई महीने में 1402 लाभार्थी कम हैं। सरकार अपनी कृषि परियोजना के संबंध में ठोस चरण की ओर बढ़ रही है। फागे की तरफ से कल खेची में प्रेसिशन फार्मिंग AI ड्रिवन फूड प्रोडक्शन स्कीम की लॉन्चिंग की गई, जिसके अंतर्गत कृषि को लेकर अतिरिक्त रूप से डिजिटल औजारों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाएगा। एक ऐसा सेक्टर बनाया जा रहा है जिसमें अधिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो और जो ज़्यादा आकर्षक भी बने। नागरिकों को अधिक तीव्र, पारदर्शी एवं कारगर सेवा प्रदान करने के मकसद से मॉरिशन प्रशासन को आधुनिक बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, सार्वजनिक सेवा मंत्री राजपेंचा ने। इस तरह अगले 9 और 10 सितंबर को रेज्यू में सुधार प्रक्रिया में नया आयाम जब होगा संबंधित कार्यशाला का आयोजन। एक नए कानूनी ढांचे और साथ में स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक सर्विस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स 2025-2029 को भी ध्यान में रखते हुए तय किया जाएगा, जिस पर अभी कार्य किए जा रहे हैं, मंत्री ने ऐसा कहा। विदेशी समाचारों की ओर बढ़ते हैं। अफगानिस्तान में राष्ट्रसंघ मिशन के अनुसार काबुल के एक एडुकेशन सेंटर में हुए धमाके में कम से कम 42 बच्चे घायल हुए हैं। मिशन ने धमाके की वजह के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। अफगानिस्तान में मानवाधिकारों पर UN के विशेष दूत रिचर्ड बेनेट ने इससे पहले काबुल के पश्चिमी इलाके दहशते भरची में एक स्कूल के पास हुए भयानक हमले की निंदा की थी। सोमवार को हुए धमाके के शिकार लोगों की उम्र 9 और 14 साल के बीच की थी। और ये खबर, 29 अमेरिकी राज्यों का एक प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने मेटा पर अंदरूनी रिसर्च को छिपाने का आरोप लगाया है। द गार्डियन की रिपोर्ट के अनुसार इस रिसर्च में कथित तौर पर पाया गया था कि इंस्टाग्राम किशोरों के लिए लत लगाने वाला हो सकता है। संक्षिप्त समाचार यहीं पर समाप्त हुए, आपने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। कुछ ही समय में शोक समाचार। रामधनी रोड प्लेंडी पापाई में 77 साल के 77 ईयर्स ओल्ड के श्री सुक्रामान्य गोइंथान जो दासन नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थ थी आज दिन के 3 बजे। उनकी पत्नी श्रीमती सती लक्ष्मी गोइंथान के घर रामधनी रोड प्लेंडी पापाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्रियोले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। स्कूल लेन एक्वायो में 71 साल के 71 ईयर्स ओल्ड के श्री बालदेव सुभों जो प्रवीण नाम से भी जाने जाते थे और कृषि सेक्टर में पहले काम करते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के ढाई बजे उनके बेटे श्री सचिन शर्मा सुभों के घर स्कूल लेन एक्वायो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुडे 2:30 PM। शुक में रुबिन परिवारों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।
2: Morning beat. A good beat for your morning show. James.
3: RM2 Radio Musty in the mix.

0: आ जाता है सभी प्यार करने वालों के नाम। 10:10 होने को है और आप जुड़े हुए हैं RM2 रेडियो मस्ती के साथ। गुड मॉर्निंग अगेन, वेलकम इन द सेकंड आवर। लेते एक छोटा सा ब्रेक, देन विल बी प्लेइंग ऑफ कोर्स कुछ मिक्स सॉन्ग्स ऑफ द लेट यू नो 90s अर्ली 2000s और कुछ नए नए गाने आप सभी के लिए जस्ट फॉर योर एंटरटेनमेंट। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमेजिंग गुड मॉर्निंग इज आवर टू ईच एंड एवरीबॉडी जो कि हमारे साथ सुन रहे हैं बस RM2 Radio Masti.
1: RM2 Radio Masti.
2: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत होवा तो भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा साड़ी, जोधपुरी क्रॉप टॉप, शेरवानी सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोड़ी फैशन।

0: RM2 Radio Masti.
1: Fashion tips powered by Halkuri Fashion, house of ready-made garments.
0: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings Radio Musty.
0: वेलकम बैक। 10:32 हुए हैं, जुड़े हैं RM2 Radio Musty। तो चलिए जी, आप घर पर बैठे बैठे या फिर कहीं पर आप साथ में आ रहे हैं, ऑफिस में हो, ड्राइव कर रहे हो, कहीं पर आप प्लान करें कि क्या खाएं, लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें एक फैशन टिप। आज का फैशन टिप है लॉन्ग ड्रेसेस के नाम। यस, लॉन्ग ड्रेस का ये एक ऐसा आउटफिट है जो आपको इंस्टेंटली एलिगेंट, ग्रेसफुल और स्टाइलिश लुक दे देता है। हर ड्रेस को अलग तरीके से आप कैरी कर सकते हैं। अगर ड्रेस है फ्लावी और प्रिंटेड है तो एक्सेसरीज को सिंपल रखिए, और अगर ड्रेस प्लेन है तो स्टेटमेंट ईयरिंग्स, नेकलेस या स्टाइलिश बेल्ट के साथ आप ऐड कर सकते हैं, ग्लैमरस बन ही जाता है। शूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हील्स लॉन्ग ड्रेसेस के साथ हाइट और एलिगेंस ऐड करते हैं। वाइड फ्लैट्स या सैंडल्स गिव अ मोर रिलैक्स एंड क्लासी लुक आल्सो, लेकिन आप तब करें यू नो मीडियम हाइट ऑफ हील्स, मैं कहूंगी। ये थे आपके लिए फैशन टिप। योर वेल ट्यून RM2 रेडियो मस्ती।
1: फैशन टिप्स वाज पावर्ड बाय हल्कोरि फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स।
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: क्या बात है. गुड मॉर्निंग जी. आई एम आयशा. वॉन्ट टू डेडिकेट द नेक्स्ट सॉन्ग फॉर माई कलीग्स जो कि सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं. नेक्स्ट सॉन्ग गोज आउट माई कलीग्स आर वर्किंग टुगेदर विद मी एक्चुअली, एंड दिन आराम के लिए, बुध फैमिली के लिए एक्चुअली, एंड जगधारी के लिए भी. रोमांटिक सॉन्ग्स. ओके जी, अगला गाना तू ही दिस दा. इट्स अ नया सॉन्ग. आई होप यू लाइक इट.
1: RM2 Radio Masti.
0: Have a nice day to you too, RV. Aapne bahut sare messages aa rahe hain. Hello ji, good morning. Radio Masti team, enjoy kijiyega.

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: सिकम के लोन्स और लीसिंग सुविधा के माध्यम से आप सकबा अपन सब खोजे के बिना कोनो चिंता के पूरा करे। सिकम के ग्रीन लोन जुनबा वो तोहरा एगो ऐसा जीवन शैली अपनाई खातिर वित्तीय सहायता देवेला जो जस्सी इकोलॉजी खा। इसे हमने के जोली टापू के भी फायदा होई। जस्सी जानकारी खातिर आज ही सिकम से संपर्क कर या हमने की वेबसाइट sikkim.mu पर जाइए। इमे नियम आ शर्त भी लागू बा। सिकम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
3: सिकम ग्रुप, ए लाइफ टाइम कमिटमेंट।
0: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
3: 103.5,
2: East, West,
3: 96.4,
2: Center,
3: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
4: Time check, din ki 11 baje hain. चलिए सुनते हैं अभी के लिए एक बार फिर से संक्षिप्त समाचार आपके साथ रजनी जी। नमस्कार आपको।
5: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के हालिया आंकड़ों से ये पता चलता है कि पेंशन सुधार के एक नए चरण के दो हफ्ते पहले अवकाश प्राप्त करने पर पेंशन हासिल करने वाले लाभार्थियों की संख्या में कमी आई है। इस तरह देखा गया है कि मई महीने की तुलना में जुलाई महीने में 1402 लाभार्थी कम रहे। मॉरिशस में दामों का दबाव टिकाऊ बना रह सकता है। पिछले जून महीने में

0: 200 लोगों के साथ चलाए गए एक इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे की हालिया रिपोर्ट में ये बातें सामने आई हैं। बैंक ऑफ मॉरिशस की ओर से ये अध्ययन चलाया गया था। एमवी अपेक्स के संदर्भ में मंत्री अरविंद बुल्ले ने ये बात दोहराई कि पिछले 15 जुलाई को किसी खास वजह को लेकर ही 547 मवेशियों को जहां से उतारा गया था। मवेशियों के आयात को लेकर अभी भी सख्त सैनिटरी नियम लागू हैं और किसी भी तरह से लागू प्रावधानों की कमी के चलते कार्रवाई चलाई जा सकती है। फारे की तरफ से कल रिचवी में प्रेसिजन फार्मिंग एआई ड्रिवन फूड प्रोडक्शन स्कीम की लॉन्चिंग की गई, जिसके अंतर्गत कृषि को लेकर अतिरिक्त रूप से डिजिटल औजारों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाएगा। एक ऐसा सेक्टर बनाया जा रहा है जिसमें अधिक टेक्नोलॉजी का उपयोग हो और जो ज़्यादा आकर्षक भी हो। इस तरह सरकार अपनी कृषि परियोजना के संबंध में ठोस चरण की ओर बढ़ रही है। नागरिकों को अधिक तीव्र पारदर्शी एवं कारगर सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से मॉरिशस प्रशासन को आधुनिक बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सार्वजनिक सेवा मंत्री राज पेंचा ने उन्होंने कहा कि अगले 9 और 10 सितंबर को रिचवी में सुधार प्रक्रिया में नया आयाम तब होगा जब संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। विदेश समाचारों में अफगानिस्तान में यूएन मिशन ने बताया कि काबुल के एक एजुकेशन सेंटर में हुए विस्फोट में कम से कम 42 बच्चे घायल हो गए हैं। मिशन ने धमाके की वजह के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। अफगानिस्तान में मानवाधिकारों पर यूएन के विशेष दूत रिचर्ड बेनेट ने इससे पहले काबुल के पश्चिमी इलाके में एक स्कूल के पास हुए भयानक हमले की निंदा की थी। संक्षिप्त समाचार यहीं पर समाप्त हुए। आपने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। कुछ ही समय में शोक समाचार। इरानेसलेन बुसोंज में 49 साल की 49 years old की शर्मिली देवी गिरधारी जो फिफी नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उनके घर इरानेसलेन बुसोंज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉलिव्यू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रमशः टुडे एट 1 PM रामदानी रोड प्लंदी पापाई में 77 साल के 77 years old के श्री सुक्रमान्य गोइंथान जो दासन नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे उनकी पत्नी श्रीमती सती लक्ष्मी गोइंथान के घर रामदानी रोड प्लंदी पापाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्रियुले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM स्कूल ने निक्वायो में 71 साल के 71 years old के श्री बालदेव सुबों जो प्रवीण नाम से भी जाने जाते थे और पहले कृषि सेक्टर में काम करते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के ढाई बजे उनके बेटे श्री सचिन शर्मा सुबों के घर स्कूल लेन इक्वायो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रमेशन टुडे एट 2:30 PM शोक में डूबे सभी परिवारों के साथ हमारी ये दिली हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Morning Beat. A good beat for your morning show.
2: James. RMG.

0: जी बस खुश और ब्यूटीफुल सॉन्ग्स और रोमांटिक सॉन्ग्स का सिलसिला चालू है एंड इट गोज ऑन लाइक दिस हर रोज 9 से लेकर 12 बजे यहाँ पर 11 बजकर अभी 10 मिनट हुए हैं लेट एक छोटा सा ब्रेक देन बी बैक विद मितवा कभी अलविदा ना कहना मूवी से
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं अब इसकी जरूरत नहीं हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है डिजाइनर लहंगास लच्छास जोधपुरीज साड़ीज क्रॉप टॉप्स शेरवानीज कंप्लीट सूट्स ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस हर कोड़ी फैशन रॉयल रोड अपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन फोन नंबर 5799-3782 हर कोड़ी फैशन परंपरा एलिगेंस एंड क्वालिटी
3: Chan live in Mauritius Saturday 5th of September at SVICC Pai Join us for the biggest Chan concert ever produced in Mauritius with his complete crew of 28 artists Get your tickets now at ticketbox.mu or call on 21

0: बात है। आशा करती हूँ कि आप एंजॉय कर रहे हैं अपने मॉर्निंग को। क्या अभी तक मॉर्निंग है, बस कुछ लोग जा रहे हैं अपना लंच करने के लिए, टू ड्राइव कर रहे हो, थोड़ी देर फंसे हो, कोई बात नहीं, भूख लगी है ना, जैसे फ्रस्ट्रेशन को फैसिनेशन में बदल डालो, जस्ट थिंक अबाउट द मेन्यू यू वांट टू ईट एंड देन हैव अ वंडरफुल वंडरफुल लंच आउट देयर। बॉन अपेटिट गोस आउट टू ईच एंड एवरीबॉडी जो अभी तक बस खा रहे हैं। अपना लंच टाइम शुरू कर चुके हैं 11 बजे और 12 बजे खत्म। कुछ लोग तो उनको बहुत ही जल्दी भूख लग जाती है। Have a wonderful time ahead. Enjoy your food, enjoy your lunch, enjoy good company. It's music.
1: RM2 Radio Musti.
2: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
3: Milo, libère ta force.
2: Petite, on me disait ce que je devais faire. Mais moi, je voulais juste faire du sport.
3: Milo, libère ta force.
2: Parce que j'aime me surpasser, aller plus loin qu'hier.
3: Milo, libère ta force.
2: La beauté du sport, c'est qu'il ne regarde pas qui je suis, mais me permet de devenir ce que je souhaite. Je suis déterminée, passionnée. Je tombe, je me relève et je vais de l'avant. C'est pourquoi j'aime le sport.
3: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
4: Nestlé, good food, good life.
1: RM2
5: Radio Musti.

RM2 Radio Musti. RM2 Radio.

0: जाए. The title song of कहीं प्यार ना हो जाए. This one goes out to all those lovers जो कि हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं. दर दर के प्यार करते हैं, दिल खोल कर प्यार करते हैं. अरे दिल में प्यार है तो दिल में भगवान है. ये कोई गलत फहमी और कोई गलत फीलिंग भी नहीं है, बस बयां करने की देरी हो जाती है.
1: RM2 रेडियो मस्ती.
0: और जी सोचते रहते हैं कहाँ है वो, कहाँ है वो लड़की और कहाँ है वो इंसान जो सिर्फ और सिर्फ हमारी बना है या बनी है. अच्छा, दिल के दरवाजे और दिल की आँखियों से देखना शुरू कर दो. यही कही है

0: कमी के पत्ते बने नहीं तो जो करते लगे नहीं।
1: सीढ़ी चढ़ो तो सांप मिलेगा, लूडो का खेल है यूं ही चलेगा। नाको चने चबाए हैं, दांत में कच्ची मक्की है। मियाँ के बाल उड़े क्यों भैया,

एक्चुअली जी हेलो स्वीटी हूँ मैं ब्रांड स्टैंड से। आज एशली के जन्मदिन है, वो 18 साल के हुए हैं। हैप्पी बर्थडे खालू और तुता फैमिली। करते हैं विश आपको पापा सुनील की तरफ से बेस्ट विशेस। हेलो जी, आई एम लीना प्लेन डे हर्ष, वन सॉन्ग फ्रॉम अ लिटिल।

सिस जिया आज वो 7 महीने के हुए हैं. फ्रॉम हस्बैंड राजीव एंड दादी सबीता एंड शिवशंकर फैमिली एंड विक्रम फैमिली ऑल्सो ब्लेसिंग्स फ्रॉम फॉर जिया. ऑफ कोर्स जिया, हैप्पी हैप्पी बर्थडे माय डियर बेबी एंजल.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: Welcome to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: दिन की 12 बजे है. चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे रजनी. नमस्कार.
6: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार. समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं. पेंशन सुधार के एक नए चरण के दो सप्ताह पहले स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के हालिया आंकड़े ये दर्शाते हैं कि अवकाश प्राप्त करने पर पेंशन हासिल करने वाले लाभार्थियों की संख्या कम हो रही है. जुलाई महीने में 273,829 लोगों को बीआरपी प्राप्त हो रहे थे, जिनमें से मॉरिशस में 267,763 लोग थे और रोड्रिग्स में 6,066 लोग, अर्थात मई महीने की तुलना में 1,402 लाभार्थी कम. मॉरिशस में दामों का दबाव टिकाऊ बना रह सकता है. पिछले जून महीने में 200 लोगों के साथ चलाए गए बैंक ऑफ मॉरिशस के इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे की हालिया रिपोर्ट से ये बात सामने आई. इस साल के मई महीने के अंत में व्यापक मुद्रा स्फीति 4.2% थी. 54% लोगों ने जवाब देते हुए कहा कि ये स्तर काफ़ी ऊंचा है. आने वाले महीनों के लिए बताया गया कि मुद्रास्फीति दिसंबर 2026 में औसतन 4.9% होगी, जिसके बाद 2027 के जून महीने में ये बढ़कर 5% तक होगी. मानवीय संवेदना और दूसरों की मदद का जज्बा किसी सीमा, धर्म या राष्ट्रीयता का मोहताज नहीं होता. युद्ध, प्राकृतिक आपदा, विस्थापन, भूखमरी और दूसरे मानवीय

0: संकटों के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाने वाले कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवकों और आम लोगों के साहस व समर्पण को सम्मान देने के लिए हर साल 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया जाता है। ये दिवस दुनिया को याद दिलाता है कि संकट की घड़ी में इंसानियत के लिए उठाया गया एक कदम भी किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। एड वर्कर्स सिक्योरिटी डाटाबेस के अनुसार 2025 में 907 मानवतावादी कर्मचारियों की जाने गई, या तो घायल हुए या अपहरित कर लिए गए, जबकि 2024 में इसकी संख्या 833 थी, जिनमें 350 लोगों की मौत हुई। यहां मॉरिशस में विदेश मंत्री धनंजय रावल ने मानवतावादी कर्मियों को आभार प्रकट किया और अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी अधिकार के बारे में बेहतर जानकारी देने की जरूरत पर जोर दिया। मॉरिशस में ये एक चुनौती है जहां पर कई प्राकृतिक प्रकोप आते हैं, जैसे कि तूफान, मूसलाधार बारिश और बाढ़ आदि। सरकार अपनी कृषि परियोजना के संबंध में ठोस चरण की ओर कदम बढ़ा रही है। फागे की तरफ से कल रेजवी में प्रिसिजन फार्मिंग AI ड्रिवन फूड प्रोडक्शन स्कीम की लॉन्चिंग की गई, जिसके अंतर्गत कृषि को लेकर अतिरिक्त रूप से डिजिटल औजारों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाएगा। आज तुलसीदास जयंती है। तुलसीदास जी भारत के सबसे बड़े एवं महान कवि थे, विशेषकर भगवान श्री राम के प्रति गहरी भक्ति और समर्पण के लिए जाने जाते हैं। विदेश समाचारों में अफगानिस्तान में यूएन मिशन ने बताया कि काबुल के एक एडुकेशन सेंटर में हुए धमाके में कम से कम 42 बच्चे घायल हो गए हैं। मिशन ने धमाके की वजह के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। और भारत की ओर से ऐसी भी खबर आ रही है कि भारत के पूर्वी क्षेत्र में कोलकाता में एक होटल में लगी आग के चलते कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। बताया जा रहा है कि आज सुबह तड़के ही आग लग गई, काला धुआं उठता दिखाई दिया और तीव्र गति से आग की लपटें फैलती चली गई। और अमेरिका के इलिनॉय में 3 बच्चों की एक मां अपने 7 साल के मासूम बेटे को नदी के तेज बहाव से बचाते हुए खुद डूब गई। 31 वर्षीय एंजेलिना कैलेमेंटा की डूबने से मौत हो गई। चांद पर हुई एक्सप्रेस रॉकेट की टक्कर का निशान अब साफ दिखाई दे रहा है। नासा की नई तस्वीरों में क्रैश से बना करीब 60 फीट चौड़ा गड्ढा दिखाई दिया। खास बात यह है कि इसकी तस्वीर लेना भी वैज्ञानिकों के लिए आसान नहीं था। ये तस्वीरें नासा के लूनर रिकॉन्नेसेंस ऑर्बिट ने 11 और 12 अगस्त को ली। वैज्ञानिकों के मुताबिक 5 अगस्त को फाल्कन 9 रॉकेट का ऊपरी हिस्सा चांद से टकराया था। संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, आपने ध्यान दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। कुछ ही समय में शोक समाचार। ईरानसलेन बुसोंज में 49 साल के 49 ईयर्स ओल्ड की शर्मिली देवी गिरधारी जो फीफी नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उनके घर ईरानसलेन बुसोंज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉलेविया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। इन्फॉर्मेशन टुडे एट 1 PM। हमदानी रोड प्लंदी पापाई में 77 साल के 77 ईयर्स ओल्ड के श्री सुक्रमान्य गोइंथान जो दासन नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे उनकी पत्नी सती लक्ष्मी गोइंथान के घर रामदानी रोड प्लंदी पापाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्रियुली की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। स्कूल लेन एक्वायो में 71 साल के 71 ईयर्स ओल्ड के श्री बालदेव सुभों जो प्रवीण नाम से भी जाने जाते थे और कृषि सेक्टर में काम करते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के ढाई बजे उनके बेटे सचिन शर्मा सुभों के घर स्कूल लेन एक्वायो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। शुभ मेरुबेन सभी परिवारों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: रेट्रो रिदम।
1: 12:12 कहते हैं सेम सेम नंबर्स देखकर कुछ लकी होता है, सो डू मेक अ विश। एंड गुड आफ्टरनून, नमस्ते। रेट्रो रिदम शो ऑन गोइंग है अभी विद Nilmani। एंड रेट्रो का मतलब तो आपको पता ही है, 70s, 80s एंड 90s के वो रंगीन गानों का सफर जो हम आपके लिए लाने वाले हैं 2 बजे तक। तो यही RM2 रेडियो मस्ती पर आप साथ देते रहिए। एंड बोना पिची, अगर आप इस वक्त लंच कर रहे हैं, कुछ ही देर में आपको अपडेट देने वाले हैं कि आज हम कौन कौन सी चीज़ों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी के लिए कुमार सानू जी की आवाज़ में दिल का एक छोटा सा डेडिकेशन आपके नाम करते हैं।
0: Retro Rhythm
2: RM2 Radio Musti

0: Retro Rhythm.
1: नगमे गाकर बहुत से लोग चले गए, लेकिन उनकी आवाज अभी तक जिंदा है गानों के जरिए। सही कहा है कि संगीत से जुड़ी हुई कोई भी चीज यादगार और टाइमलेस बन के रह जाती है, एंड आप तक वो टाइमलेस पल फिर से वापस दिलवा रहे हैं गानों के जरिए। तो एक और नगमा पेश है आपके नाम इस ब्यूटीफुल वेंसडे आफ्टरनून पर। एंड ऑल्सो अगर आपके पास कोई गाना है जो आप सुनना चाहते हो या चलाना चाहते हो अपने स्पेशल पर्सन के लिए, 5499124 पर मैसेज कीजिए हमें। इट्स नील मनी आपके ही RM2 वीडियो मस्ती पर।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: रेट्रो रिदम।
1: चाह तो बहुत, क्या गाना है यार। रोमांटिक मूड में वीना जी चली गई, वो अपने हस्बैंड के लिए रोमांटिक गाना मांग रही थी। चलिए आपके लिए हमने चला दिया। हमारे साथ और भी खूबसूरत पीपल कनेक्टेड है व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए। फाकवा से वी हैव विश्वानी जी जो साथ दे रही है, गाना मांग रही है अपनी बहन इंदिरा, शारदा, सहेली नीला, प्रतिभा, शोभा और गीता जी के लिए। फिया जी को भी प्रणाम, आपके लिए भी कुछ स्पेशल गाना चलाएंगे सून। वो सो हैव रेखा जी पोमोजे से कनेक्टेड है वो, और नेक्स्ट गाना वो मांग रही है अपने दोस्तों नौशीन, करियानी, शालिनी, इंदिरा और खास मेरे लिए। और हाउ स्वीट ऑफ यू। तो हो जाए नेक्स्ट गाना आप सभी सुनने वालों के नाम। इट्स यू आर एम टू रेडियो मस्ती और अभी ऑन गोइंग है सिलसिला रेट्रो रिदम का।
0: रेट्रो रिदम
2: आर एम टू रेडियो मस्ती।

0: Retro Rhythm.
1: बजकर 50 समय हुए हैं दोस्तों। आज की जनरेशन के पास ओटीटी है, नेटफ्लिक्स है, लेकिन हमारे जमाने में एंटरटेनमेंट का असली किंग था सिनेमा हॉल। इमेजिन कीजिए शोले, मुगले आजम, मदर इंडिया, मधुमति, गाइड, पकीजा जैसी मूवीज। कुछ तो इतने आइकॉनिक थे कि डेकेड्स बाद भी डायलॉग्स और गाने लोगों को याद है। तो आपको फिर से वही टाइमलेस जमाने में ट्रैवल कराने के लिए नेक्स्ट गाना ला रहे हैं कुदरत मूवी से, स्पेशली फॉर यू, आपके इस आफ्टरनून को अमेजिंग बनाने के लिए।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे गीता जी नमस्कार।
1: नमस्कार निर्मनी, सभी को हमारा नमस्कार। पेंशन सुधार के अगले चरण के लागू होने में अब 2 सप्ताह बाकी हैं। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के ताज़ा आंकड़ों से पता चलता है कि बेसिक रिटायरमेंट पेंशन BRP पाने वालों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। जुलाई में पूरे देश में 2,73,829 लोग BRP प्राप्त कर रहे थे। इनमें 2,67,763 लोग मॉरिशस और 6,066 लोग रॉड्रिक्स में थे। मई महीने की तुलना में इसमें 1,402 लाभार्थियों की कमी आई है। आज 19 अगस्त को विश्व मानवीय सहायता दिवस मनाया जा रहा है। इस साल ये दिवस मानवीय सहायता कर्मियों के खिलाफ बढ़ती हिंसा की गंभीर स्थिति के बीच मनाया जा रहा है। एड वर्कर सिक्योरिटी डेटाबेस के अनुसार 2025 में 960 मानवीय सहायता कर्मी मारे गए, घायल हुए या उनका अपहरण किया गया। 2024 में ये संख्या 833 थी। इनमें से 350 की मौत हुई। एक और बढ़ता खतरा सशस्त्र ड्रोन है, जिनका संघर्ष वाले क्षेत्रों में तेजी से इस्तेमाल हो रहा है। इससे मानवीय सहायता कर्मियों और आम नागरिकों के लिए खतरा और बढ़ गया है। मॉरिशस में विदेश मंत्री धनंजय रामफल ने मानवीय सहायता कर्मियों को श्रद्धांजलि दी और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के बारे में लोगों में अधिक जागरूकता फैलाने की ज़रूरत पर जोर दिया। ये मुद्दा मॉरिशस के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश को प्राकृतिक आपदाओं, खासकर तूफान, भारी बारिश और बाढ़ के खतरों का सामना करना पड़ता है। विदेश खबरों में, भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित कलकत्ता के एक होटल में आग लगने से कम 9 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। कई अन्य लोग घायल हुए हैं। आग आज तड़के लगी। कुछ ही समय में होटल में घना धुआं भर गया। आग लगने की वजह एयर कंडीशनर में हुआ विस्फोट बताया जा रहा है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार।

0: और समाप्त हुए कुछ ही देर में शोक समाचार। बर्नफैन कोच मिलितिया में 51 साल के 51 ईयर ओल्ड के जनाब मोहम्मद रफीक बहादुर, जो रफीक से ज्यादा जाने जाते थे और मेसन थे, इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज शाम 4 बजे उनकी माँ मिसेज रोजिदा मौलाबख्श के घर बर्नफैन कोच मिलितिया से उठाकर कोच मिलितिया की मस्जिद ले जाया जाएगा और दफनाने के लिए आलमा का कब्रिस्तान। फ्यूनरल टुडे एट 4 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
1: Retro Rhythm.
2: RM2 Radio Musty.

0: Retro Rhythm.
1: एक बजकर 9 मिनट हुए हैं एंड आज यानी कि 19 अगस्त को हम मना रहे हैं वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। और फोटोग्राफी की तरह म्यूजिक भी वक्त को कैप्चर करके अमर कर देता है। एक तस्वीर एक पल को संभाल कर रखती है और एक गाना उस पल की फीलिंग्स को सालों बाद भी वही एहसास दिला देता है। तो इसी खूबसूरत थॉट के साथ वेलकम बैक टू रेट्रो रिदम सेकेंड यानी कि आखिरी आओ में, जहाँ पर मेलोडी अपने साथ एक याद लेकर आती है। मैं हूं नीलमणी और चलिए वापस ले चलते हैं आपको म्यूजिकल मेमोरी को रिवाइंड कराने के लिए RM2 रेडियो मस्ती पर ही।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: बताइए कि आपकी ऑल टाइम फेवरेट पुरानी बॉलीवुड मूवी कौन सी है? क्या वो शोले है, डॉन है, अमर अकबर एंटोनी, गाइड, पकीज़ा, मुगले आजम? मैसेज कीजिए और हमें ये बताइए, अगर आपको सिर्फ वन रेट्रो मूवी दोबारा थिएटर में देखने का मौका मिले तो वो कौन सी होगी? क्यूरियस हूँ जानने के लिए, तो 5499124 पर डू सेंड अस। एंड ऑल्सो अगर आपको डेडिकेट करना है कोई भी रेट्रो जमाने का गाना, देन यू ऑलमोस्ट जी, तो जल्दी से send us your messages 5499124। अभी के लिए एक और ब्यूटीफुल नगमे को एंजॉय करते हैं साथ में आपके रेट्रो रिदम के सफर पर।
1: रेट्रो रिदम RM2 रेडियो मस्ती।

0: रेट्रो रिदम।
1: वल्ला क्या नजारा है, सच में मौसम प्यारा है ना आज, तो मूड को भी प्यारे बनाते चलेंगे। 2 बजे तक रेट्रो रिदम का सफर ऑन गोइंग है आपके लिए। बिग हेलो टू आवर लिसनर्स। तो हमारे साथ जुड़ी हुई है जना जी और वो एंजॉय कर रही है गानों को और मेरी स्वीट सी बातों को। ओके थैंक यू। एंड आप गाना रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपनी बेटी रीमा, जैनिता, शेषता, अंशनी, सिल्विया, यूवी, कृष्ण, सिवसागन फैमिली फ्लैग से। एंड आप सभी को विश कर रहे हैं ग्रेट आफ्टरनून। एंड ऑल्सो हमारे साथ जुड़ी हुई है आप हैं सनीम का नाम लिखा है देवदो सिंह कावलीस ऑफ फैमिली की तरफ से। आप अगला गाना चलाना चाहते हैं प्यारी पत्नी सुनीता के लिए। एंड ऑल्सो वी हैव नेक्स्ट मैसेज, प्लीज प्लीज प्ले दिस सॉन्ग फ्रॉम द मूवी लापरवाह, कोई भी दिल में ना आए। ओके हम ढूंढ कर चिल्लाएंगे जरूर आपके लिए, आप बस यही पर जुड़े रहना। इट्स योर रेट्रो रिदम।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2

0: रेट्रो रिदम।
1: वैसे एक बात तो पक्की है, पुराने गानों में कुछ अलग ही मैजिक है। लिरिक्स मीनिंगफुल है, मेलोडीज भी सोलफुल है और सिंगर्स की आवाज सीधा दिल तक जाती है। इन आज के गाने हम सुनते हैं, लेकिन रेट्रो गाने हम उन्हें फील करते हैं। तो जाने से पहले आपके साथ एक क्विक रिकैप। तो आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। एक तस्वीर एक पल को हमेशा के लिए अमर कर देती है, सो आज अपने आप को ब्यूटीफुली कैप्चर करना ना भूलें। और साथ ही है आज इंटरनेशनल बो डे। जी हाँ, वो क्यूट सी होजेट वाली बो जो हेयर स्टाइल हो या आउटफिट, एक सिंपल लुक को भी इंस्टेंटली स्टाइलिश बना देती है। तो इसी क्यूट और नॉस्टैल्जिक नोट के साथ मैं आपके आरजे नर्मनी आपसे फिर मिलूंगी इस वक्त। मैं आपसे इजाजत लेती हूँ। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय एंड हैव अ ग्रेट ग्रेट वेंसडे।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: listening to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter, creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: दोपहर के 2 बजे हैं। चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार एक बार फिर आपसे गीता जी नमस्कार।
6: नमस्कार नीलमणि, सभी को हमारा नमस्कार। हमारे जल भंडार लगातार कम होती जा रहे हैं। कल मऊ फाकुआ जलाशय की क्षमता सिर्फ 40% भरी हुई थी। कुछ समय से पानी के इस्तेमाल पर पाबंदियां भी लागू हैं। कई नदियां हर दिन CWA के नेटवर्क में 1,20,000 क्यूबिक मीटर पानी पहुंचाती हैं। सितंबर तक 15 नई मोबाइल वाटर ट्रीटमेंट यूनिट की खरीद के बाद ये क्षमता बढ़कर 1,50,000 क्यूबिक मीटर हो जाने की उम्मीद है। किसानों और पशुपालकों को कृषि में आधुनिक और स्मार्ट तकनीकों के इस्तेमाल में सहायता देना, यही प्रेसिजन फार्मिंग AI ड्रिवन फूड प्रोडक्शन स्कीम का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के तहत परियोजना की कुल लागत का 50% तक अनुदान दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 2 मिलियन रुपए है। इस नई सहायता योजना की शुरुआत कल अगेजी में कृषि उद्योग मंत्रालय और फागई ने संयुक्त रूप से की। आज 19 अगस्त को विश्व मानवीय सहायता दिवस मनाया जा रहा है। इस साल ये दिवस मानवीय सहायता कर्मियों के खिलाफ बढ़ती हिंसा की गंभीर स्थिति के बीच मनाया जा रहा है। मॉरिशस में विदेश मंत्री धनंजय रामफल ने मानवीय सहायता कर्मियों को श्रद्धांजलि दी और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के बारे में लोगों में अधिक जागरूकता फैलाने की ज़रूरत पर जोर दिया। ये मुद्दा मॉरिशस के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश को प्राकृतिक आपदाओं, खासकर तूफान, भारी बारिश और बाढ़ के खतरों का सामना करना पड़ता है। और विदेशी खबरों में, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा की सतह पर बने एक नए विशाल गड्ढे की तस्वीरें जारी की हैं। ये गड्ढा इस महीने की शुरुआत में SpaceX रॉकेट के चंद्रमा से टकराने के कारण बना था। नासा के वैज्ञानिकों ने परछाई की लंबाई के आधार पर अनुमान लगाया है कि ये गड्ढा लगभग 60 फीट चौड़ा और 10 फीट से कम गहरा है। इस रॉकेट को जनवरी 2025 में लॉन्च किया गया था, जिसने चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही देर में शोक समाचार। बनवेन कौचे मिलितिया में 51 साल के 51-year-old के जनाब मोहम्मद रफीक बहादुर, जो रफीक से ज़्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज शाम 4 बजे उनकी माँ रुजिदा मौलाबख्श के घर बनवेन कौचे मिलितिया से उठाकर कौचे मिलितिया की मस्जिद ले जाया जाएगा और दफनाने के लिए आलमा का कब्रस्तान। फ्यूनरल टुडे एट 4 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।

0: तो चलिए दोस्तों 2:08 हो चुके हैं वेनसडे आफ्टरनून 19th ऑफ अगस्त एंड आई डू होप मिड वीक तक हम पहुंच गए हैं एंड यू आल्सो एंजॉयिंग ईच एंड एवरी डे. जैसे आपके दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं आप हर एक दिन को स्पेशल बनाना नहीं भूल रहे हैं. एंड वेल वंस अगेन वीक जो है वो आगे बढ़ती जा रही है एंड बस 2 more days टू गो. उसके बाद वी आर गोइंग टू हैव द वीकेंड. सो बस यही मोटिवेशन काफ़ी है अभी के लिए. तो लाइफ में एक किक होना ज़रूरी है और जैसे हम कहते हैं वीकेंड हमेशा मूड सेट कर ही देता है. और जब वीकेंड आने वाला होता है धीरे धीरे वक्त जो है वो भी फटाफट पास होने लगता है. सो अभी के लिए गुड गुड विशेस हमारे सभी लिसनर्स को. मैं हूं परी आपके साथ आफ्टरनून टाइम में म्यूजिकल तड़का एंड बॉलीवुड का तड़का लगाने आए हैं हम ऑन द वेव्स ऑफ आरएमटू रेडियो मस्ती, जहां पर आपके फेवरेट सेलेब्स की लाइफ की कुछ पर्सनल प्रोफेशनल डिटेल्स हम आपसे शेयर करेंगे. आपका भी साथ जरूरी, आपका भी साथ बहुत स्पेशल. सो नॉट टू फॉरगेट योर मैसेजेस योर डेडिकेशंस 5499-1294 पर.
1: RM2 Radio Masti.

0: टू रेडियो मस्ती।
1: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत हवा तब भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा साड़ी, जोधपुरी क्रॉप टॉप, शेरवानी, सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोरी फैशन, रॉयल रोड, पॉम्पली मिसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799378282। हलकोरी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और कारीते।
0: RM2 रेडियो मस्ती।

सुबह लेडीज एंड जेंटलमैन 2:31 मैं हूं परी आपके साथ एंड दैट्स योर बॉम्बे टॉकीज। वेल अक्षय खन्ना अपकमिंग फिल्म महाकाली में नजर आने वाले हैं और इसमें उनका लुक बहुत ही अलग है। मेकर्स ने जानकारी दी है कि इस फिल्म की पहली झलक कब सामने आएगी। सो हनुमान की जबरदस्त सफलता के बाद प्रशांत वर्मा अपने अगले अध्याय के साथ दर्शकों को एक नई दुनिया में ले जाने के लिए ऑल सेट ऑल रेडी है। हाल ही में आरकेडी स्टूडियोज ने एक रहस्यमय पोस्टर शेयर किया। ऐसे में माना जा रहा है कि 24 अगस्त को महाकाली से अक्षय खन्ना का शुक्राचार्य का जो रूप है वो दिलचस्प अवतार लोगों के सामने आने वाला है। अपकमिंग फिल्म महाकाली में अक्षय खन्ना शुक्राचार्य का किरदार निभाने वाले हैं। माना जा रहा है कि अक्षय खन्ना इस बार अपने ट्रांसफॉर्मेशन को एक नए लेवल पर ले जाएंगे। धुरंधर में अपनी शानदार मौजूदगी के बाद एक्टर इस भूमिका में लगभग पहचान में नहीं आ रहे हैं। वैसे शुक्राचार्य के रूप में उनका फर्स्ट लुक पहले ही काफी चर्चाओं में है और अब उनकी ये जो पहली झलक है ये देखने के लिए जो दर्शक है वो काफी उत्सुक है। पुराणों के अनुसार असुरों के गुरु के रूप में पूजनीय शुक्राचार्य एक बेहद अहम पात्र है। ऐसे में अक्षय खन्ना की तरफ से निभाए जा रहे इस किरदार में उनकी गंभीरता देखने को मिल सकती है। वहीं प्रशांत वर्मा का विजुअल ट्रीटमेंट इस किरदार को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा और यहाँ पर जो फैंस हैं उन्हें इस किरदार में देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। सो यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि इसकी जो पहली झलक है यानी कि महाकाली की जो पहली झलक है वो 24 अगस्त को मिलने वाली है और उसी फिल्म में अक्षय खन्ना लोगों को नजर आएंगे एज अ शुक्राचार्य। अब देखना ये होगा कि क्या

ये 24th ऑफ अगस्त को होने वाला है क्योंकि अभी के लिए तो बस चर्चाएं हैं एंड देयर इज नो ऑफिशियल अनाउंसमेंट एज सच. लेकिन यस, आफ्टर धुरंधर अक्षय खन्ना अब रॉक करने वाले हैं एक और किरदार के साथ. सो दैट्स इन द फिल्म महाकाली जहां पर वो नजर आने वाले हैं एज शुक्राचार्य. For all the fans of Akshay Khanna, for all the listeners of RM2 Radio Masti, मैं हूँ परी आपके साथ. एंड जैसे कि आप जानते हैं, बी टाउन की खबरें आप तक पहुँचाते हैं आफ्टरनून टाइम. आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. सो होप यू हैविंग अ वंडरफुल टाइम, होप यू एंजॉयिंग योर वेडनेसडे. काम काज तो चलता रहेगा दोस्तों, बस लाइफ को खुशी से जीना जरूरी है. फॉर नाउ गुड म्यूजिक आपके लिए ऑन द वेव्स ऑफ RM2 Radio Masti. योर मैसेजेस, योर डेडिकेशंस एज वेल 5499-1294 पर.

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हरकोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हरकोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
0: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: Talkies.
1: Radio Musty.
2: Radio Musty.
3: एंड वेल फ्रेंड्स, अभी के लिए बात करेंगे एक्टर कबीर खान और डायरेक्टर कबीर खान और उनके डायरेक्शन में बन रही फिल्म की शूटिंग के दौरान एक्टर कार्तिक आर्यन के घुटने में चोट लग गई है। फिल्म की शूटिंग का आखिरी दौर चल रहा था और अहम एक्शन सीन आखिरी दो दिनों के लिए रखे गए थे। इसी दौरान कार्तिक को चोट लग गई है और कार्तिक आर्यन जिस फिल्म के लिए शूटिंग कर रहे थे वो एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, इसका नाम अभी तय नहीं किया गया है। और मुंबई में शूटिंग कर रहे कार्तिक को अस्पताल ले जाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। एक्टर के घुटने की सर्जरी एक दो दिन तक जारी रहेगी और इसके बाद ठीक होने के लिए उन्हें कुछ और दिन आराम करना होगा। वहीं कबीर की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म की शूटिंग पूरी होने के करीब है और ठीक होते ही उन्हें अपने दूसरे काम अभी पूरे करने होंगे। सो यहाँ पर कार्तिक आर्यन अभी के लिए तो हो गए हैं इंजर्ड। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्तिक फिल्म में खास सीन की तैयारी के लिए एक्शन कोच के साथ कड़ी ट्रेनिंग कर रहे थे। हालांकि शूटिंग के दौरान उनके घुटने में गंभीर चोट लग गई और इसके इलाज के लिए अब वो अस्पताल में भर्ती है। प्रोडक्शन से जुड़े कुछ सूत्र ने बताया कि कार्तिक को अब फोर्टिस रहेजा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और वहां उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर एक दिन में उनके घुटने की सर्जरी करेंगे जिसके बाद कुछ और दिन उन्हें आराम करना होगा और जिसके बाद वो अपने काम पर लौट सकेंगे। सभी के लिए तो विशिंग हिम अ क्विक रिकवरी। यस, कार्तिक आर्यन के सभी फैंस की तरफ से उन्हें विश करते हैं क्विक रिकवरी। शूटिंग के टाइम बहुत कुछ हो जाता है दोस्तों और आजकल तो दौर ही यही चल रहा है। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कि आवारापन 2 ये फिल्म भी डिले इसीलिए हुई दैट दिसंबर में शूटिंग के दौरान इमरान हाशमी इंजर्ड हो गए थे, उन्हें चोट लग गई थी और ये फिल्म अप्रैल की जगह अब अगस्त में रिलीज हुई है। लेकिन रिलीज होने के बाद क्या ही गदर मचाया है इस फिल्म ने, यानी कि सारे रिकॉर्ड्स तोड़ती जा रही है आवारापन 2। इसके बारे में भी बात होगी इन द नेक्स्ट आवर। थोड़ी ही देर में दोस्तों हम बढ़ने वाले हैं समाचारों की ओर। आप कनेक्टेड हैं हमारे साथ, सो नॉट टू फॉरगेट दैट्स योर बॉम्बे टॉकीज ऑन RM2 रेडियो मस्ती। परी का साथ रहेगा टिल 4 PM। साथ दीजिए मैसेजेस डेडिकेशंस 5499-1294 पर।
0: RM2 रेडियो मस्ती।

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter. Creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Masti.
3: North, South,
4: 103.5.
3: East, West,
4: 96.4.
3: Center,
4: 99.4.
5: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
5: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty. Feel the
6: Musty. Time check exactly 3 p.m. सुनते हैं देश विदेश की खबरें गीता जी से. आपको नमस्कार.
7: नमस्कार परी. सभी को हमारा नमस्कार. सतीश फोगू की इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंट्स कमीशन IPCC के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के बाद अब इस आयोग में न्याय के क्षेत्र से जुड़े दो नए पेशेवर शामिल हुए हैं. रेणुका ब्रिजमोहन और मोहम्मद उजिया ने आज दोपहर बाद स्टेट हाउस में राष्ट्रपति धरम बीरगोकुल के सामने पद की शपथ ली. नए सदस्यों का कहना है कि आयोग से जुड़े कानून में बदलाव और उसे अपडेट करने की ज़रूरत है. इस आयोग का मुख्य काम पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मिलने वाली शिकायतों की जांच करना है. शकील मोहम्मद और फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के बीच उनकी संपत्ति की घोषणा को लेकर विवाद बढ़ गया है. आवास और भूमि मंत्री का कहना है कि उन्होंने सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं, लेकिन उनकी संपत्ति से जुड़ी घोषणाएं अब भी आयोग के सार्वजनिक रिकॉर्ड में सही तरीके से दर्ज नहीं है. उनके वकील ने अब FCC को स्थिति सुधारने के लिए 24 घंटे का समय दिया है. ऐसा नहीं होने पर मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा सकता है. वही FCC का कहना है कि इस मामले को पूरी गंभीरता से देखा जा रहा है, क्योंकि इसमें उच्च स्तर की कई महत्वपूर्ण हस्तियों के संबंध में बातें सामने आई हैं. 155.7 किलो गांजा की रेनियन टापू और मॉरिशस के बीच कथित तस्करी की जांच में नया घटनाक्रम सामने आया है. पुलिस ने 43 वर्षीय शान कुमार चुलन उर्फ मिटुन के खिलाफ तलाश का नोटिस जारी किया है. पुलिस के अनुसार वो इसी जांच के सिलसिले में वांटेड हैं. इस मामले में गुलशन गोविंद, जो सांसद बेगोनी कुले गोविंद के पति हैं, और रविंद्र चिमाजी भी शामिल हैं. हमारे जल भंडार लगातार कम होते जा रहे हैं. कल मऊ फाकवा जलाशय की क्षमता सिर्फ 40% भरी हुई थी. कुछ समय से पानी के इस्तेमाल पर पाबंदियां भी लागू हैं. कई नदियां हर दिन CWA के नेटवर्क में 1,20,000 क्यूबिक मीटर पानी पहुंचाती हैं. सितंबर तक 15 नई मोबाइल वाटर ट्रीटमेंट यूनिट की खरीद के बाद ये क्षमता बढ़कर 1,50,000 क्यूबिक मीटर हो जाने की उम्मीद है. और विदेशी खबरों में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वे कनाडा से आने वाले कई सामानों पर नए शुल्क लगाने के फैसले को 3 दिनों के लिए टाल रहे हैं. ये फैसला दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के प्रयासों के बीच लिया गया है. इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए. कुछ ही देर में शोक समाचार. नंबर 23 हुई एडवा क्योपिप में 69 साल के 69-year-old के श्री शिवाजी अर्जू, जो अर्जू इटल से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है. अर्थी आज शाम 5 बजे उनके घर नंबर 23 रुई एडवा क्योपिप से उठाकर बिकाका का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा. फ्यूनरल टुडे एट 5 PM. शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है.
0: News on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

तो चलिए दोस्तों, सभी हमारे लिसनर्स जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं, वार्म वेलकम. 3:08 वेडनेसडे आफ्टरनून 19th of August हमारा साथ दे रहे हैं सभी लिसनर्स. दिस वन गोज आउट फॉर यू स्पेशली फॉर द ब्यूटीफुल लेडीज जो हमारा साथ दे रही हैं. चलिए यहाँ पर कुछ प्यारे गाने आपके लिए चला रहे हैं, सो दैट आपकी ये जो आफ्टरनून है इसे हम थोड़ा सा स्पेशल, म्यूजिकल, मैजिकल बना सके. परी का साथ है 4 PM ऑन रेडियो मस्ती. दैट्स योर बॉम्बे टॉकीज़.

0: Talkies. Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: तो चलिए दोस्तों बात करते हैं सनी देओल की अदाकारी वाली फिल्म बटवारा 1947 और इमरान हाशमी की आवारापन 2। ये दोनों ही फिल्में एक साथ सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। ओपनिंग डे से ही आवारापन 2 कमाई के मामले में आगे है, वहीं बटवारा 1947 का कलेक्शन गुजरते दिन के साथ कम होते जा रहा है। जानिए मंगलवार को दोनों फिल्मों ने कितना कलेक्शन किया। सो आपको बता दें दैट नितिन कक्कड़ के डायरेक्शन में बनी आवारापन 2 का कलेक्शन बटवारा 1947 के मुकाबले ज्यादा है। इमरान हाशमी की अदाकारी वाली ये फिल्म आवारापन 2 ने ओपनिंग डे 22 करोड़ रुपए कमाए, वहीं दूसरे दिन फिल्म ने 33.75 करोड़ कमाए, तीसरे दिन फिल्म का आंकड़ा रहा 26 करोड़ रुपीज और चौथे दिन इस फिल्म ने 9.25 करोड़ का कलेक्शन किया। पांचवें दिन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म 9.7

55 करोड़ से पर आकर रुकी और आवारापन 2 का इंडिया नेट कलेक्शन 100.75 करोड़ ऑलरेडी हो चुका है यानी कि द फिल्म हैज क्रॉस द 100 करोड़ क्लब और अभी के लिए आपको बता दें दैट बटवारा 1947 यस राजकुमार संतोषी की डायरेक्शन में बनी फिल्म बटवारा 1947 को शुरुआत में अच्छा रिस्पॉन्स मिला मगर वीकेंड के बाद इसके कलेक्शन में गिरावट देखने को मिली ओपनिंग डे पर बटवारा 1947 ने 5.75 करोड़ का कलेक्शन किया दूसरे दिन फिल्म ने 13.50 करोड़ कमाए यानी कि 13.50 करोड़ कमाए ऑन सेकेंड डे तीसरे दिन यानी कि रविवार को फिल्म की कमाई 7.25 करोड़ रही चौथे दिन बटवारा 1947 का कारोबार 2 करोड़ पर आकर रुका और पांचवें दिन इस फिल्म ने 2.25 करोड़ कमाए बटवारा 1947 का कुल कलेक्शन 30.75 करोड़ रुपए है और अभी के लिए तो इस फिल्म के साथ बहुत ज्यादा उम्मीदें थी लेकिन इन उम्मीदों पर यह फिल्म खरी उतरती नजर नहीं आ रही है वहीं दूसरी तरफ आवारापन 2 जो रिलीज होने वाली थी इन द मंथ ऑफ अप्रैल लेकिन पोस्टपोन होते होते ये फिल्म रिलीज हुई ऑपोजिट बटवारा 1947 मेकर्स को ये डर था कि क्या पता दोनों फिल्म एक साथ रिलीज हो रही है क्लैश के कारण दोनों को ही नुकसान हो सकता है लेकिन ये भी उनका मानना था कि दोनों ही फिल्म काफी डिफरेंट जॉनर्स की है और जो लोग आवारापन 2 देखने आएंगे तो उनके लिए बटवारा 1947 इट्स गोइंग टू बी अ टोटल डिफरेंट स्टोरी सो दो लोग दो तरह के लोग जिन्हें डिफरेंट काइंड ऑफ मूवीज देखना पसंद है तो शायद ये ही कहीं ना कहीं वर्क कर गया जहां पर 19 इयर्स के बाद यस 2007 में रिलीज हुई थी ये फिल्म आवारापन और अब इन 2026 आफ्टर 19 इयर्स आवारापन 2 रिलीज के बाद आफ्टर 19 इयर्स इस फिल्म ने तोड़ दिए हैं सारे रिकॉर्ड्स

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: और चलिए दोस्तों, दिवंगत गायिका आशा भोसले के लिए एक ट्रिब्यूट म्यूजिक वीडियो संगीतकार यार रहमान बना रही हैं। इसमें शाहरुख खान पहले ही शामिल हो चुके थे और अब एक और बॉलीवुड सुपरस्टार इस म्यूजिक वीडियो का हिस्सा बन रहे हैं। आशा फॉरएवर नाम के इस म्यूजिक वीडियो को एआर रहमान बना रहे हैं और ये उनके लिए बहुत ज़्यादा खास है। उन्होंने इसे बनाने का प्लान तब सोचा था जब गायिका आशा भोसले जिंदा थी। जब उनके गुजर जाने के बाद इस म्यूजिक वीडियो पर रहमान ने काम करना शुरू किया और इस प्रोजेक्ट से कई नामी कलाकार भी अपना जो नाम है वो जोड़ रहे हैं। संगीतकार रहमान दिवंगत गायिका आशा भोसले के लिए एक ट्रिब्यूट म्यूजिक वीडियो को रिलीज करने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले यार रहमान ने अनाउंसमेंट की थी कि बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान दिवंगत गायिका आशा भोसले की अपकमिंग ट्रिब्यूट म्यूजिक वीडियो का हिस्सा होंगे। शाहरुख खान के बाद सलमान खान भी इस म्यूजिक वीडियो में नजर आएंगे और ये जानकारी अब एआर रहमान ने दी है। अपने ट्विटर पर उन्होंने ये बात शेयर की है। एक पोस्ट लिखते हुए उन्होंने लिखा है, दैट आशा भोसले जी के लिए बनाए गए ट्रिब्यूट म्यूजिक वीडियो का हिस्सा बनने के लिए सलमान खान का दिल से शुक्रिया। और चलिए, ये तो खास बात है एंड ये हम जानते हैं दैट आशा भोसले, उनके तो बहुत सारे फैंस हैं वर्ल्ड वाइड और इवन इन बॉलीवुड इनके इतने सारे फैंस थे। सो नाउ आफ्टर शाहरुख खान, सलमान खान का नाम भी सामने आ रहा है जो इस म्यूजिक वीडियो का एक हिस्सा होंगे एंड ए आर रहमान जब ये म्यूजिक वीडियो बना रहे हैं, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी स्पेशल। सो लेट्स वेट एंड वॉच के क्या कमाल होने वाला है और कितना हार्ट टचिंग ये वीडियो होगा।
3: प्ले करो, स्माइल करो, बॉलीवुड के साथ चिल करो, दिल से बॉलीवुड, रेडियो मस्टी।

0: Talkies, Radio Musti,
1: Radio Musti.
2: And well friends, समय हो चला है कि मैं परी लूं आपसे अलविदा, लेकिन जाते जाते आपके messages, dedications, Davison आए हैं लाल माती से, अगला गाना dedicate करेंगे for you, thank you so much. साथ ही यहाँ पर गाना यलेश साथ दे रहे हैं सुरिनाम से आप. गाना goes out for you, for all Asham family, विश्वानी दोमन वाकवा से. कहते हैं कि आज पोता अपना birthday celebrate कर रहा है, best wishes coming from मामा दीपा, उनके भाई आयान, मामू, मामी, नानी, विश्वानी और सभी की ओर से शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार, best wishes उनके सभी friends of SSS Phoenix and उनके लिए प्यार एंड शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की ओर से. साथ ही यहाँ पर श्याम देवीचंद साथ दे रहे हैं डेडिकेटिंग गाना फॉर फ्रेंड्स सुखदेव, लालदेव, राजू, बाला, रवीन, रमेश और सभी देवीचंद परिवार के नाम. वेल यहाँ पर रसमलाई केक बना रही है, क्या बात है, बिल्कुल खाएंगे जी, क्यों नहीं खाएंगे. अभी के लिए तो आपने इतना अच्छा सवाल पूछा है, सो थैंक यू, डू मेक सम फॉर अस एज वेल. थैंक यू रोशनी, अभी के लिए गाना आपके नाम आफ्टरनून आपने कर दी है मीठी मीठी, तो अगला गाना डेडिकेट करेंगे आपके लिए. यहाँ पर हमारा साथ दे रही हैं हमारी प्यारी सी ललिता जी भी, सो गाना फॉर यू, फॉर ऑल यू कलीग्स एंड भगवत विदेशी साथ दे रहे हैं आप, सो साथ देने के लिए शुक्रिया. परी साइनिंग ऑफ विद दिस ब्यूटिफुल ट्रैक. और चलिए दोस्तों, मेरे बाद आ रही है हंसनी लेकर योर अफ्तार वाइब्स, उनका साथ निभाइए ऑन रेडियो मस्ती. मुलाकात होगी आपसे कल सेम प्लेस सेम टाइम 2 से लेकर 4 बजे तक इन योर बॉम्बे टॉकीज़.

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अर्षिता। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। बीच निवेश के अवसरों को बेहतर तरीके से तलाशने और उनका विस्तार करने के उपायों पर आज बुधवार 19 अगस्त 2026 को कुरोऑट्स सेंटर में आयोजित बिजनेस फोरम में इसके बारे में चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से 50 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। बैठक के एजेंडा में ठोस व्यापारिक पहलों और कारोबारी अवसरों पर विचार विमर्श शामिल था। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय स्तर पर व्यापार के एक विविध और मजबूत प्रवाह को बढ़ावा देना है। आज के कार्यक्रम की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता मॉरिशस और जिम्बाब्वे के चेंबर ऑफ कॉमर्स के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जाना रहा। किसानों और पशुपालकों को कृषि क्षेत्र में आधुनिक और स्मार्ट तकनीकों के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करना, ये उद्देश्य है प्रेसिजन फार्मिंग एआई ड्रिवन फूड प्रोडक्शन स्कीम का। इस योजना के तहत परियोजना की कुल लागत का 50% तक अनुदान दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए निर्धारित की गई है। इस नई सहायता योजना का शुभारंभ कल गजवी में कृषि उद्योग मंत्रालय और फूड एंड एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एक्सटेंशन इंस्टीट्यूट यानी फारी की ओर से संयुक्त रूप से किया गया। गन्ने के खेतों में श्रमिकों की कमी और नई पीढ़ी के किसानों की कमी के बीच मॉरिशस का गन्ना उद्योग खुद को नए सिरे से विकसित करने के रास्ते तलाश रहा है। मॉरिशस में कुछ लोग गन्ने के प्रसंस्करण और विविधीकरण पर जोर दे रहे हैं ताकि पारंपरिक चीनी उत्पादन से आगे बढ़कर गन्ने को नए और आधुनिक अधिक मूल्यवान उत्पादन में बदला जा सके। गन्ने के बेहतर उपयोग की संभावनाएं अभी भी काफ़ी व्यापक हैं। गन्ने का इस्तेमाल न केवल खाद्य उद्योग में बल्कि कॉस्मेटिक उत्पादों, रम के उत्पादन और विभिन्न प्रकार की चीनी बनाने में भी किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन के पूर्व लोकप्रिय रक्षा मंत्री मिकाइलो फेदोरोव ने युद्ध के दौरान चुनाव कराने की मांग की है। इससे रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू होने के 4.5 साल बाद राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के नेतृत्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। 35 वर्षीय फेदोरोव ने मंगलवार को यूट्यूब पर जारी एक वीडियो में कहा कि लोकतंत्र को रूस के हाथों बंधक नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने कहा कि यूक्रेन इसलिए लड़ रहा है क्योंकि वह एक स्वतंत्र यूरोपीय राष्ट्र बनना चाहता है। 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से यूक्रेन में मार्शल लॉ

0: बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। 35 वर्षीय फेदोरोव ने मंगलवार को यूट्यूब पर जारी एक वीडियो में कहा कि लोकतंत्र को रूस के हाथों बंधक नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने कहा कि यूक्रेन इसलिए लड़ रहा है क्योंकि वह एक स्वतंत्र यूरोपीय राष्ट्र बनना रहना चाहता है। 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद इससे यूक्रेन में मार्शल लॉ शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टुडे एट 5 PM शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
2: RM2

0: So well friends, warm welcome. 4:17, Wednesday afternoon, 19th of August. Yes, Hansini will be joining in soon. That's your Raftaar Vibes, dosto. Finally, wo time jahan par aapka kaam khatam. Aap bhi badh rahe hain ghar ki or and we all wait for this time. Ye toh hum jante hain ki bachcho wali khushi hoti hai jab kaam khatam ho jata hai and everyone is in a rush. Jaise ki kaam par pahunchne ka rush hota hai, sabke dil mein ghar pahunchne ka bhi rush hota hai. Lekin please don't rush. Aaram se safely drive karte hue aap destination par pahunche. यहाँ पर गानों का साथ होगा जिन्हें सुनते हुए आपका जो सफर है कोशिश करेंगे कि इसे हम म्यूजिकल बनाएं आपके लिए सो हैव अ सेफ राइड बैक होम एंड जितने भी लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं राइट हियर ऑन आरएम2 रेडियो मस्ती दैट्स योर रफ्तार वाइब्स कुछ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आपके लिए स्टे कनेक्टेड मैसेजेस डेडिकेशंस 5499-1294 पर रफ्तार वाइब्स है सो वी आर गोइंग टू हैव सम वंडरफुल सेगमेंट्स कुछ खास गेम्स भी होने वाली है जहां पर आप जीत पाएंगे शानदार इनाम सो कहीं मत जाइए स्टे कनेक्टेड यह है आपका अपना RM2 Radio Masti
1: Raftaar Vibes Filmy Rides
2: RM2

0: 4:27 in the afternoon. Welcome on Radio Masti. Yes, this is a word of that vibes. आप सभी का हम स्वागत करना चाहेंगे अब till 7 PM in our show. यहाँ पर आ गई है हंसनी आप लोगों का साथ निभाने के लिए. And yes, special thank you to you, परी, जो यहाँ पर थी for the latest Bollywood news. हाँ, क्या बात है, latest खबरों के साथ वो रोजाना यहाँ पर आती है, गरम गरम खबरें right from Bollywood. So अभी latest क्या है, यहाँ पे कौन सी मूवी नई आने वाली है ऑन रणवीर कपूर, और ये रिलीज्ड होगी परी दिवाली के लिए, राइट? या सो यही है क्वेश्चन. हमने सोचा है टू बिगिन विद रफ्तार वाइब्स, कुछ ऐसी मस्ती हो जाए. यहाँ पे लेटेस्ट क्वेश्चन तो यही है, यहाँ पर लेटेस्ट मूवी एक्चुअली जो रणबीर कपूर की आने वाली है, एंड दैट विल बी दिवाली रिलेटेड, उनका जबरदस्त पटाखा इन बॉलीवुड. तो इसके लिए यहाँ पर सही जवाब के लिए, अगर आप देंगे सही जवाब तो आपके लिए एक एकदम बढ़िया सा गिफ्ट तैयार हो गया है ऑन रेडियो मस्ती. सो विन योर 40 मिनट्स हाइड्रा ग्लो फेशियल एट प्राणा स्किन एंड लेजर क्लिनिक. तो वहाँ पर आपको जाना है टू एंजॉय डीप क्लिनजिंग, जेंटल एक्सफोलिएशन, हाइड्रेशन, सेरम इन्फ्यूजन एंड आवर हाइड्रा ग्लो मास्क, ऑल डिजाइंड टू लीव योर स्किन फीलिंग रिफ्रेश्ड, स्मूथ एंड ब्यूटिफुली रेडियंट. सो आपका जो ग्लो है स्टार्ट्स ओनली एट प्राणा. तो वहाँ पर आप जाना चाहेंगे टू लुक लाइक रिफ्रेशिंग, टू लुक मोर रेडिएटिंग, तो यहाँ पर ये चांस रेडियो मस्ती आपको दे रहा है. जल्दी से ट्राई योर लक ऑन 5491294. अगर आपके पास सही जवाब आ गया है, यहाँ पर हंसनी है, परी है, एंड वी आर वेटिंग फॉर योर राइट आंसर. सो चलिए हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, राइट? गुड लक.
1: RM2 Radio Musti.

0: ou frise idée, assurez qu'il vous finit enregistrer comment importer et qu'enregistrer ou l'appareil avec IIMO. La douane, pas pour autoriser des douanes ou cargaison si vous payez un certificat IIMO. Pour plus d'informations, contactez Energy Efficiency Management Office, le 206 80 70.
1: Sean, live in Mauritius. Saturday, 5th of September at SBICC Pai. Join us for the biggest Sean concert ever produced in Mauritius with his complete crew of 28 artists. Get your tickets now at ticketbox.mu or call on 214-6464. Another great event brought to you by Gravity Zero. Ticketbox.mu, your one-stop shop for the best events, hotels and flights in Mauritius. RM2
2: Radio Musti.
3: राइट बैक विद द शो. यहाँ पर था एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल रिलेटेड टू बॉलीवुड. रणबीर कपूर की आने वाली मूवी के बारे में बस आपको बताना था जो दिवाली के अवसर पर रिलीज्ड होने वाली है. एंड दैट्स ब्यूटिफुली योर्स दैट विल बी रामायणा. यहाँ पर बहुत सारे लोग ने पार्टिसिपेट किए हैं और कई सही जवाब मिले हैं. सो इसके लिए कहेंगे आप सबको थैंक यू हमारे इस गेम शो में भाग लेने के लिए. और आपको तो पता है क्या होता है, यहाँ पर जो लकी जो है वो अपना काम कर ही लेता है. तो यहां पर इट्स टाइम फॉर अस टू अनाउंस द लकी विनर. तो यहां पर जो जीतने वाली है वो तो फोंटिसाक की रहने वाली है. कंग्रेचुलेशंस टू यू. और शे इज नलिनी. आई रिक्वेस्ट यू नलिनी टू सेंड मी योर कंप्लीट एड्रेस एंड योर फुल नेम. ये सब रिक्वायर्ड है ताकि जो आपका वाउचर है वो बिल्कुल पोस्ट ऑफिस द्वारा आपको भेज दिया जाए. सो मेनी कंग्रेचुलेशंस फ्रॉम ऑल आवर टीम ऑफ रेडियो मस्ती. डोंट फॉरगेट, आपकी जीत हो गई है. ऑलरेडी यू वन योर 40 मिनट्स ऑफ हाइड्रा ग्लो फेशियल जो आपको मिला है फ्रॉम प्राणा स्किन एंड लेजर क्लिनिक. सो वहां पर आपको जाना है जस्ट टू एंजॉय डीप क्लिनजिंग, जेंटल एक्सफोलिएशन, हाइड्रेशन सेरम इन्फ्यूजन एंड आवर हाइड्रा ग्लो मास्क जो वहां पर आपको बेशक दिए जाएंगे टू एंजॉय. ऑल डिजाइंड आपके त्वचा को रिफ्रेश बनाने के लिए, एकदम स्मूथ वाला ब्यूटिफुली रेडियंट. सो आपका जो ग्लो है स्टार्ट्स ओनली एट प्राणा. कंग्रेचुलेशंस टू यू. और यहां पर बिल्कुल वेटिंग फॉर यू ऑन 5491294 टू गेट योर फुल एड्रेस. This is our Radio Musti, always bring you the best.
2: RM2 Radio Musti.
4: Feel the Musti. Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the floor expert.
5: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
3: और यहाँ पे दोस्तों बेस्ट म्यूजिक के साथ वी डू ऑलवेज ब्रिंग यू द बेस्ट ऑफ अपडेट्स. राइट अरविंद जो यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है इन द स्टूडियो फॉर द लेटेस्ट न्यूज. हाय एंड वेलकम.
6: थैंक यू हंसनी. आप सभी लोगों को भी आपका स्वागत है इस स्पोर्ट्स अपडेट में. सो वील बी टॉकिंग अबाउट UEFA चैंपियंस लीग प्ले ऑफ. आज 4 प्ले ऑफ, कल 3 खेले गए थे, तीनों ड्रॉ. आज सेल्टिक का मुकाबला LAS के टीम से है, फिर एच बी आर शेवा सबाह के खिलाफ. NEC का मुकाबला बोडो ग्लिंट से और स्लोवान अगेंस्ट सेलिए. ये प्ले ऑफ राउंड फर्स्ट लेग और सेकंड लेग के होते हैं, यानी रिटर्न लेग. और इनमें से जो टीमें क्वालिफाई होंगी ग्रुप स्टेज में जाएंगी. ये आज के मैच हैं. कुछ क्लब फ्रेंडलीज भी रखे गए हैं और इंग्लैंड की टीमें तो नहीं है क्योंकि अब तो प्रीमियर लीग शुरू होने वाला है फ्राइडे को. स्पेन का ला लीगा तो शुरू हो गया है जहां पर एथलेटिको मैड्रिड और मालागा के बीच मुकाबला होगा. ये है आज. कल UEFA यूरोपा लीग के प्ले ऑफ खेले जाएंगे, सभी प्ले ऑफ खेले जाएंगे. इनमें कुछ इंटरेस्टिंग मैच भी हैं, कल फिक्चर्स आपको देंगे. और कॉन्फ्रेंस लीग के भी मैच खेले जाएंगे. स्पेन के ला लीगा में भी मैच हैं. और फ्राइडे प्रीमियर लीग स्टार्टिंग, आर्सेनल वर्सेस कोवेंट्री. और सैटरडे को जो फिक्स्चर्स हैं, हल सिटी मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये अर्ली किक ऑफ होगा सैटरडे को. फिर एवर्टन क्रिस्टल पैलेस, इप्सविच संडरलैंड, नॉटिंघम फॉरेस्ट लीड्स, ब्रैडफोर्ड स्पर्स, ये लेट नाइट मैच होगा. प्रीमियर लीग जारी रहेगा वीकेंड में विव ब्राइटन अगेंस्ट एस्टन विला, मैनचेस्टर सिटी बोर्नमुथ. और ये मैच

0: न्यूकासल यूनाइटेड लिवरपूल ये खेला जाएगा 7:30 PM चैंपियनशिप में भी मैच रखे गए हैं इस वीकेंड में सो वेटिंग फॉर द वीकेंड टू कम लेकिन इस बीच ट्रांसफर बाजार में काफी मूवमेंट होने लगे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लोज ऑन डील ब्राइटन के मिडफील्डर बालेबा को साइन करना चाहता है बालेबा कॉलोस बालेबा मिडफील्डर जिसको पिछले सीजन ही मैनचेस्टर यूनाइटेड साइन करना चाहता था लेकिन ब्राइटन ने उसे नहीं बेचा अब लगता है कि वो आ सकता है दाम लगभग इन एक्सेस ऑफ 100 मांग रहा था लेकिन अभी इनिशियल 60 million पाउंड स्टर्लिंग ऑफर ये भेजा गया है देखना है कितना पैसा और लेगा ब्राइटन इस खिलाड़ी के लिए उधर एस्टन विला ने गोलकीपर सुजुकी को साइन किया है और लेफ्ट बैक रुजेरी को भी साइन कर लिया जियोन सुजुकी जापान के लिए खेल पाया था वर्ल्ड कप में आप लोगों ने उसे देखा होगा आर्सेनल की शॉपिंग जारी है और एस्टन विला के डिफेंडर एजरी कुनसा को वो साइन करना चाहता है कुनसा फर्स्ट चॉइस डिफेंसिव टारगेट है आर्सेनल के लिए और 60 million पाउंड स्टर्लिंग लगभग बताया जा रहा है जहां तक लिवरपूल का सवाल है अभी तक कुछ खास नहीं हुआ है बाकुला मूव को लेकर शायद डेडलाइन दी में ही सब कुछ होने वाला है और मोरिनो विनिशियस जूनियर से बात कर रहा है विनिशियस जूनियर जो जाना था चाहता था लेकिन योजे मोरिनो ने उसे बताया कि इट वाज नॉट वर्थ लीविंग रियल मैड्रिड वो ब्राजीलियन को वहां पर रखना चाहता है वहीं पर वो खेलना चाहता है लेट्स सी क्या होगा क्रिकेट में आज इंडिया की टीम जीत गई आज सुबह सुबह जो मैच था श्रीलंका के खिलाफ फर्स्ट टेस्ट मैच इन दोनों के बीच तो इंडिया की टीम 165 रन से जीत गई श्रीलंका की दूसरी इनिंग्स आज समाप्त हुई केवल धनंजय दे सिल्वा 59 बना पाया सोनल दिनुषा 84 और भारतीय गेंदबाजों में रविंद्र जडेजा एक विकेट फिर प्रसिद्ध कृष्णा 2 विकेट मानव सुतर 6 विकेट ले पाया यानी इस मैच में कुल मिलाकर 10 विकेट उसने लिए पदिकल को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया अब दूसरा टेस्ट मैच कोलंबो में खेला जाएगा इस पर भी आपको अपडेट्स देंगे जरूर और ये भी बता दें आप लोगों को कि बीच वॉली में हमारी टीम अभी यूरोप में है इजिप्ट में है वहां पर अफ्रीकी चैंपियनशिप चल रही है इस पर भी अपडेट आपको कल सुबह देंगे सो दैट्स इट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड
1: थैंक यू सो मच अरविंद फॉर ऑल द न्यूज एंड या आई विश यू अ ग्रेट इवनिंग अहेड
2: सेम बाय
1: थैंक यू
3: दिस मैगजीन वाज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेकोर द फ्लो एक्सपर्ट
4: Jumbo, Quality Déco, fin lance extravaganza sales. Une fois par l'année, c'est un code prix incroyable, mais vrai. Bob, des pieds pas, 100 roupies. Des pieds pas, 4 pieds pas, 295 roupies.

हमारा और आपका रेडियो मस्ती और ये तो है सफर कितना भी जरूरी हो सेफ्टी से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं सो ड्राइव करते समय प्लीज अपना जो सीट बेल्ट है सीट बेल्ट को जरूर लगाएं और ड्राइव करते समय मोबाइल से प्लीज आप दूरी रखें एक छोटी सी लापरवाही बड़ी परेशानी बन सकती है इसीलिए बी सेफ एंड एंजॉय योर ड्राइव ये तो है म्यूजिकल शो ऑफ रफ्तार वाइब्स यहाँ पर गानों में रफ्तार तो बिल्कुल होती रहेगी लेकिन रास्ते पर प्लीज फोकस और जहाँ पर ट्रैफिक कुछ स्लो जा रही है मेंटेन योर पेशेंस और यहाँ पर तो म्यूजिक है ऑफकोर्स आपको स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए और हमने सोचा है लेट अस मेक इट मोर इंटरेस्टिंग कुछ और दिलचस्प बनाते हैं इस म्यूजिकल जर्नी को और यहाँ पर अगर लॉस्ट टाइम गेम शकों को में गेम शो में आपकी जीत नहीं हुई है तो कोई बात नहीं यहाँ पर रेड मस्टी इज हेयर टू ब्रिंग यू अनदर चांस यहाँ पे बस आपको पार्टिसिपेट करना है और क्या जो जीत है वो आपकी हो जाएगी तो बस यहाँ पर गेम इज पावर्ड बाय ticketbox.mu तो आंखें बंद करें नो वाइल ड्राइविंग आंखें को आप बस खुली रखें अगर आप फ्री हो तो ये होने वाला है आपके लिए लेट द म्यूजिक टेक यू ऑन अ जर्नी एक ऐसा जर्नी होने वाला है फिल्ड विद मेलोडीज मेमोरीज और वो टाइमलेस आवाज जो आने वाली है जल्द इन मॉरिशस द टाइमलेस आवाज और शान और अभी रेडियो मस्ती जो है RM2 इज गिविंग यू द चांस ये मौका हम आपको दे रहे हैं टू एक्सपीरियंस दिस मैजिक और वो भी लाइव वो तो आ रही है मॉरिशस सो प्ले विद रेडियो मस्ती एंड स्टैंड अ चांस टू विन अ VIP टिकट टू असिस्ट द स्पेक्टेक्युलर शान लाइव कंसर्ट वो एक आवाज वन स्टेज एंड एक यादगार रात जो होने वाली है आठ SBICC इस सितंबर को 5th of September 2026 को शुरू होगा वो बड़ा इवेंट आज फ्रॉम 8 PM प्राउडली ऑर्गेनाइज्ड बाय ticketbox.mu यहाँ पर VIP टिकट के लिए कौन है बेकराश किसकी जीत होने वाली है इस VIP टिकट को कौन हासिल करने वाला है या फिर करने वाली है ये तो कुछ ही देर में पता हम लगाएंगे आफ्टर द क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल एक क्वेश्चन होने वाला है और इसे जवाब देकर आप बनिए यहाँ पर लकी विनर विल बी वेटिंग फॉर यू ऑन 5499-1294 जहाँ पर आपके सही जवाब पहुँच जाएंगे डोंट फॉरगेट आपका पूरा नाम पता ये सब प्लीज होना चाहिए इन योर मैसेज ताकि आप इन हो जाए फॉर द लकी जॉब So, abhi, my dear friends, time for the question. What can you book on ticketbox.mu? Question is, what can you book on ticketbox.mu? और यहाँ पर आपको तीन ऑप्शंस दिए जा रही है ऑप्शन ए ओनली

0: hotels. Option B, hotels and events. Option C, hotels, flights, spas, activities, gift cards, local and international events and much more. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि बेस्ट है और यही सही जवाब है. अगर आपको सही जवाब पता लगा लिया है तो जल्दी से उठाइए मोबाइल फोन एंड सेंड मी द राइट आंसर ऑन 5499-1294. चलिए हंसरी और पूरे टीम के साथ वी डू विश यू ऑल द बेस्ट.
1: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
2: RM2.

हाँ दोस्तों, यहाँ पर याद दारों को मिलाने के लिए ही ये म्यूजिकल शो हम सजा लेते हैं. और अभी टाइम फॉर द क्वेश्चन. यस, कई लोग ने भाग लिए हैं हमारे इस शकों को में, इसके लिए थैंक यू सो मच. यहाँ पे प्यार के साथ आप आते हो, टाइम निकालते हो, ये तो बहुत बड़ी बात है हम सब के लिए. सो वी हैड अ क्वेश्चन, व्हाट कैन यू बुक ऑन ticketbox.mu, व्हाट कैन यू बुक ऑन

ticketbox.mu। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिए गए, ओनली होटल्स जो ऑप्शन ए था, ऑप्शन बी होटल्स एंड इवेंट्स, एंड ऑप्शन सी होटल्स फ्लाइट्स स्पास एक्टिविटीज गिफ्ट कार्ड्स लोकल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स एंड मच मोर। यहाँ पर सही जवाब इट्स ऑप्शन सी। और यहाँ पर लकी डोरी क्या कर लिया है, लेट्स गो एंड चेक आउट।

0: यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इट्स ऑप्शन सी. यहाँ पर लकी टो ने अपना काम कर लिया है. जो हमारे जीतने वाली है वो तो थॉबुचेक यूनियन वेल की रहने वाली है. कंग्रेचुलेशंस टू यू. आपका नाम है उषा गोवर्धन. आपकी जीत हो गई है माय डियर और आप ले जा रही हो वन वीआईपी टिकट बीइंग ऑफर्ड टू यू टू असिस्ट द स्पेक्टेकुलर शान लाइव कंसर्ट. वन आवाज वन स्टेज और वो यादगार पल जो उनके साथ हम बताने वाले हैं राइट एट SVICC on the 5th of September 2026 शुरू होगा from 8 PM proudly organized by ticketbox.mu. The game was powered by ticketbox.mu.
1: RM2
2: Radio Musti.
1: Feel the Musti.
0: Many congratulations to you, my dear. यहाँ पर ऐसे chances तो बस Radio Musti आपको लेकर आती हैं पल पल हर पल. इसके लिए आपको सुनते रहना है. Always stay well connected on our Radio Musti. Always a magic आपके लिए. फिलहाल सुनते रहिए. ठीक 5 बजे हम बढ़ेंगे न्यूज की तरफ. इसके बाद हम सनी की मुलाकात बिल्कुल आप लोगों से होने वाली है. For some moments, आज का रफ्तार वाइब्स.

0: रेडियो मस्ती।
1: सिकम के लोन्स और लीसिंग सुविधा के माध्यम से आप सकबा अपन सब खोजे के बिना कोनो चिंता के पूरा करे। सिकम के ग्रीन लोन जुनबा वो तोहरा एगो ऐसा जीवन शैली अपनाई खातिर वित्तीय सहायता देवेला जोन जस्सी इकोलॉजी खा। इसे हमनी के जोली टापू के भी फायदा होई। जस्सी जानकारी।

0: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: और M2
2: Radio Masti, your number one Bollywood radio station.
1: Hit.
0: Raftar Vibes, Filmy Rides.
1: RM2.

0: to Radio Musty.
1: Un bon petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Et les vies plus agréables avec un bon dipia pistache. Rapid Peanut Butter, un produit premium, 0% cholestérol, 0% transfat et riche en protéines. Qui dans ce l'emballage bleu crunchy ou l'emballage rouge creamy ou pour régaler avec Rapid Peanut Butter. Rapid Peanut Butter, a premium product at half the market price. Importé et distribué par RR Rapid Services Limited.
2: Tamam Deals inarrive coûte métrique. Pas croise, pas rêver. Du 14 au 31 août, profite jusqu'à 50% discount. Oui, the team bien attendez. Carreau, robinet et sanité à top qualité avec du rat, 50 tranquillité. Tamam Deals là, tamam même ça. Métrique, une enseigne du groupe KRMG.
3: Le jackpot du Loto Plus et du tirage de ce soir est à environ 9 millions de roupies et celui du Loto est estimé à 24 millions de roupies. La chance n'a pas sa place sur la route. À moto, ralentissez, gardez vos distances. Mieux vaut arriver en retard que pas du tout.
4: Ceci est un communiqué de Lototech. Le jeu peut créer une dépendance. Jouez responsablement.
0: RM2 Radio Musty.
5: Afternoon time, 5:14 ho gaya hai. Namaskar, and I wish you all a very good afternoon. Sabhi ka warm welcome in Raftar Vibes. Aapka ye musical safar, aur bilkul hum to kahenge steering aapka aur mahol hamara. Second hour shuru ho gaya hai. Yahan par aaj Hansani hai aapke saath. Wishing you all a great time. Aur jahan par raaste lambe hon ya chote, music safar ko khoobsurat bana hi leta hai na. तो अपना जो सीट बेल्ट है बांध लीजिए अच्छे से और स्ट्रेस फ्री होने के लिए तैयार आप हो जाइए. यहाँ पर सफर को म्यूजिक के हवाले हम करने वाले हैं अभी से लेकर अब तक 7 पीएम तक. दिस इज आवर सेकंड आवर और जहाँ पर भी साथ जारी है इट्स अ वार्म वेलकम. सो कैसा रहा आज का ये दिन? मे बी स्ट्रेस की वजह से काम रिलेटेड काफ़ी कुछ जिम्मेदारियाँ थी, ये तो चलती रहती है, लेकिन अभी काम के स्ट्रेस जो है ना उनसे दूर आपको ले चलेंगे प्योरली इन द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक, जहाँ पर आराम रहेगा, कुछ सुकून रहेगा और बेशक आपका ये एंटरटेनमेंट सफर. व्हाई नॉट कुछ ऐसे गाने जो हम लेकर आएंगे टू एंटरटेन यू. और साथ में है आज अगस्त स्पेशल डेट 19 अगस्त है. मे बी कोई खास है या फिर खुद आपका जन्मदिन है आज. तो चलिए हम सनी और पूरी टीम आए हैं टू विश यू अ वंडरफुल डे. हैप्पी बर्थडे आपको. हमेशा आप खुश रहे, हमेशा आप स्वस्थ रहे, यही हमारे गुड विशेस है. तो यहाँ पर ये जो म्यूजिकल सफ़र है वो अंत तक बिल्कुल आप लोगों का साथ निभाने वाले हैं. जहाँ पर आपकी मंजिल रहने वाली है, आपकी मंजिल चाहे जहाँ भी हो, हमारा अगला जो गाना रहेगा सफ़र को और भी यादगार बनाने के लिए ज़रूर हम चलाएंगे आप सबके लिए. Keep listening, keep enjoying with the one and only Radio Musty.
6: Raftar Vibes, Filmy Rides.
0: RM2.

0: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स
1: और M2।
2: इट्स अ यूनिसेक्स सॉन्ग।

0: ये ट्रैफिक और ये म्यूजिकल शो यहाँ पर जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा आराम मिल रहा है, जहाँ पर स्ट्रेस बिल्कुल उन सभी को हम दूर भगा रही है, दिन की थकान को दूर करती हुई आपके साथ हंसनी ऑन रेड मस्ती। वैसे ट्रैफिक चाहे थोड़ा सा स्लो हो, लेकिन हमारा जो म्यूजिक रहता है ना रेड मस्ती, ये तो कभी स्लो नहीं होगा। खिड़की के बाहर बदलते नजारे और कानों में बजता आपका फेवरेट गाने, तो और क्या चाहिए इस ड्राइव को और भी बेहतर बनाने के लिए। यहाँ पर बिल्कुल ये बहाना हमको मिल गया है टू मेक इट अ बिट मोर स्पेशल आप लोगों के लिए। तो बताइए आपकी ड्राइव में सबसे ज़रूरी क्या है, अच्छा म्यूज़िक या फिर अच्छे कंपनी। ट्रैफिक में फंसे हैं तो कोई बात नहीं जी, जब तक हम हैं आपका मूड फंसने हम नहीं देंगे। आपकी मंजिल चाहे जहाँ भी हो, दूर हो पास हो, लेकिन म्यूजिकल सफर में बिल्कुल आप लोगों का साथ चाहिए टू मेक इट मोर इजी। और म्यूजिक को आप अपना साथी बना लीजिए। यहाँ पर दिन भर की भागदौड़ के बाद अब घर की ओर सफर, ये तो एक अलग सी सुकून होता है, एक अलग ही यहाँ पर खुशी होती है घर वापस जाना। रास्ता तो वही है, गाड़ी वही है, लेकिन घर लौटने की खुशी हर बार नई होती है। और वैसे काम का जो स्ट्रेस पीछे छूट गया है ना, अब बस घर अपनों की तरफ जाना है। जब मंजिल घर हो तो लंबा सफर भी छोटा लगने लगता है ना, इसीलिए हम लेकर आते हैं ओनली द बेस्ट ऑफ गाने टू एंटरटेन यू। यहाँ पर है आपके साथ हंसनी, तो शेयर सम ऑफ योर प्यारी बातें, आई बी वेटिंग। अगर आप फ्री हो तो यू कैन सेंड मी योर डेडिकेशन ऑन 5499-1294।
1: Raftar Vibes, Filmy Rides,
2: RM2.

0: RM2
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
2: Fashion tips powered by Halkari Fashion, House of Ready-Made Garments.
3: Stay well connected on Radio Musti, guys. यहाँ पर है आपके साथ आओ जहां सनी और चलिए हम अपने म्यूजिकल शो को आगे बढ़ाते हैं. वैसे ये जो शाम है बस ढल गई है और मे बी यू हैव स्मॉल गैदरिंग परिवार के साथ कहीं पर आप जाने वाले हो या फिर एक छोटा सा प्रेयर समथिंग लाइक यू वांट टू बी इजी. तो अगर आप पसंद करेंगे आप चूज करेंगे आज एक सलवार कमीज तो उससे रिलेटेड सम स्टाइलिश और फैशनेबल टिप्स हम आपको देने वाले हैं. आप और भी ग्लैमरस लगे हमारी यही विषय हिस्सा है आपके लिए. तो फिटिंग्स के बारे में क्या हम कहेंगे आपके लिए कंधे और कमर पर

0: अच्छी फिटिंग वाला कमीज आप चुनें, इससे की वजह से आप ज़्यादा स्टाइलिश लगेंगे। बहुत ढीला या बहुत टाइट फिट से आप प्लीज़ बचें, क्योंकि इससे इट विल बी लाइक अ बिट अनकम्फर्टेबल। सो आपके सही फिटिंग ऐसा होने चाहिए, कंधे और कमर का जो साइज है वो बिल्कुल फिट होना चाहिए। और कलर कम्बिनेशन के बारे में बात करें तो पेस्टल रंगों के साथ हल्का दुपट्टा या कंट्रास्ट रंग का दुपट्टा बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आप ध्यान लगाएं अपने कलर कम्बिनेशन पर। और स्टाइल की बात करें तो स्ट्रेट कट कमीज के साथ प्लाजो का जो मॉडर्न लुक है वो बिल्कुल देते हैं। सो ट्वाइट आज अगर आपने नहीं पहना है, अगर आपके पास है वार्डरोब में आप जाइए, हैव अ लुक। अगर वो ऐसे स्ट्रेट कट कमीज है, प्लाजो है, तो ये बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं, जो आपका लुक है वो ज़्यादा यू नो स्टाइलिश लगेगा। और दुपट्टा जो आप यूज़ करेंगे, दुपट्टे को एक कंधे पर पिन करके या दोनों तरफ खुला रखकर अलग अलग लुक आप बना सकते हैं। ज्वेलरी के बारे में हम एक छोटा सा टिप आपको देते हैं, छोटे झुमके। अगर आप आज उनका इस्तेमाल करेंगे तो बस ये सिंपल लुक या फिर पार्टी वाला लुक भी देते हैं। सो आपके जो झुमके हैं वो छोटे रहेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। और फुटवेयर, जूतियाँ या फिर आप ऐसे हाई हील्स वाले जूते अगर आप पसंद करते हो तो ये डिपेंड करता है आपके स्टाइल पर, लेकिन जूतियाँ या हील्स को सलवार कमीज के रंग से मैच करें, ये आपके लिए बिल्कुल ऐड हो जाएगा, एकदम प्लस पॉइंट हो जाएगा टू मेक यू लुक मोर ग्लैमरस।
1: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments.
2: RM2
3: Radio Musti.
2: Feel the Musti.

0: FM2
1: Radio Musty.
2: Une envie de McDonald's là tout de suite, mais pas envie de bouger. Pas gagné tracas. Fais appel à McDelivery. Ton burger préféré, tes frites bien chaudes et ta boisson fraîche livrée directement chez toi grâce à Deliveroo et Odamanzé. À midi, le soir, n'importe quand l'estomac l'a grogné, n'est commandé, noir méné. Et en ce moment, profite de la livraison gratuite. Plus d'infos sur notre site web. McDelivery, pas bousé, nous vini.
3: McDonald's, ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
0: RM2
1: Radio Musty.
4: ब्रेक के बाद फिर से मुलाकात हमारी ऑन रेडियो मस्ती. ये तो है, ब्रेक लेना चाहिए टाइम टू टाइम ताकि वी फील लाइक बेटर और स्ट्रेस के माहौल से आपको दूर ले चल रही हैं इन द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक, जहाँ पर काम के स्ट्रेस से दूर हम बिल्कुल आपको ले जा रही हैं और घर के प्रति जो जिम्मेदारियाँ हैं वो भी कुछ कम हो रही है. आई रेडी होप सो. लेकिन जो हमारे फ्रेंड्स ऑलरेडी घर पहुंच गए हैं वो तो कहेंगे इट्स अ बिग नो हंसनी, क्योंकि अभी तो किचन काम शुरू हो जाएगा, अभी डिनर का प्रिपरेशंस बाकी है ना. ये तो है, सच बात है. हम बिल्कुल आप लोगों का साथ देने के लिए बिल्कुल है तैयार विद द बेस्ट डोज ऑफ म्यूजिक. तो अभी के लिए आई गॉट सम डेडिकेशंस प्यार से, जहां पर आपने हमको याद किया है, कुछ लिखा है आप लोगों के नाम. यहां पर स्वीति जी का साथ है, आप डबलिन से इस समय कनेक्टेड हो टू मॉरिशस, आपका वार्म वेलकम है जी. यहां पर गाना है फॉर सिल्वर एंड अमेदी के लिए, जो आज शादी के बंधन में बंध गए हैं, और लॉट्स ऑफ गुड विशेस है फॉर द न्यू कपल. और अभी जा रही हो फॉर द रिसेप्शन. अच्छा, मॉरिशस में स्टिल आप हो, वेरी नाइस. यहाँ पर जानकर खुशी हुई है. परिवार के साथ कुछ अच्छे वक्त बताने के लिए आप बिल्कुल रेडी तैयार. शबी हाँ, स्वीटी सुजय, केविन, हेमा, एंजल, सरानिया, बेबी सिया, वैष्णवी, मेविन, सांडी. We have also Kayana, Vintaj, we have Sapna, Sharmatiana, Chacha Balam, Chacha Geeta, and Pure Ridoi families of Amity and all the friends of Ireland. We do wish Sylvan and Amity happy married life. Actually, good wishes. Hamari Pure team ki taraf se bhi. Thank you for listening. Nice hearing you. Nice to have your message. Yeah, par connection to bahut hi badhiya hai. You have a request. Okay, I will try it in the third hour. Thank you for connecting with Raftar Vibes. Happy birthday to Chote Se Prince Sunil. We have got love and blessings coming from Mama Dhima, from Papa Ram, and sabhi binik parivar yahan par aaye hue hai to convey all the good wishes. Next one for baby Arshad ke liye, I want to remind him ki aap bahut hi grateful ho ki wo aapki zindagi mein hai, best part of your life. Aur ye hai message coming from baby Rebecca jo unko yaad kar rahi hai. Thank you so much for the messages. Yahan pe silsila bas jari hai on 549-1294. Aise hi aap enjoy kare the musical show up till 7 PM. लेकिन यहाँ पर इशारा है कि गाना जो हम लेकर आएंगे उसी गाने के साथ हम बढ़ेंगे ठीक 6 बजे के समाचारों की ओर.
5: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
0: RM2

अभी शाम के ठीक 6:03 हुए हैं। देरी से इस बुलेटिन की शुरुआत करने के लिए अहम क्षमा प्रार्थी हैं। 19 अगस्त 2026 की सुर्खियां इस प्रकार हैं। मॉरिशस और जिम्बाब्वे के बीच व्यापारिक सहयोग और मजबूत किया जा रहा है। इस दिशा में आज कुदा ऑथ सेंटर में एक बिजनेस फोरम आयोजित किया गया, जिसका मुख्य विषय था दोनों देशों के बीच निवेश की संभावनाओं को किस प्रकार तलाशा और बढ़ाया जाए। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी के नेटवर्क को नदियों से रोजाना 1,20,000 क्यूबिक मीटर पानी प्राप्त होता है। सितंबर तक 15 नई मोबाइल वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स के आने से ये क्षमता बढ़कर 1,50,000 क्यूबिक मीटर हो जाएगी। नेल्सन मंडेला सेंटर फॉर अफ्रीकन कल्चर में स्थानीय कलाकारों और इतिहासकारों के बीच एक राउंड टेबल लगा। ये बैठक गुलामों के व्यापार और दास्तां उन्मूलन की याद में मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय दिवस के संदर्भ में आयोजित गतिविधियों को लेकर लगी। आज तुलसीदास जयंती है, उस संत कवि को याद करने का दिन जिन्होंने रामकथा को जन जन की भाषा में पहुंचाया। सदियां बीत गईं लेकिन रामचरितमानस की चौपाइयां आज भी घरों और रामायण मंडलियों में उसी श्रद्धा से गूंजती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की कोलकाता शहर में आज तड़की सुबह एक होटल में भयानक आग भड़की, कम से कम 9 लोगों के मारे जाने की खबर। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। मॉरिशस और जिम्बाब्वे के बीच सहयोग और मजबूत किया जा रहा है और इस दिशा में आज कुदा ऑथ सेंटर में एक बिजनेस फोरम आयोजित किया गया, जिसका मुख्य विषय था दोनों देशों के बीच निवेश की संभावनाओं को किस प्रकार तलाशा और बढ़ाया जाए। इस बैठक में विभिन्न सेक्टरों के 50 से ज़्यादा पेशेवर शामिल हुए। चर्चा का मुख्य मकसद ठोस व्यापारिक पहलुओं और कारोबार की संभावनाओं पर विचार विमर्श करना रहा, ताकि अलग अलग तरह के क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। इस फोरम के अंतर्गत

0: मौसकी उद्योग और व्यापार सदन तथा जिम्बाब्वे चैंबर ऑफ कॉमर्स के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। डर्बन में 46वां सादिक शिखर सम्मेलन कई महत्वपूर्ण फैसलों के साथ संपन्न हुआ, जिसका मकसद इलाकाई एकीकरण और विकास तेज करना रहा। मुख्य नतीजों में सादिक टूरिज्म प्लेटफॉर्म यूनी वीजा शुरू करने के समझौते को मंजूरी, कृषि व्यापार मजबूत करना और बुनियादी ढांचे और औद्योगिकरण के लिए फंड जुटाना शामिल रहा। साथ ही इस इलाके में शांति और सुरक्षा के लिए नए सिरे से प्रतिबद्धता जताई गई। समापन समारोह के दौरान अंतिम विज्ञप्ति पढ़कर सुनाई गई। इस पर अब्देर बुलाकी की रिपोर्ट पर करुणा लालू का विवरण।
1: डर्बन में एकत्रित सादिक के संचालकों ने इलाकाई एकीकरण को मजबूत करने के लिए कई प्रमुख फैसले अपनाए। इनमें एक पर्यटन से संबंधित हैं। समिट में सादिक की यूनी वीजा स्थापित करने की संधि पर स्वीकृति दी गई और सदस्य देशों से इस पर हस्ताक्षर करने की मांग की गई। दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कहा, इस शिखर सम्मेलन ने एक आधारभूत सिद्धांत की पुनः पुष्टि की है, समृद्धि सुरक्षा विकास और हमारे देश की भावी उन्नति को अलग नहीं रखा जा सकता, ये पूरे इलाके की विकास परियोजना से जुड़ी है। आर्थिक स्तर पर संचालक औद्योगिकरण और मूल ढांचे के विकास को गति देना चाहते हैं। उन्होंने सादिक की इलाकाई परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के इलाकाई फंड के कार्यान्वयन की संधि का अनुसमर्थन करने की भी मांग की। अन्य प्राथमिकता व्यापार आदान प्रदान का मजबूतीकरण। समिति में इलाकाई वायु चेन के विकास, कृषि प्रोसेसिंग, व्यापार बाधाएं हटाने और इलाके के देशों के बीच सामान की बेहतर आवाजाही पर चर्चा हुई। इस कदम से खाद्य सप्लाई और कीमतों को स्थिर करने में मदद मिलेगी। शांति और सुरक्षा के मामले में समिति ने लोकतांत्रिक कोंगो गणराज्य में शांति बहाल करने की कोशिशों के प्रति अपना समर्थन दोहराया। साथ ही मडागास्कर और मोजाम्बिक में बातचीत की पहल का स्वागत किया। आखिर में सादिक के अध्यक्षता औपचारिक रूप से दक्षिण अफ्रीका को सौंपी गई। अगला शिखर सम्मेलन 2027 में जाम्बिया में लगाया जाएगा।
0: देश में पानी का भंडार लगातार कम हो रहा है। आज मोहवाक्वा जलाशय का जलस्तर मात्र 40% पर दर्ज किया गया। स्थिति को ध्यान में रखते हुए पानी के इस्तेमाल पर कुछ समय से पाबंदियां लगी हुई हैं और पानी के अन्य स्रोतों का इस्तेमाल हो रहा है। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी के नेटवर्क को नदियों से रोजाना 120,000 क्यूबिक मीटर पानी प्राप्त होता है। सितम्बर तक 15 नई मोबाइल वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स के आने से ये क्षमता बढ़कर 150,000 क्यूबिक मीटर हो जाएगी। कल 18 अगस्त को लथुकेनी के नेल्सन मंडेला सेंटर फॉर अफ्रीकन कल्चर में स्थानीय कलाकारों और इतिहासकारों के बीच एक राउंड टेबल लगा। ये बैठक गुलामों के व्यापार और दास्ता उन्मूलन की याद में मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय दिवस के संदर्भ में आयोजित गतिविधियों के संदर्भ में लगी। गुलामी से जुड़ी तस्वीरों और प्रतिकोण को नजरिए से देखने पर केंद्रित इस चर्चा का मकसद पीड़ितों के तौर पर दिखाए जाने के बजाय पीड़ितों के तौर पर दिखाए जाने के बजाय गुलामों की गरिमा को उजागर करना और सुधारात्मक न्याय में कला की भूमिका पर विचार करना रहा। पेसा की परीक्षाएं लगभग 2 महीनों में लगेंगी। इसकी तैयारी के लिए ज्ञाना सिबागत और नौशाबा दीन मोहम्मद को एक एक पर्किंस ब्रेल मशीन प्राप्त हुआ है। लुइस लाजेस ट्रस्ट फंड स्कूल फॉर द ब्लाइंड की 6वीं कक्षा की इन 2 छात्राओं को ये उपकरण पिछले साल एक ब्रेल प्रतियोगिता जीतने के बाद मिला था। ये पहल खास जरूरतों वाले छात्रों को बेहतर सहायता देने की कोशिशों का हिस्सा है। कोयल सीतल की रिपोर्ट पर गीता सुनार का विवरण।
2: ये मशीन ग्रेड 6 की इन 2 छात्राओं ज्ञाना और नौशबा, जिन्हें आंखों से देखने की समस्या है, को पेसाक परीक्षा की बेहतर तैयारी करने में मदद करेगी। उन्हें पिछले साल जीती गई एक ब्राइल प्रतियोगिता के पुरस्कार के रूप में एक एक पर्किंस ब्रेल मशीन दी गई है। घर पर और स्कूल में इससे मदद मिलेगी। बहुत नोट्स होते हैं, बहुत कुछ सीखना होता है।
3: लिपेमा कॉपी में बांध देव।

0: इस से मुझे क्लास वर्क और होमवर्क करने में मदद मिलेगी। पिसाक परीक्षा में इन छात्राओं को देश के अन्य सभी उम्मीदवारों की तरह ही परीक्षा देनी होती है। हालांकि उनके लिए कुछ छोटे बदलाव किए जाते हैं और परीक्षा का समय बढ़ाकर 3 घंटे किया जाता है। इतने लंबे समय तक परीक्षा देने और तेजी से तथा आसानी से टाइप करने के लिए सही उपकरण बहुत महत्वपूर्ण होता है। लोई क्लासेस ट्रस्ट फंड स्कूल फॉर द ब्लाइंड की अधिकारी ललिला राजमन मुनि कहती हैं, पर्किंस बहुत ही महंगा है, 75,000 रुपए या इससे ज्यादा की है। ये एक नाजुक मशीन है, स्कूल में इसकी कमी है। इन 2 पर्किंस से पिसाक में इन बच्चों की मदद होगी। शिक्षा मंत्री ने एक बार फिर समावेशी शिक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मंत्री महन गंगा प्रसाद कहते हैं, सरकार अभिभावकों और अध्यापकों की मदद करती है ताकि वे इन बच्चों की मदद कर सके। ये शैक्षणिक उपकरण है और सब जगह उपलब्ध नहीं होते। मंत्रालय के स्तर पर हम इन बच्चों को अपना सहयोग दे रहे
1: हैं।
0: इस समारोह के दौरान छात्रों के हुनर को जानने का मौका मिला।
2: पर्यावरण की रक्षा का कारण हो या ईंधन की बचत करने का उपाय, इलेक्ट्रिक गाड़ियां आजकल काफी चर्चे में हैं, लेकिन क्या घर पर गाड़ी चार्ज करने को लेकर कोई पाबंदी या ज़रूरी शर्तें हैं? ये उन सवालों में एक हैं जो गाड़ी खरीदने के इच्छुक लोग सबसे पहले पूछते हैं, क्योंकि बदलाव तो होने ही हैं, खासकर बिजली सप्लाई को लेकर। और भविष्य की बात करें तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या तेज़ी से बढ़ती है, तो क्या बिजली नेटवर्क मांगें पूरा कर पाएगा? पाई के स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में लगे मोटो शो के अंतर्गत ऐसी गाड़ियों को लेकर लोगों के बीच खास उत्साह देखा गया। दैविक राजकुमार, करुणा लालू।
3: 28 वर्षीय उद्यमी कलश बिच्चू पेट्रोल से इलेक्ट्रिक वाहन की ओर जाने की चाह रखते हैं। हाल में लगाई गई ऑटोमोबाइल शो के दौरान उन्होंने इस बारे में जानकारी प्राप्त की। पेट्रोल के बढ़ते दाम के साथ कार बदलने को सोच रहे हैं, साथ में पर्यावरण की रक्षा भी होगी जहां शून्य उत्सर्जन होगा।
4: L'environnement qui bon c'est point plus avec zéro émission avec voiture électrique.
3: इस रुचि के साथ उनके मन में एक चिंता भी है वाहन को चार्ज करने की सुविधा के बारे में।
4: Je pense pas moi aussi assez adapté et assez cela équipement.
3: मुझे नहीं लगता कि मॉरिशस में चार्जिंग के लिए पर्याप्त सौर उपकरण है। यदि 12 घंटों के लिए बिजली कटौती हो तो क्या होगा, कार का उपयोग कर पाएंगे? इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने का मतलब कुछ बदलाव करना भी है। पहला महत्वपूर्ण बिंदु, वाहन को इस मीटर से चार्ज नहीं किया जा सकता जो घर की बिजली आपूर्ति करता है।
5: Le restriction c'est plutôt de l'avantage le client.
3: डॉक्टर इस्माइल आदम इसाक जी कहते हैं, पाबंदी ग्राहक के हित में है। CUB से अर्जी करने पर अलग से मीटर मिलेगा जिससे 4 रुपए यूनिट पर गाड़ी चार्ज की जा सकेगी। ऑफ पीक में चार्ज करना फायदेमंद होगा, पीक टाइम के समय 10 रुपए यूनिट होगा। कुछ क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति नेटवर्क को मजबूत करना भी आवश्यक हो सकता है। एक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग के वक्त 2 या 3 घरों की सप्लाई ले सकती है, इसलिए गाड़ी की चार्जिंग के लिए नेटवर्क कायम नहीं किया गया है। हमें बताने पर हम निरीक्षण करेंगे, वर्तमान ट्रांसफॉर्मर की क्षमता को देखेंगे। व्यक्ति को इसमें थोड़ा सा योगदान करना होगा, इसलिए कुछ कार डीलर एक वैकल्पिक समाधान पेश कर रहे हैं, चार्जिंग के लिए समर्पित फोटोवोल्टाइक
6: प्रणालियां।
3: फैजल दिलियो ने कहा, इलेक्ट्रिक कार मानसिकता में एक बदलाव है, बदलाव से लोगों को थोड़ा सा भय है। 100% इलेक्ट्रिक के साथ एक विकल्प भी प्रस्तावित कर रहे हैं। आज इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार लगातार अधिक प्रतिस्पर्धी होता जा रहा है।

0: avec les nouveaux morgues venus sur le marché.
1: अर्शद बाउचा कहते हैं, नए मेक के साथ इलेक्ट्रिक कार बेहतर हुई है, मंडी में काफी प्रतिस्पर्धा भी है दाम को लेकर और बैटरी भी, लोग हिचकिचाते हैं क्योंकि इसके बारे में उन्हें कम जानकारी है।
0: Peut-être qu'ils n'ont jamais conduit un électrique, ou ils ne sont pas à l'aise avec les technologies, ou personne ne les a éduqués, de les expliquer c'est quoi une voiture électrique, comment ça fonctionne.
1: लेकिन अगर इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या इसी तरह बढ़ती रही तो क्या सेबी इस नई मांग को पूरा कर पाएगा? चुनौतियों को लेकर नहीं, सिर्फ जानकारी होनी चाहिए। नेटवर्क दो हिस्सों में है, लो और हाई वोल्टेज। आवासीय इलाकों में केबल हैं, यदि इलेक्ट्रिक कार हो तो ट्रांसफॉर्मर और कुछ केबल बदलने होंगे। नजर रख रहे हैं, ऑफ टाइम में चार्जिंग करना ही बेहतर समाधान होगा। इस वर्ष के शुरू से अब तक सीबी को इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों की ओर से नए कनेक्शन की 1191 मांगें प्राप्त हुई हैं, जबकि 2025 में ये संख्या 1349 थी।
2: 18 साल की लंबी इंतजार के बाद पोर्ट लुइस का थिएटर एक बार फिर अपना पर्दा उठाने की तैयारी में है, लेकिन इस ऐतिहासिक इमारत की नई शुरुआत के पीछे मरम्मत का एक लंबा सफर भी है। काम में देरी हुई और खर्च भी लगातार बढ़ता गया। आज इस परियोजना की लागत करीब 500 मिलियन रुपए तक पहुंच गई है। आखिर इन वर्षों में इस थिएटर पर कब और कितना पैसा खर्च हुआ, जानते हैं इस रिपोर्ट में। अंजुराम गुलाम, गीता सुना रही।
3: पहला अध्याय 2008 में शुरू होता है। पोर्ट लुइस का थिएटर अपने दरवाजे बंद कर देता है। करीब 200 साल पुरानी ये इमारत समय के साथ जर्जर हो चुकी थी। चूहे और दीमक भी इसे नुकसान पहुंचा रहे थे। पोर्ट लुइस नगर पालिका के अनुसार ये इमारत सुरक्षा के लिए खतरा बन चुकी थी, लेकिन इसके पुनर्निर्माण के लिए नगर पालिका के पास सिर्फ 50 मिलियन रुपए थे, जो इतने बड़े काम के लिए काफी नहीं थे। करीब 10 सालों तक स्थिति ऐसी ही बनी रही। 2018 में जाकर पहली बार काम शुरू हुआ। ये पहला चरण इमारत को मजबूत करने पर केंद्रित था। ये काम 2020 में पूरा हुआ, जिसकी लागत करीब 100 मिलियन रुपए थी। इस काम में फ्रांसीसी विकास एजेंसी ने भी सहयोग दिया। भूषण रामलोल कहते हैं,
4: Le théâtre de Pauli, le grand floor du théâtre de Pauli, il est situé sous le niveau de la mer. Donc
3: थिएटर का ग्राउंड फ्लोर समुद्र के जल स्तर के नीचे है। हमें फिर से एक बेसमेंट बनाना पड़ा। एक बंकर भी बनाया गया ताकि जब पानी ऊपर चढ़े तो उसमें न भरे। छत पूरी तरह सड़ गई थी, उसे पूरी तरह फिर से बनाया गया उन्हीं लकड़ियों से जो पहले से वहाँ मौजूद थी। दूसरे चरण के शुरू होने से पहले 3 साल बीत गए। जुलाई 2024 में भूषण रामलोल की अगुवाई वाली अबी अबी कंस्ट्रक्शन को दूसरे चरण का ठेका करीब 400 मिलियन रुपए में मिला। इस बार मकसद सिर्फ इमारत को बचाना नहीं बल्कि उसके पुराने गौरव को वापस लाना था। सुनहरी सजावट, बालकनियां और 1850 की डोम को उसके मूल रूप में फिर से चमकाने का काम किया जाना है। डोम को फिर से बनाने के अध्ययन के लिए करीब 25 मिलियन रुपए का बजट था। हमने काफी बचत की और इसमें करीब 15 मिलियन रुपए खर्च किए। कुल मिलाकर पोर्ट लुइस थिएटर के पुनर्निर्माण की लागत अब करीब आधा बिलियन रुपए तक पहुंच गई है। सभी तरह की समस्याओं के साथ साथ कई चीजों पर फिर से ध्यान दिया जाना चाहिए था। अब आखिरी अध्याय की तैयारी चल रही है। थिएटर को पहले अगस्त 2025 में दोबारा खोलने की घोषणा की गई थी। अब इसके सितंबर 2026 में खुलने की उम्मीद है। लॉर्ड मेयर कहती हैं, अगर निर्धारित अवधि यानी अगस्त के आखिर तक ये मिल जाएगा तब सितंबर तक ये कार्यरत हो जाएगा। करीब 2 दशकों के इंतजार के बाद पोर्ट लुइस थिएटर आखिरकार एक बार फिर अपना पर्दा उठाने की तैयारी में है।
2: इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंस कमीशन के अध्यक्ष पद पर सतीश फुगू की नियुक्ति के बाद 2 नए कानूनी पेशेवर इस संस्था के साथ जुड़े हैं।

0: इनुका ब्रिजमोहन और मोहम्मद उजीर ने आज स्टेट हाउस गई में गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल के सामने शपथ ली। नए नियुक्त सदस्य उस कानून में बदलाव की मांग कर रहे हैं जिसके तहत ये कमीशन कार्यरत है। आईपीसीसी का काम पुलिस अफसरों के खिलाफ शिकायतों की जांच करना है। आज तुलसीदास जयंती है, उस संत कवि को याद करने का दिन जिन्होंने रामकथा को जन जन की भाषा में पहुंचाया। सदियां बीत गई लेकिन रामचरितमानस की चौपाइयां आज भी घरों और रामायण मंडलियों में उसी श्रद्धा से गूंजती हैं। मॉरिशस में भी रामायण पाठ की ये परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। आखिर तुलसीदास की रचना में ऐसा क्या है जो आज भी लोगों को जीवन, कर्तव्य और मर्यादा का रास्ता दिखाती है? इसी पर हमारी ये रिपोर्ट पेश है आस्था गोविंद चितामन की।
1: तुलसीदास जयंती उस महान संत कवि के स्मरण का अवसर है जिन्होंने राम कथा को जन जन तक पहुंचाया। 16वीं शताब्दी के संत कवि गोस्वामी तुलसीदास की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस है। भगवान राम के चरित्र और उनके आदर्शों को उन्होंने ऐसी सरल और सहज भाषा में प्रस्तुत किया जो सामान्य जन के हृदय तक पहुँची।
2: तुलसीदास जी महाराज, उनका जन्म अभी से 500 साल पहले लेते हैं, और जब उनका जन्म हुआ था भारत की स्थिति में थी वो हमको ध्यान में रखना है। मुगल साम्राज्य था और उस समय भारत में 90% से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इलिटरेसी था। और हमारे जितने ग्रंथ है, वेद, उपनिषद, पुराण, सब संस्कृत भाषा में है, तो आम आदमी को बहुत कठिनाई होती थी कि हमारे धर्म क्या है इसके बारे में जानने के लिए।
1: रामचरितमानस में केवल प्रभु राम की कथा ही नहीं बल्कि जीवन के अनेक पक्षों का भी सुंदर वर्णन मिलता है। कर्तव्य, सेवा, त्याग, पारिवारिक संबंध और सदाचार जैसे जीवन मूल्य इसकी चौपाइयों में समाहित है। यही कारण है कि सदियों बाद भी इसकी शिक्षाएं समाज के लिए प्रासंगिक बनी हुई हैं।
2: हमारे पूर्वज आए थे तो सबको मालूम है कि वो यहाँ पर काम करने के लिए आए, पढ़े लिखे लोग नहीं आए थे। रामचरितमानस से उन लोगों ने प्रभावित होकर कितना कठिनाई सहकर जो कुछ भी किया, आज का हम जो जेनरेशन है इसका लाभ उठा रहे हैं। तो हमारे जितने जो जनरेशन बोलते हैं, जो जेंजी बोलते हैं, जिसको आज बहुत प्रचलित है देश विदेश में, तो इनको जानना चाहिए कि हमारा रूट कहाँ है, किस प्रकार से आज जो कुछ भी है हमारे पास, घर है, नौकरी है, हम हर एक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जहाँ भी देखो हिंदू छाए हुए हैं। मैं सिर्फ मॉरिशस की बात नहीं कर रहा हूँ, विश्व में भी। तो रामचरितमानस जो कि अवधी भाषा में है, लोगों की भाषा, जो लोग समझते थे, बोलते थे, राम जी की कथा, राम जी की कहानी, इस प्रकार से मास्टरपीस है वो।
1: मॉरिशस में रामायण पाठ की परंपरा भी लंबे समय से हमारी सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न अंग रही है। सामूहिक पाठ के माध्यम से इसकी चौपाइयां और उनमें निहित जीवन मूल्य आज भी नई पीढ़ी तक पहुंच रहे हैं।
3: इससे हमें बहुत उदाहरण मिलता है। और तुलसीदास जयंती वो एक उत्सव नहीं है, वह है भारतीय संस्कृति, भक्ति भावना और नैतिक मूल्यों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का एक पावन अवसर है। इसमें हमें शांति मिलती है और फिर हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं, अपने बच्चों को भी इसमें लगाती हैं कि हम सच्चाई की ओर चलें, भाईचारे की ओर, भाई भाई में झगड़ा ना हो।
1: युग बदले, परिस्थितियां बदली, लेकिन तुलसीदास की वाणी का महत्व बना रहा। रामचरितमानस आज भी मनुष्य को सदाचार, कर्तव्य और मर्यादित जीवन की प्रेरणा देता है। और शायद किसी महान कृति की वास्तविक शक्ति भी यही है कि वो अपने समय में रची जाए लेकिन उसका चिंतन किसी एक युग तक सीमित न रहे।
2: बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सौ ग्रंथ न गावा, कि हम जो मनुष्य तन पाए हैं इसके माध्यम से हम अपने को अनुभव कर सकते हैं कि हम एक डिवाइन एंटिटी है। और हम भूल जाते हैं कि रामायण में एक और कैरेक्टर है जो रावण है। रावण को बताया कि वो भी पढ़े लिखे थे, वेद का ज्ञान था उसको, लेकिन वो

0: अपने मन को काबू में नहीं कर पाए थे और अपने सर्वनाश हुआ उसको सब कुछ। तो हम अपने धर्म ग्रंथ को समझते हैं तो वी हैव द रूल ऑफ धर्म एंड द लॉ ऑफ कर्म, इसको दर्शाते हैं श्री तुलसीदास जी महाराज बहुत अच्छी तरह से।
1: रामचरितमानस की सदियों लंबी यात्रा इसका प्रमाण है। जब साहित्य जीवन मूल्यों से जुड़ता है तो वो केवल सांस्कृतिक धरोहर नहीं रहता, समाज के

0: भारत के कोलकाता शहर में आज तड़के सुबह एक होटल में भयानक आग भड़की। कम से कम 9 लोगों के मारे जाने की खबर है। शुरुआती जांच से पता चला कि एक एयर कंडीशन में विस्फोट होने से आग भड़की होगी। ज्यादा जानकारी इस रिपोर्ट में करुणा लालू के साथ।
1: बंगाल में एक और दर्दनाक हादसा। मंगलवार देर रात मध्य कोलकाता के एक होटल में भीषण आग लग गई, जिसने देखते ही देखते आसपास के होटलों को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस दुखद घटना में एक बच्चे और महिला सहित 9 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। कई लोग अस्पताल में भी भर्ती हैं। रात करीब 2 बजे होटल की तीसरी मंजिल पर लगी आग के बाद अफरा तफरी मच गई। बेहद तंग रास्तों के कारण दमकल की गाड़ियों को अंदर पहुंचने में कठिनाई हुई। राहत व बचाव दल ने 60 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। शुरुआती जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। 17 अगस्त की सुबह तारापीठ के होटल विदेशिनी में आग लगने से कम 8 लोगों की मौत हुई थी और कई अन्य घायल हुए थे।
0: मौसम का हाल। आम हालत हमारे इलाके पर अस्थिर हवाओं का असर है। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान है। आज रात और कल सुबह बादल घेराएंगे और विशेषकर पूर्वी और ऊंचाई वाले इलाकों में रह कर वर्षा होगी। दिन के दौरान आमतौर पर मौसम सुहाना होगा। हवा पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी और कल धीरे धीरे कमजोर होती जाएगी। प्रवाह रेखा के पार समुद्र सामान्य रहेगा और 2 मीटर के ज्वार उठेंगे। तापमान न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच। अधिकतम तापमान ऊंचाइयों पर 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्यास्त शाम 5:58 पर और कल सुबह सूर्योदय सुबह 6:28 पर।

इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क का और हमारी सहयोगी लुडोविक का सहयोग मिला है कंसल पर, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, बढ़ते हम शुभ समाचारों की ओर। शुभ समाचार सुनिए। लादवा रोड पुत्रदो विलाज में 46 साल के 46 years old के श्री सोमदत्त मेपुल जिन्हें बक्स के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके घर पुत्रदो विलाज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 1 PM। रॉय रोड पुत्रदो विलाज में 41 साल के 41 ईयर्स ओल्ड के श्री विकास रामजी दास जिन्हें विकास के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 2 बजे उनकी पत्नी श्रीमती अभिलाषा रामजी दास के घर पुत्रदो विलाज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पितों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 2 PM। वालोरी रोड मुकाम में 74 साल के 74 ईयर्स ओल्ड के श्री दयानंद राधा जिन्हें दया के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके घर मुका से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लागरिमा सैपिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 10 AM। रॉय रोड लावंतुआ में 73 साल की 73

0: years old की श्रीमती सितवंती गुंदारी, श्रीमती सितवंती गुंदारी जिन पैदाश नाम सुकालू और जिन्हें मतिया के नाम से लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 11:30 बजे उनके बेटे विशाल गुंदारी के घर लामोचे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11:30 AM। रिजर्वोर रोड कोंफुको में, रिजर्वोर रोड कोंफुको में 66 साल के श्री मारी लावाल दामो उजिया, श्री मारी लावाल दामो उजिया जिन्हें दमन के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 11 बजे उनकी पत्नी श्रीमती अनीता साकून ननलोल के घर कोंफुको से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की शमशान भूमि 11 बजे ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Raftar Vibes, Filmy Rides, RM2.

0: 6:41 PM, yes, strongly connected on Radio Masti. सभी हम सफर का हम स्वागत करना चाहेंगे. We are already in the third hour. कैसे ये वक्त हमने बताया है एक साथ पता ही नहीं चला. सो दिन ढल गया है और गलियों की लाइट्स जगमगा रही है, राइट? और अब शुरू होती है हमारी ये खूबसूरत शाम. काम का स्ट्रेस पीछे छोड़िए और म्यूजिक के साथ घर की ओर बढ़िए. जो हमारे फ्रेंड्स अभी भी जा रहे हैं घर वापस, विश यू अ सेफ ड्राइव. वैसे अगर आप थके हुए हैं और गाड़ी सवारी से बिल्कुल एक ब्रेक आपको लेना चाहिए, मे बी सुबह से काम हो रहा है या फिर यू फीलिंग ओवर टायर्ड, तो एक मिनट का ब्रेक आप ले लीजिए. आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बहुत ही कीमती है और वो एक मिनट आपकी बस ज़िंदगी को बचा सकता है. रास्ते पर सिर्फ अपने नहीं दूसरों की ज़िंदगी की भी जिम्मेदारियाँ आपके हाथों में है ना. इसलिए अगर आप बस ओवर टायर्ड है एंड यू नीड सम रेस्ट, तो बस डू टेक अ मिनट ऑफ ब्रेक. ये बिल्कुल ज़रूरी है टू रिफ्रेश एंड टू लाइक टू मेक यू फील अ बिट मोर इजी. तो यहाँ पर साथ जारी है फॉर रफ्तार वाइब्स योर म्यूजिकल जर्नी, जहाँ पर और जहंसनी है आपके साथ मिलकर हम इस सफर को तय करने वाले हैं 7 बजे तक. सो रियली होप कि जो हमारे चुने हुए गाने हैं आप पसंद कर रहे हो. और दैट वाज शान की मदमस्त आवाज़ जिनके साथ हमने की शुरुआत फॉर द थर्ड आवर. डोंट फॉरगेट शान जो एकदम जाना माना है हस्ती इन बॉलीवुड, वन ऑफ द ग्रेट प्लेबैक सिंगर्स इन बॉलीवुड. और वो आ रही हैं मॉरिशस. यस, लाइव उनको देखने का मौका, लाइव उनको सुनने का मौका, ये बस ये चांस आपको दिए जा रहे हैं टू बी पार्ट ऑफ हिज लाइव कंसर्ट जो होने वाला है 5th of September को. ही विल बी लाइव एट SVICC एज फ्रॉम 8 PM. डोंट मिस द चांस. और रेडियो मस्ती पर टाइम टू टाइम गेम शोज हो रही हैं जहाँ पर आपको टिकट से दिए जा रहे हैं. तो क्या पता कल भी एक गेम द्वारा आपकी जीत हो जाए. नेवर नो, लेडी लक घूमती रहती है ना आपके साथ, स्पेशली जब आप जुए रहते हैं विद रेडियो मस्ती. सो दिस इज योर म्यूजिकल शो अप टिल 7. स्टे वेल कनेक्टेड.
1: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
2: RM2.

0: RM2
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
2: This is something

0: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: RM2। Alright, my lovely listeners, thank you so much. इतना सारा प्यार हमको देने के लिए इन आज का रफ्तार वाइब्स, that's our midweek show, Wednesday का दिन जो आया है और अभी जो म्यूजिकल जर्नी है बस उनको आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल बंठन की आ गई है हमारी प्यारी सदीवी दिव्या. Hello, welcome.
2: Hello, Hansu. Thank you so much for the warm welcome and आपके गाने तो हमेशा इतने मस्त जबरदस्त होते हैं कि वी जस्ट वाइब विद द सॉन्ग्स.
1: ओके, यानी कि अभी आई बी वाइबिंग बैक होम.
2: डेफिनेटली डेफिनेटली. अभी बांधी कमरिया से सारी की आई अब दिव्या की बारी.
1: यस, दिव्या विल बी हियर फॉर आज का इवनिंग लाउंज. आराम से बैठेंगे, डिनर को एंजॉय करेंगे और साथ में दिव्या के गाने को हम एंजॉय करने वाले हैं. राइट,
2: नो डाउट.
1: स्टे वेल कनेक्टेड, हम मिलेंगे जल्द. तब तक के लिए आई विश यू ऑल अ ग्रेट इवनिंग अहेड. टेक वेरी गुड केयर.

0: देखिए अगर आपने प्यार किया है और प्यार को अगर आप चोरी चोरी इसका इजहार इकरार करना चाहते हैं तो दुनिया को कैसे पता चलेगा कि आपको प्यार हो गया है। और जब भी प्यार होता है तो दुनिया को बताना बहुत ही ज़रूरी है कि वो ख़ास इंसान, वो ख़ास शख्स कौन है। एंड इट्स ऑलवेज नाइस टू इंट्रोड्यूस योर लव टू द वर्ल्ड। तो इसीलिए जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, इसलिए आप लोग चोरी चोरी प्यार मत कीजिए एंड चोरी चोरी इसको जताइए नहीं, बल्कि खुल्लम खुला आप इसका इजहार इकरार करेंगे तो जिससे आप प्यार करते हैं वो एक्स्ट्रा स्पेशल फील करने वाले हैं। आई एम वेरी श्योर कि आप भी प्यार करते हैं एंड आपको और भी प्यार हो जाएगा हमारे गीतों को सुनने के बाद, इतनी गारंटी तो हम ज़रूर देते हैं। वेल 7:10 हो चुके हैं, इट्स अ वंडरफुल वेंसडे इवनिंग। देखते ही देखते वेंसडे भी आ गया है और इट्स ऑलरेडी मिड वीक, जहाँ पर बस 2 दिन और का इंतज़ार है और इसके बाद सब लोग इंतज़ार कर रही है खुशी के 2 पल की। एंड इट्स अ सैटरडे संडे, ये भी आ जाएंगे, डोंट वरी। एंड अभी के लिए आप लोग काम से थके हारे घर वापस आए हैं तो बिल्कुल हमारा साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। यही बात आप पर हमें बहुत ही, आप इतने प्यार करते हैं हमें कि बस वी कांट हेल्प बट गिविंग यू मोर एंड मोर लव। आप लोग इतने थक जाते हैं काम पर, दिन भर की थकान को आप दूर भगाना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यू डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन द रेडियो एंड इंक्रीज द वॉल्यूम। और इसी बात पर हम हमेशा आप पर प्यार लुटाते हैं। सो वंस अगेन दिल से शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए। इट्स योर इवनिंग लाउंज, जहाँ पर दिव्या का साथ है रात्रि के 9 बजे तक। कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे विदाउट फॉरगेटिंग योर मैसेजेस। यस यस, आप अपने मैसेजेस हम तक ज़रूर पहुँचा सकते हैं ऑन 5499-1294।
1: इवनिंग लाउंज,
2: इवनिंग लाउंज,
3: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: वेल फ्रेंड्स 7:17 हो चुके हैं एंड ऑफ कोर्स यू आर कनेक्टेड टू RM2 रेडियो मस्ती जहां पर दिव्या का साथ है. दैट वाज अ ब्यूटीफुल गाना शान की आवाज़ में बहती हवा सा था वो फ्रॉम द मूवी 3 Idiots. एंड नॉट टू फॉरगेट कि बहुत ही जल्द शान का एक लाइव कॉन्सर्ट होने वाला है एंड इट विल बी ऑन द 5th September 2026 एंड ये ऑर्गेनाइज किया गया है बाय ग्रेविटी जीरो. शान लाइव इन मॉरिशस इज सेट टू बी अ स्पेक्टेक्युलर इवनिंग ऑफ बॉलीवुड म्यूजिक एंड नॉस्टैल्जिया. और डोंट फॉरगेट ये बहुत ही जल्द होने वाला है एट SBICC Pi एज फ्रॉम 8 PM ऑन सैटरडे 5th September 2026.
1: इवनिंग लाउंज
2: RM2
1: रेडियो मस्ती.

0: चलिए 7:28 हो चुके हैं एंड ऑफ कोर्स दिव्या का साथ है योर इवनिंग लाउंज एंड आई जस्ट होप दैट यू हैविंग अ ग्रेट ग्रेट टाइम लिसनिंग टू रेडियो मस्ती. खूबसूरत गाने ऐसे ही चलते हैं और क्या कहें, गाना तो सुना ही होगा अपने, खूबसूरत है वो इतना सहा नहीं जाता. अब हमारे गाने ऐसे ही खूबसूरत हैं कि आप रह नहीं पाएंगे और हम ये चाहते हैं कि आप बिल्कुल ये ना कहें कि हम कह भी नहीं पाएंगे. कहना बहुत ही ज़रूरी है, प्यार किया है तो एक्सप्रेस बिल्कुल करना है. इस पर हम जोर हमेशा लगाते रहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जिनको आप याद कर रहे हैं उन तक एक मैसेज ज़रूर पहुंचाएं. वेल, उन तक मैसेज नहीं पहुंचाना चाहते हैं तो हम तक ही सही, वो मैसेज हमें भेज दीजिएगा. आपका ये प्यारा सा पैगाम अपनों के नाम ज़रूर भेज देंगे, वो भी बहुत ही प्यार के साथ. चलिए यहाँ पर हमारे प्यारे से भैया जी अंतिश कनेक्टेड हैं ऑल द वे फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड. कहते हैं कि आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द लेजेंडरी. वेल वेल, अभी देखिए हम बार बार वेल वेल तो नहीं कह सकते हैं ना. तो चलिए थैंक यू सो मच हमारे प्यारे से नौटंकी भैया जी, साथ देने के लिए दिल से शुक्रिया. हमेशा आप स्विट्ज़रलैंड से कनेक्टेड रहते हैं, धूप हो बारिश हो सुबह हो दिन हो शाम हो, एवरी टाइम यू ऑलवेज सेंड योर मैसेजेस एंड स्पेशली आस्किंग इफ आई एम ओके. इट मीन्स अ लॉट. थैंक यू सो मच अंतिश एंड द नेक्स्ट वन गोज आउट स्पेशली आपके नाम और आपकी पूरी फैमिली के लिए. एंड यहाँ पर हमारी प्यारी सी टीना जी आ गई हैं लहराते बलखाते. ऑफ कोर्स कहती हैं कि द ब्यूटी ऑफ लाइफ इजंट इन ऑलवेज नोइंग व्हाट कम्स नेक्स्ट बट इंटरेस्टिंग दैट व्हाट एवर डज यू विल मीट इट विद स्ट्रेंथ सॉफ्टनेस एंड ओपन हैंड्स. ये आपने बिल्कुल सही कहा, इसलिए हम कहते हैं ना कि खुली बाहों के साथ जिंदगी को वेलकम कीजिए और देखिएगा कमाल. यहाँ पर टीना जी अगला गाना गुजार स्पेशली फॉर यू, थैंक यू फॉर लाइकिंग द सॉन्ग सिलेक्शन. नेक्स्ट गाना आपके नाम और तमाम आपकी ब्यूटीफुल फैमिली के लिए. कल आपके मामा का बर्थडे है, उनको बहुत ही मिस किया जा रहा है. अभी जिंदगी की दस्तूर यही है, कुछ लोग पास होकर भी दूर होते हैं और कुछ लोग दूर होकर भी इतने याद आते हैं कि वो हमेशा आसपास ही उनको हम महसूस करते हैं. एंड आई गेस योर मॉम इज़ नाउ योर गार्डियन एंजल एंड ही इज़ लुकिंग आफ्टर यू एंड वॉचिंग ओवर यू. सो चलिए यहाँ पर अगला गाना उन तमाम लोगों के लिए भी जो इस वक्त शायद नाइट शिफ्ट कर रहे होंगे. बुक वॉच टू ईच एंड एवरी वन वर्किंग राइट नाउ.
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

0: ट्रस्ट मी दोस्तों, अ प्रॉमिस इज नॉट ओनली अ प्रॉमिस इज समवन्स वर्ल्ड. शायद जो वादे आप करते हैं इसको सुनने के बाद किसी के दिल में इतने सपने उभर कर सामने आ जाते हैं कि वो कुछ कह नहीं पाता है या कह नहीं पाती है, लेकिन होप में और इस एक्सपेक्टेशन में जीते रहते हैं. इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वादे करते हैं तो इसको निभाना तो पड़ेगा ही.
1: इवनिंग लाउंज,
2: इवनिंग लाउंज,
3: RM2
1: रेडियो मस्ती.

बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं, शायद इसी वजह से कहते हैं कि यादें जिंदगी का एक हिस्सा होता है। और अपने इस जिंदगी के हिस्से को खूबसूरत बनाना और इसमें खूबसूरत यादों को और भी ऐड करते जाना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। इसलिए डू नॉट एक्सपेक्ट एंड कीप वेटिंग फॉर अदर्स टू मेक यू स्माइल। या फिर हम कभी कभी बैठकर दूसरों का इंतज़ार करते रहते हैं कि कब कोई हमें हंसाएगा और हम अच्छा फील करेंगे, बट कभी कभी खुद की कंपनी को भी इंजॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप वेट करते रहेंगे तो ऐसे में आपको बस इंतज़ार मिलेगा, अच्छे पल हाथ से फिसल कर बस ऐसे ही निकल जाएगा। चलिए पर बढ़ते हैं आपके कुछ मैसेजेस की ओर। हाय दिव्या, होप यू आर फाइन, थैंक यू सो मच। वनीशा, आई एम डूइंग गुड। एंड नेक्स्ट कैन आई गोज आउट स्पेशली टू दैट स्पेशल पर्सन जिनको आप बहुत ही प्यार से कहना चाहते हैं, आई लव यू टू द मून एंड बैक, यू आर सो स्पेशल टू मी, फ्रॉम वनीशा। थैंक यू सो मच वनीशा, हमें बहुत ही खुशी होती अगर आप उस स्पेशल समवन का नाम लिख देते। मे बी यू वॉन्ट टू कीप इट डिस्क्रीट, कोई बात नहीं, वी रिस्पेक्ट यू दैट। एंड आई जस्ट होप कि आपका जो स्पेशल पर्सन है ये मैसेज सुनकर उनको पता चल ही गया होगा कि वो कौन है। थैंक यू सो मच वंस अगेन आपके इस खूबसूरत मैसेज के लिए। और साथ में यहाँ पर रेडियो मस्ती के साथ जुड़े हुए हैं गीता, सीता, भोलूराम और शातो बनारस। और साथ में नेक्स्ट गाना हम डेडिकेट करेंगे फॉर बेटी अवनी एंड हस्बैंड रोशन फ्रॉम मनीषा। एंड साथ में हमारी प्यारी से अनीता जी फ्लिक ऑफ लक से कनेक्टेड हैं। नेक्स्ट गाना आपकी बहन शोभा के लिए, अनुराधा, लक्ष्मी एंड हमारी टीम के लिए। आपको भी बोन कुआज अनीता जी, एंड हैव अ ग्रेट टाइम लिसनिंग टू रेडियो मस्ती। एंड यहाँ पर आप ने हमें एक मैसेज भेजा है, आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस दिस मैसेज टू द लव ऑफ माई लाइफ। हमें बहुत ही अच्छा लगता है जब हमारी गीतों को सुनने के बाद आप उस वाइब में पूरी तरीके से घुस जाते हैं और यू स्टार्ट एक्सप्रेसिंग योर लव टू दैट समवन स्पेशल। ट्रस्ट मी, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ अ वेरी स्पेशल मोमेंट। एंड आप कहते हैं आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस दिस मैसेज टू द लव ऑफ माई लाइफ, आवर लव स्टोरी इज़ लाइक अ फेरी टेल, सुख और दुख के साथ हम जीते हैं, इशारों इशारों में हम बातें करते हैं, बहुत ही रेयरली हमारी मुलाकात होती हैं लेकिन फिर भी बातें रोज़ होती हैं, बट वन थिंग इज़ दैट वी आर देयर फॉर ईच अदर एंड वी लव ईच अदर सो मच एंड योर बाबूश लव्स यू अंबर। क्या बात है। सो चलिए अंबर जी, ये अगला गाना गुजार स्पेशली फॉर यू फ्रॉम योर बाबूश। एंड प्यार में तो ऐसे मीठे मीठे नाम तो हम रख ही देते हैं। एंड आई जस्ट

0: कि आप इस वक्त आपके बाबूश को सुन रहे हैं और आपको पता चल गया है कि वो कौन है। साथ में वी हैव राजकुमार पुरुषोत्तम जी, आप हैं ब्रह्मस्थान से, थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए। नेक्स्ट ब्यूटीफुल गाना जाएगा फॉर योर फैमिली, आपकी बेटी पोशिका के लिए, अक्षित के लिए एंड फॉर योर वाइफ स्पेशली विदुषा, एंड उनको कहना चाहते हैं आई लव हर सो मच, दैट्स रियली नाइस। तो चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले गाने की ओर, एंड इस अगले गाने के बाद मुलाकात होगी सीधा इन द सेकेंड आवर ऑफ योर इवनिंग लाउंज।
1: Evening Lounge.
2: RM2.
1: Radio Musti.

0: कुछ ऐसे गाने होते हैं जो सुनकर बस मन बहुत ही स्पेशल फील करता है. एंड आप इमेजिन कीजिए, ये गाना नहीं बल्कि ये हकीकत है. और ये सारी लाइनें आपको कोई एक्चुअली मैसेज करके बोल भी रहा है कि ज़िंदगी में कुछ भी नहीं था और बाद में तुम आए तो सब कुछ बदल सा गया है ना. स्पेशल कराने वाली लाइनें, इसलिए कहते हैं ना कि कुछ गानों में फीलिंग्स होते हैं और कुछ ऐसे गाने होते हैं जो रूह को छू जाते हैं. एंड आई जस्ट होप कि आप पूरे मन से हमारे गीतों को सुन रहे हैं और इसको महसूस भी कर रहे हैं. चलिए, वेलकमिंग योर मैसेजेस वंस अगेन ऑन 5499 1294. यहाँ पर किसी का मैसेज आया है, आई वॉन्ट टू डेडिकेट अ सॉन्ग टू माई वाइफ प्रियंका, और गाना है तो फिर आओ फ्रॉम द मूवी आवारापन 2. हम इसको चलाने की कोशिश करेंगे. एंड साथ में जितने भी सारे लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं, ये अगला गाना गुजरात स्पेशली टू ईच एंड एवरी वन. एंड इफ यू हैविंग अ ग्रेट टाइम लिसनिंग टू RM2, जरूर हमें बताइएगा कि आपको प्लेलिस्ट या फिर गाने की सिलेक्शन कैसे लग रहा है.
1: Evening Lounge,
2: Evening Lounge,
3: RM2,
1: Radio Masti.

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: किसी को हर लम्हा अपने दिल में लेकर बस कहीं पर जाना और साथ में उनको ये बताना कि आप उनको कितना याद कर रहे हैं, कितना मिस कर रहे हैं. सो सो अमेजिंग. चलिए, आप एग्जैक्टली वही कर रहे हैं, आपके मैसेजेस भेजकर, और आपके मैसेजेस पर ये बहुत ही अच्छा लग रहा है. थैंक यू सो मच वंस अगेन. एंड यहाँ पर आप कहते हैं, हेलो डिया, आई एम यश फ्रॉम काठरबोन, वॉन्ट टू डेडिकेट द नेक्स्ट गाना टू माई लवली वाइफ शालिनी, आपकी प्यारी बेटी है मोईशा, हु इज़ प्रिपेयरिंग डिनर एज वी आर जस्ट बैक फ्रॉम जिम. दैट्स अमेजिंग. एंड चलिए, प्यारी सी राजकुमारी अभी किचन में बिजी हैं, आप लोगों के लिए खाना तैयार कर रही हैं या फिर आपकी वाइफ खाना बना रही हैं, ये आपने शायद प्रिसाइज करने में थोड़ी गलती कर दी है, बट अगर दोनों ही डिनर तैयार कर रही हैं तो चलिए अच्छी बात है. सो आपको बना पिची एडवांस में, टू ऑल दोज हैविंग द लेट डिनर राइट नाउ, आपको भी बना पिची एंड एन्जॉय योर मील विद द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक.

0: ना जाए जाने कोई कैसी है ये जिंदगानी हमारी अधूरी कहानी और हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आपकी प्रेम कहानी कभी भी अधूरी हो और हम तो यही चाहते हैं कि हमेशा आप अपने प्यार का एग्जांपल सबको देते रहे और हमेशा अपने प्यार को देखकर यही कहे कि बस कहीं मेरे प्यार को किसी की नज़र ना लगे। एट टाइम्स खुद की नज़र लग जाती है लेकिन क्या करें, इतना प्यार कि हमसे रहा नहीं जाता है और कभी हमें ऐसा लगता है ना कि हम अपने दामन में इतना प्यार समेट नहीं पाएंगे, लेकिन ट्रस्ट मी यू डिज़र्व दिस काइंड ऑफ लव। और उतने ही प्यार से हम भी आप लोगों को पैम्पर कर रहे हैं मैसेजेस के जरिए। यस डू कीप ऑन सेंडिंग योर मैसेजेस ऑन 5499-1294। चलिए यहाँ पर आप कहती हैं, नमस्ते जी, अगला गाना संगीता और उनके परिवार के लिए मोताई ब्लॉश से है, आपको भी धन्यवाद और शुभरात्रि। साथ में यू विल डेफिनेटली लाइक टू विश अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू ब्यूटिफुल प्रीति और विशेज कमिंग फ्रॉम बीटी दर्शिनी भाई बाजी ऑफ द गुचिया हु सेलिब्रेटिंग बर्थडे टुडे, विशेज wishing her a very happy birthday. God bless her with good health, prosperity, happiness, and may God bless her with long life and pray टू गॉड कि उनके हर एक सपना साकार हो, उनका हर एक सपना साकार हो। एंड विशेज कमिंग फ्रॉम मामा रूपा, पापा देवन, नाना है वेदानंद, नाना राज, नाना संजय, काकू बाबिनी, काकू कविता, आकाश श्वेता, काशिका, दादा प्रशांत, दादा अनिकेत, दादा तिशान, दादा शुभम, वाइनी है दिशा, करिश्मा, आतो है सावित्री, ममा दयानंद, आतो संता, सभी बाजी फैमिली ऑफ अपदागुचिया, हीरू फैमिली ऑफ विजेवेजी एंड परसराम फैमिली ऑफ काटुबोन की तरफ से उनको बहुत सारा प्यार एंड गॉड ब्लेस यू। एंड चलिए इसी के साथ बिल्कुल हम बढ़ेंगे अगले गाने की ओर। एंड ऑल्सो टू ऑल दो सेलिब्रेटिंग द बर्थडे टूडे, आपको मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे।
1: Evening Lounge.
2: RM2.
1: Radio Musti.

0: बिल्कुल होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है और हम तो यही चाहते हैं कि इस बेखुदी को आप प्यार ना समझिए। कभी-कभी हमारा दिल इतना बेचैन हो जाता है कि हमें लगने लगता है कि हमें प्यार हो गया है, लेकिन कभी-कभी तोल मोल के प्यार करना भी उतना ही ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए कहते हैं ना कि जहाँ पर दिल की चलती है वहाँ पर दिमाग को भी थोड़ा बहुत इसका इस्तेमाल करना पड़ता है प्यार में। एंड आजकल तो ऑफ कोर्स ट्रस्ट करना बिलीव करना बहुत ही मुश्किल है, बट आई जस्ट होप कि आपकी ज़िंदगी में यू गेट द राइट पर्सन इन योर लाइफ एंड आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 8:50, इट्स योर इवनिंग लाउंज जहाँ पर दिव्या का साथ है टिल 9 PM। सो थैंक यू वंस अगेन टू ऑल दोज जो बहुत ही प्यार से और बहुत ही पेशेंस के साथ हमें सुन रहे हैं, हर एक गीत को एंजॉय कर रहे हैं और यू फॉलिंग इन लव विद ईच सॉन्ग, ये जानकर हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है।
1: इवनिंग लाउंज
2: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: RM2 Radio Musty.
1: चलिए अभी के लिए तो जाने का वक्त आ चुका है और जाते जाते वुड लाइक टू रिमाइंड यू वंस अगेन कि बहुत ही जल्द शान का एक कॉन्सर्ट होने वाला है. यस, शान लाइव इन कॉन्सर्ट ऑन द 5th September 2026 और This is organized by Gravity Zero, Shan live in Mauritius, and it's set to be a spectacular evening of Bollywood music and nostalgia, jo hone wala hai Saturday 5th September 2026 at SVICC Pi as from 8 PM. So chaliye isi ke saath it's time for me to say goodbye. Hamari aur aapki mulaqat kal same time 7 se lekar raatri ke 9 baje. Tab tak ke liye take care, keep smiling and bye bye.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
1: Late night grooves.
0: RM2 Radio Musti.
3: It's a lovely evening to you all, my dear listeners. नीतू का प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें. I really hope आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं. हाँ तो चलिए, it's your late night grooves and as you all know, ये 3 घंटों का सुरीला सफर है. Music, music and music to you all lovely people. So wherever you might be, stay well tuned. वैसे जब म्यूजिक की बात ही कर रही है, we all know only Bollywood music. आपके नाम एंड म्यूजिक माने कि बहुत सारे जॉ होते हैं, स्टाइल्स होते हैं. चले आज कुछ उन स्टाइल्स के बारे में बात करते हैं. वैसे आपका क्या स्टाइल है? यू लव रॉक म्यूजिक, रोमांटिक सॉन्ग्स, गजल, कवाली, जो सो बॉलीवुड म्यूजिक सिर्फ गानों का नाम नहीं है बल्कि ये हिंदुस्तान की बदलती हुई जिंदगी, सोच,

इस्पात एंड कल्चर का म्यूजिकल सफर है। कभी इसमें शास्त्रीय संगीत की गहराई सुनाई दी, कभी लोक संगीत की मिट्टी की खुशबू, कभी वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रा का ग्लैमर एंड कभी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक बीट्स का जादू। हिंदी सिनेमा ने हर दौर के म्यूजिक को अपने अंदाज में अपनाया और उसे आम लोगों के दिल तक पहुंचाया।

50s एंड 60s में मेलोडी एंड क्लासिकल इन्फ्लुएंस का दौर था। 70s में रिदम, एक्सपेरिमेंटेशन एंड पावरफुल ऑर्केस्ट्रेशन ने बॉलीवुड म्यूजिक को एक नई पहचान दी। 80s में डिस्को एंड इलेक्ट्रॉनिक साउंड्स आए तो 90s में रोमांटिक मेलोडीज का जादू छाया एंड न्यू मिलेनियम में फ्यूजन, हिप हॉप, रैप, EDM और वर्ल्ड म्यूजिक ने बॉलीवुड के म्यूजिकल लैंडस्केप को और भी बड़ा कर दिया।

भी एक मॉडर्न सॉन्ग में तबला, फ्लूट, सितार या क्लासिकल आलाप के साथ सिंथेसाइजर एंड इलेक्ट्रॉनिक बीट्स सुनाई दे सकते हैं। यही है बॉलीवुड म्यूजिक की असली वर्सटैलिटी। परंपरा भी, मॉडर्निटी भी, मेलोडी भी एंड एक्सपेरिमेंटेशन भी।

बॉलीवुड म्यूजिक की जड़ों में इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का बहुत गहरा प्रभाव रहा है। राग, ताल, आलाप, बंदिश और क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स ने हिंदी फिल्म म्यूजिक को एक ऐसी रिचनेस दी है जो आज भी लिसनर्स को अट्रैक्ट करती है। कई फिल्मी कंपोजिशंस में क्लासिकल रागों को इतनी खूबसूरती से यूज किया गया कि आम श्रोता भी उनकी मधुरता को महसूस कर सके।

वैसे फिल्म म्यूजिक ने क्लासिकल म्यूजिक को एक कठिन एकेडमिक फॉर्म के रूप में नहीं बल्कि इमोशंस की भाषा के रूप में पेश किया। प्रेम हो, विरह हो, भक्ति हो, श्रृंगार हो या उदासी, क्लासिकल सुरों ने हर इमोशन को गहरा बनाया। ये भी बॉलीवुड की कला है कि उसने क्लासिकल म्यूजिक को सिनेमैटिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से अडॉप्ट किया। कहीं एक छोटा सा आलाप पूरे सीन का मूड बना देता है, तो कहीं फ्लूट की एक धुन कैरेक्टर की फीलिंग्स बता देती है। दैट्स व्हाई बॉलीवुड और क्लासिकल म्यूजिक का रिश्ता सिर्फ इन्फ्लुएंस का नहीं बल्कि एक खूबसूरत क्रिएटिव पार्टनर

Thank you so much हमारे हमसफर बनने के लिए It's your late night grooves नीदो के साथ वैसे बॉलीवुड म्यूजिक में इंडियन फोक म्यूजिक की अपनी एक अलग जगह है भारत के हर कोने की अपनी म्यूजिकल ट्रेडिशन है पंजाब के एनर्जेटिक बीट्स राजस्थान की लोक धुनें बंगाल की सोलफुल मेलोडीज उत्तर प्रदेश और बिहार के लोक गीत महाराष्ट्र के लावणी रिदम्स एंड गुजरात के गरबा बीट्स बॉलीवुड ने इन रीजनल ट्रेडिशंस को नेशनल ऑडियंस तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया

फोल्क म्यूजिक की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसकी सिंप्लिसिटी और इमोशनल कनेक्ट। इसमें जिंदगी की असली आवाज होती है, गांव की मिट्टी, त्योहार, शादी, फसल, प्रेम, बिछड़ना और खुशी, सब कुछ। जब बॉलीवुड किसी फोल्क मेलोडी को मॉडर्न अरेंजमेंट के साथ प्रेजेंट करता है तो एक इंटरेस्टिंग फ्यूजन क्रिएट होता है। ट्रेडिशनल लिरिक्स और इंस्ट्रूमेंट्स के साथ कंटेम्पोररी रिदम जुड़ जाती है। इस तरह एक पुरानी लोक धुन नए जेनरेशन के लिए भी फ्रेश और एक्साइटिंग बन जाती है।

आज बॉलीवुड के उन स्टाइल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं अबाउट म्यूजिक, तो बॉलीवुड म्यूजिक ने सिर्फ इंडियन क्लासिकल ट्रेडिशन से इंस्पिरेशन नहीं ली बल्कि वेस्टर्न म्यूजिक से भी बहुत कुछ सीखा। जैज, रॉक, पॉप, डिस्को, फंक, लैटिन म्यूजिक और इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक के एलिमेंट्स ने हिंदी फिल्म सॉन्ग्स को अलग अलग दौर में नए कलर्स दिए हैं। वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रेशन के आने से स्ट्रिंग्स, ब्रास सेक्शंस, ड्रम्स, गिटार्स एंड कीबोर्ड्स का यूज बढ़ा। इससे सॉन्ग्स का साउंड सिनेमैटिक और ग्रैंड बना। बाद में सिंथेसाइजर्स और डिजिटल टेक्नोलॉजी ने कंपोजर्स को और ज्यादा पॉसिबिलिटीज दी।

बॉलीवुड की खासियत यही रही है कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को अक्सर इंडियन मेलोडी के साथ ब्लेंड किया गया। एक सॉन्ग में गिटार वेस्टर्न हो सकता है, रिदम इंटरनेशनल हो सकती है, लेकिन मेलोडी और इमोशनल एक्सप्रेशन डिस्टिंक्टली इंडियन रह सकता है। इसी कॉम्बिनेशन ने बॉलीवुड म्यूजिक को एक यूनिक आइडेंटिटी दी, ना पूरी तरह वेस्टर्न, ना सिर्फ ट्रेडिशनल इंडियन, बल्कि दोनों का क्रिएटिव संगम।

फ्यूजन म्यूजिक, यू लव इट ना? वैसे फ्यूजन म्यूजिक का मतलब है अलग अलग म्यूजिकल ट्रेडिशंस को एक साथ लाकर एक नया साउंड क्रिएट करना। बॉलीवुड ने फ्यूजन को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से अपनाया है। एक तरफ सितार, तबला, बांसुरी और इंडियन क्लासिकल वोकल्स, तो दूसरी तरफ गिटार, ड्रम्स, सिंथेसाइजर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक।

बीट्स जब ये सब एक साथ आती हैं, तो एक नई म्यूजिकल लैंग्वेज जन्म लेती है। आज बॉलीवुड सॉन्ग्स में इंडियन क्लासिकल फ्रेजेस के साथ वेस्टर्न कोड्स, फोक वोकल्स के साथ हिप हॉप बीट्स और ट्रेडिशनल पर्कशन के साथ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन सुनना आम बात हो गई है।

हमें ये भी सिखाता है कि म्यूजिक की कोई रिजिड बाउंड्री नहीं होती। सुर अलग हो सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स अलग हो सकते हैं, लैंग्वेजेस अलग हो सकती है, लेकिन इमोशन एक

बॉलीवुड डांस म्यूजिक का सफर भी अपने आप में फैसिनेटिंग है दोस्त। एक वक्त था जब डिस्को बीट्स ने पूरी जेनरेशन को डांस फ्लो पर ला दिया। कैची रिदम, सिंथेसाइजर्स और एनर्जेटिक अरेंजमेंट्स ने फिल्म सॉन्ग्स को एक नई आइडेंटिटी दी। समय के साथ डांस म्यूजिक और इवॉल्व हुआ। डिस्को के बाद पॉप, टेक्नो, हाउस, हिप हॉप एंड EDM जैसे जॉनर ने बॉलीवुड को इन्फ्लुएंस किया। आज इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूसर्स एक सॉन्ग में मल्टीपल लेयर्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन डांस म्यूजिक की असली सक्सेस सिर्फ बीट में नहीं होती। एक मेमोरेबल डांस सॉन्ग में मेलोडी, रिदम, लिरिक्स, परफॉर्मेंस और विजुअल प्रेजेंटेशन सबका कॉम्बिनेशन होता है। बॉलीवुड ने इस कॉम्बिनेशन को बार बार रीइन्वेंट किया है, इसलिए चाहे पुराने जमाने का डिस्को हो या आज का इलेक्ट्रॉनिक डांस ट्रैक, ऑब्जेक्टिव एक ही है। म्यूजिक बजते ही पैर खुद ब खुद थिरकने लगे और माहौल में एनर्जी भर जाए।

बॉलीवुड म्यूजिक के गोल्डन एरा में वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रेशन का एक खास इन्फ्लुएंस रहा। जैज और बिग बैंड अरेंजमेंट्स ने फिल्म सॉन्ग्स को सोफिस्टिकेटेड और स्टाइलिश साउंड दिया। सैक्सोफोन, ट्रम्पेट, पियानो, ड्रम्स और स्ट्रिंग सेक्शंस का कॉम्बिनेशन कई कंपोजिशंस को एक इंटरनेशनल फ्लेवर देता था। आज जब हम पुराने हिंदी सॉन्ग सुनते हैं तो कई बार हमें मेलोडी के साथ बैकग्राउंड अरेंजमेंट भी इक्वली फैसिनेटिंग लगता है। कभी सैक्सोफोन का एक फ्रेज, कभी पियानो का सॉफ्ट प्रोग्रेशन और कभी स्ट्रिंग्स का स्वीपिंग अरेंजमेंट, ये सब मिलकर सॉन्ग को टाइमलेस बनाते हैं।

बॉलीवुड और रोमांस का रिश्ता बहुत पुराना है दोस्तों, तो आप सब मानते हैं। रोमांटिक सॉन्ग्स ने जेनरेशंस को प्यार का इजहार करना सिखाया। कभी एक सिंपल मेलोडी ने दिल की बात कह दी, कभी एक पोएटिक लिरिक ने वो इमोशन एक्सप्रेस किया जो हम खुद शब्दों में नहीं कह पाते। रोमांटिक बॉलीवुड म्यूजिक में इंस्ट्रूमेंटेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सॉफ्ट पियानो, फ्लूट, एकुस्टिक गिटार, स्ट्रिंग्स या जेंटल पर्कशन मूड को एनहांस करते हैं। कभी मेलोडी इतनी सिंपल होती है कि पहली बार में ही याद रह जाती है। कितना

बॉलीवुड म्यूजिक ने स्पिरिचुअलिटी और सूफी ट्रेडिशन से भी गहरी इंस्पिरेशन ली है। सूफी म्यूजिक का सेंट्रल इमोशन होता है इश्क, लेकिन ये इश्क सिर्फ रोमांटिक नहीं बल्कि रूहानी भी हो सकता है। ईश्वर, इंसान और यूनिवर्सल लव के बीच का कनेक्शन सूफी कंपोजिशंस को एक अलग डेप्थ देता है। बॉलीवुड ने सूफी पोएट्री और म्यूजिकल पैटर्न्स को मॉडर्न अरेंजमेंट्स के साथ प्रेजेंट किया। ट्रेडिशनल वोकल्स के साथ कंटेम्पोररी इंस्ट्रूमेंट्स और एटमॉस्फेरिक प्रोडक्शन ने एक ऐसा साउंड क्रिएट किया जो यंग लिसनर्स को भी कनेक्ट करता है। वैसे सूफी इंस्पायर्ड सॉन्ग्स की सबसे खास बात होती है उनकी इमोशनल इंटेंसिटी। जब पावरफुल वोकल्स, मीनिंगफुल पोएट्री और रेपिटेटिव रिदमिक पैटर्न्स एक साथ आते हैं तो लिसनर सिर्फ सॉन्ग नहीं सुनता, गाना नहीं सुनता, वो उस फीलिंग को एक्सपीरियंस करता है। यही बॉलीवुड म्यूजिक की स्ट्रेंथ है, स्पिरिचुअल थॉट को भी एंटरटेनमेंट के थ्रू दिल तक पहुंचाना। तो आज इतना ही, कल वापस मिलेंगे सेम टाइम 9 से 12 के बीच इन लेट नाइट ग्रुप्स। तो नीतू को इजाजत दीजिए, टेक केयर, बाय बाय, शुभ रात्रि।

RM2. Radio Musty. Feels a Musty.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a Musti. Radio Musti.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio

0: Radio Mesti
1: in the mix.
0: Radio Mesti feels a Mesti
1: in the mix.